शुभ सवेरा, नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। श्रोताओं, आज मंगलवार है। विक्रम संवत 2083 के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की छठवीं तिथि और शक संवत 1948 के श्रावण मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 अगस्त सन 2026। इस समय 7:04 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, समय है कि आपको आज के कार्यक्रमों की जानकारी दे दें, लेकिन उसके पहले कुछ बातें जरूरी सी। दोस्तों, इन दिनों चारों ओर हरियाली फैली हुई है, रिमझिम बारिश का समा बना हुआ है। बारिश का मौसम केवल भीगती हुई धरती और हरियाली का मौसम नहीं है, ये जल को बचाने का सबसे सुंदर अवसर भी है। आसमान से गिरती हुई हर बूंद अपने साथ जीवन का संदेश लेकर आती है। खेतों में उतरकर वो अन्न बन जाती है, पेड़ों की जड़ों तक पहुंचकर हरियाली बन जाती है और धरती के भीतर समाकर आने वाले कल का जल स्रोत बन जाती है। लेकिन यदि यही पानी बहकर नालियों में चला जाए तो बारिश तो खूब होती है, लेकिन जल संकट फिर भी बना रहता है। इसलिए बारिश की हर बूंद को सहेजना, संवारना और धरती के भीतर उतारना ही जल संरक्षण है। बारिश कहती है, मैं हर मौसम लौटती हूँ, तुम बस इतना करना, मेरी बूंदों को बहने मत देना, कुछ आंगन में रोक लेना, कुछ मिट्टी में उतार देना, ताकि जब आसमान सूना हो तब धरती के पास जीवन बचा रहे। तो श्रोताओं, बारिश का जो मौसम है वो प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत सा उपहार है। जल संरक्षण उस उपहार के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। बारिश का मौसम हमें केवल पानी नहीं देता है, ये हमने बताया ही, जल संरक्षण का अवसर भी देता है। जल संरक्षण कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बस पानी के प्रति हमारी जो आदतें हैं उसे थोड़ा सा बदलना होता है, थोड़ा हमें सजग होना होता है। बारिश के पानी को छतों से बहकर नालियों में जाने देने की बजाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से टंकियों में एकत्रित किया जा सकता है या सोख्ता गड्ढों के जरिए भीतर पहुंचाया जा सकता है, ज़मीन के भीतर। इससे भूजल स्तर को बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। घर में नल खुला छोड़कर पानी बहने न दें। ब्रश करते समय, हाथ धोते समय, बर्तन साफ करते समय, कपड़े धोते समय ज़रूरत भर पानी ही इस्तेमाल करें। टपकता हुआ नल है अगर तो पाइप की मरम्मत करवा लें, तो जल संरक्षण का ये महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। कपड़े या सब्जियां धोने से बचा हुआ जो पानी है वो अपेक्षाकृत जो साफ़ होता है उसे पौधों में या सफाई के अन्य जो घरेलू काम है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी जल संरक्षण की दिशा में आपकी तरफ से एक कदम हो सकता है। और एक बहुत ही सुंदर सी बात है कि पेड़ लगाइए और उन्हें बचाइए। पेड़ वर्षा जल को ज़मीन में पहुँचाने, मिट्टी में नमी बनाए रखने और प्राकृतिक जल चक्र को संतुलित रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस बारिश संकल्प सिर्फ इतना हो कि बारिश की बूंद बूंद का हम सम्मान करेंगे, पानी को व्यर्थ नहीं बहने देंगे। आज जल बचाएंगे तभी कल जीवन बचा पाएंगे। तो श्रोताओं, ये एक बहुत ही सार्थक सा ज़रूरी संदेश था आपके लिए। और अब आप जानना चाह रहे होंगे कि आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा में क्या कुछ खास लेकर हम उपस्थित हुए हैं, तो चलिए इसकी जानकारी आपको देते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ, उसके बाद अक्षय निधि का प्रसारण होगा और फिर आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। सुबह 8 बजे वतन का राग कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापोर की प्रकृति की पुकार। ये कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे प्रसारित होगा। इसमें आज वायुमंडल की चर्चा होगी। 9 बजे हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम योग संवाद। आज की चर्चा का विषय पौरुष की प्रधानता और प्रारब्धवाद का खंडन। सुबह 9:30 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम होगा, आप सुन सकते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और उनके शिष्यों का बांसुरी वादन। नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा का प्रसारण होगा सुबह 10 बजे। 10:30 पर आज़ाद हिंद कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम 11 बजे प्रसारित होगा। इसमें डॉक्टर शैलेश मानक से बातचीत का विषय होगा आयुर्वेद में प्रकृति का स्वास्थ्य से संबंध। और 11:30 बजे सुनिए धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय
आज सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। दिन भर आप जहां भी रहें बने रहिए रेडियो आज़ाद हिंद के साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। हमारा संदेश याद रखिएगा, इस बारिश आपको जल संरक्षण करना है, ताकि खूब बारिश होने के बाद भी जल का संकट जो बना रहता है वो ना हो। आने वाली पीढ़ी के लिए आप जल बचाइए, कल बचाइए। एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और उसके बाद आप सुनेंगे आज की पहली प्रस्तुति, कार्यक्रम जीवन सौरभ।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जीवन सौरभ।
2: एक बार की बात है, गौतम बुद्ध को किसी गांव में प्रवचन देने के लिए जाना था। इसलिए वो सुबह जल्दी उठे और अपने शिष्य आनंद को अपने साथ लेकर उस गांव की ओर चल दिए। बुद्ध और आनंद को चलते चलते काफी देर हो गई, लेकिन वो गांव तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलते चलते आनंद थक गया। वो बुद्ध से बोला, बुद्ध हमें चलते हुए इतनी देर हो गई, लेकिन अभी तक वो गांव नहीं आया। हम आसपास किसी से पूछ लेते हैं कि गांव कितनी दूरी पर है। बुद्ध बोले, ठीक है, तुम पूछ सकते हो। चलते चलते रास्ते में आनंद को एक किसान दिखा जो खेतों में काम कर रहा था। तभी आनंद उसके पास पहुंचा और बोला, हमें उत्तर दिशा में जो गांव पड़ता है उस तरफ जाना है, अभी हमें कितना वक्त लगेगा? किसान बोला, बस 2 किलोमीटर है, आने ही वाला है। ऐसा सुनकर आनंद की जान में जान आई। वो सोचने लगा, चलो ठीक है, कुछ ही देर में हम गांव पहुंच जाएंगे। वो किसान बुद्ध को देखकर मुस्कुराया और बुद्ध भी उसे देखकर मुस्कुराया। आनंद दोनों के मुस्कुराहट के पीछे छिपे भाव को नहीं समझ पाया। बुद्ध पहले भी उस गांव में गए हुए थे, इसलिए वो जानते थे कि वो गांव अभी बहुत दूरी पर है। अब चलते चलते उन्हें और देर हो गई। रास्ते में आनंद को एक अम्मा दिखाई दी जो कि सर पर लकड़ियों का गट्ठा लेकर चल रही थी। आनंद ने उन्हें रोका और पूछा, अम्मा, हमें उत्तर दिशा में जो गांव पड़ता है उधर जाना है, हमें कितना वक्त लगेगा? अम्मा बोली, बेटा बस 2 किलोमीटर दूर है। अम्मा बुद्ध को देखकर मुस्कुराई और बुद्ध भी अम्मा को देखकर हल्के से मुस्कुराए। आनंद को फिर समझ नहीं आया कि आखिर ये दोनों एक दूसरे को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। फिर काफी देर चलने के बाद आनंद को एक तीसरा व्यक्ति दिखा। आनंद ने उससे भी वही सवाल किया और उसने भी यही उत्तर दिया कि गांव बस 2 किलोमीटर दूर है। आनंद अब बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए उसे रहा नहीं गया। उसने गुस्से में अपना झोला फेंका और बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर बोला, बुद्ध मुझे माफ करो, लेकिन अब मेरे भीतर तनिक भी चलने की हिम्मत नहीं है। जिससे भी पूछो वो यही कह रहा है कि बस 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें चलते चलते इतनी देर हो गई है। हम सुबह निकले थे, अब सांझ हो रही है, लेकिन फिर भी गांव है जो वो आने का नाम ही नहीं ले रहा। बुद्ध बोले, धैर्य रखो आनंद, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी बहुत थक गया हूँ। बगल में एक पेड़ है, रात भर हम उधर विश्राम करते हैं और सुबह गांव की ओर निकल जाते हैं। ऐसा सुनकर आनंद को थोड़ा चैन मिला। आनंद बोला, बुद्ध एक बात समझ नहीं आई, जिससे भी मैंने रास्ता पूछा सभी 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर कह रहे थे। यदि सच में रास्ता 2 किलोमीटर की दूरी पर होता तो हम कब का वहां पहुंच जाते? बुद्ध बोले, आनंद, मैं इस गांव में पहले भी जा चुका हूं। ये गांव 2 किलोमीटर नहीं 20 किलोमीटर दूरी पर है, जिसमें 6 किलोमीटर हम पार कर चुके हैं। आनंद बोला, बुद्ध ये गांव इतना दूर है तो आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? बुद्ध बोले, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लंबे रास्ते का सोचकर तुम पहले से ही रुक जाओ। आनंद बोला, बुद्ध मैं जानना चाहता हूँ वो तीनों लोग जिससे मैंने रास्ता पूछा था, आप उनको देखकर मुस्कुराए और वो भी आपको देखकर क्यों मुस्कुराए? बुद्ध बोले, वो मुझे और मैं उन्हें देखकर समझ गया था कि हमारा काम एक ही है, दूसरों को आगे बढ़ाना। जैसे मैंने तुम्हें नहीं बताया कि गांव 20 किलोमीटर है, वैसे ही वे तुम्हें नहीं बताना चाहते थे, लेकिन उन तीनों ने मिलकर हमसे 6 किलोमीटर का रास्ता तो तय करवा ही दिया। बुद्ध आगे बोले, जब मनुष्य को पता होता है कि मंजिल पास में ही है तब उसकी गति बढ़ जाती है, लेकिन जब मनुष्य को ये पता होता है कि रास्ता बहुत लंबा है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। जीवन के किसी भी मार्ग पर किसी भी व्यक्ति की गति धीमी ना हो, इसलिए उसे हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए कि बस मंजिल आने ही वाली है। बुद्ध की ये बात सुनकर शिष्य ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। आनंद बोला, बुद्ध, ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे गुरु हैं। आपके साथ मुझे हमेशा ही कुछ सीखने को मिलता है। इस रास्ते की यात्रा में भी आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं समझ चुका हूँ, यदि मनुष्य को मंजिल से प्यार हो तो उसे अपने आप को बार बार यही समझाना होगा कि बस थोड़ी दूर है, और इस प्रकार एक दिन वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। बुद्ध और आनंद ने पेड़ के नीचे रात भर विश्राम किया और सुबह गांव की तरफ निकल गए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को हमेशा खुद को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। उसे इस बात का यकीन होना चाहिए कि मंजिल है और बहुत पास है। वो दूरी तभी घटेगी जितना हम आगे बढ़ेंगे। तो अपने कदमों को तेज करो और खुद से हमेशा यही कहो कि मंजिल दूर नहीं, मंजिल पास है।
1: जीवन सौरभ
3: न जी भर के देखा

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: श्रोताओं कहते हैं वही मनुष्य जीवन में ऊपर उठ सकता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा होता है। तो आइए हम भी अपनी जड़ों की ओर चलें, वेदों उपनिषदों के ज्ञान को सुनें। कार्यक्रम का नाम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 191 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं अपतृण सूर्या, छंद है अनुष्टुप, महापंक्ति और महाब्रहती।
2: उदपप्त दसौ सूर्यः पुरुविश्वानि जूर्वन् आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टः। अनेक अदृश्य जंतुओं को विनष्ट करते हुए ये सर्वद्रष्टा सूर्यदेव ऊपर उठते हैं। इनके उदित होते ही सभी अनिष्टकारी विषधारी जीव छिप जाते हैं। सूर्ये विषमा सजामि धृति सुरावतो गृहे, सो चिन्नु न मराति नो वयम् मरा मारे अस्य योजनम् हरिष्ठा मधुत्वा मधुला चकार। आसव को जिस प्रकार पात्र में रखते हैं उसी प्रकार हम सूर्य किरणों में विष को रखते हैं। इस विष से सूर्यदेव प्रभावित नहीं होते तथा हमारे लिए विष निवारक सिद्ध होते हैं। विश्वारूढ़ सूर्यदेव इस विष का निवारण करते हैं तथा मधुला विद्या इस विष को मृत्यु निवारक अमृत बनाती है। इयत्तिका शकुंतिका सका जघास ते विषम, सो चिन्नु न मराति नो वयम् मरा मारे अस्य योजनम् हरिष्ठा मधुत्वा मधुला चकार। कपिंजली नामक चिड़िया तेरे विष को खाए जिससे वह न मरे तथा हमारे विष का भी निवारण हो, और मधुला शक्ति इस विष के लिए मृत्यु निवारक अमृत सिद्ध हो। त्रिह सप्त विषपुलिंगिका विषस्य पुष्यमक्षन, ताश्चिन्नु न मरन्ति नो वयम् मरा मारे अस्य योजनम् हरिष्ठा मधुत्वा मधुला चकार। 21 प्रकार की ऐसी छोटी छोटी चिड़ियाएं हैं जो विष के फलों को खा जाती हैं पर फिर भी प्रभावित नहीं होती। इसी प्रकार हम भी विष से मृत्यु रहित हो। अश्वारूढ़ सूर्य ने इस विष का निवारण कर दिया है। मधुला विधा विष को अमृत रूप में बदल देती है। नवानाम नवतीनाम विषस्य रोपुषीणाम सर्वासामग्रभम नामारे अस्य योजनम हरिष्ठा मधुत्वा मधुला चकार। 99 प्रकार की औषधियां हैं जो विषों की निवारक हैं। उन सभी को हम जानते हैं। उनके उपयोग से हर प्रकार के विष का निवारण होता है। अश्वारूढ़ सूर्य इसका निवारण करे तथा मधुला शक्ति इसे अमृत बनाए। त्रिसप्त मयूर यह सप्त स्वसारो अग्रुवह तास्ते विषम वि जभ्रिर उदकम कुंभिनी रिव। हे विष पीड़ित प्राणी, जिस प्रकार घड़ों में स्त्रियां जल ले जाती हैं, उसी प्रकार 21 मोरनियां और भगिनी रूपा 7 नदियां आपके विष का निवारण करें। इयत्तकः कुशुंभ कस्तक

0: आनकः वृश्चिकस्यारसं विषमरसं वृश्चिक ते विषम। पहाड़ से आने वाले नेवले ने यह कहा कि बिच्छू का विष प्रभावहीन है, हे बिच्छू तुम्हारे विष में प्रभाव नहीं है।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 191 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: ये था आपको आपकी जड़ों से जोड़ता कार्यक्रम अक्षय निधि। रेडियो आजाद हिंद की इस प्रसारण सभा में बहुत कुछ है खास आगे आपके लिए। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जीवन में धर्म के जागरण के साथ ही घृणा खो जाती है, प्रेम बचता है, क्रोध खो जाता है, करुणा बचती है, अहंकार मिट जाता है, होश जागता है। जैसे लता फूट पड़ती है बीज से अपना विस्तार पाने के लिए, ठीक उसी तरह धर्म के जागरण से आत्मा चल पड़ती है परमात्मा की ओर, विराट में खोकर विराट हो जाने के लिए। और जीवन में धर्म के जागरण का अर्थ है हमारे भीतर मानवता का जागरण। तो अंतर जागरण के इसी प्रयास के साथ आइए आज की भजन यात्रा पर चलें।

श्रोताओं, उस परम सत्य तक पहुंचकर अंतर के सारे कलुष गिर जाते हैं, सारे विचार शांत हो जाते हैं, मन मुक्त हो जाता है, दर्शन छूट जाता है, दृष्टि छूट जाती है, हम भी नहीं बचते, फिर कोई भेद नहीं होता, हम उस परम सत्ता के विस्तार में खो जाते हैं, और यही हमारे जीवन का अनंतिम लक्ष्य है। सारी प्रार्थना, सारी वंदना इसीलिए है।

इस संसार में दौड़ है, आपाधापी है, खूब संघर्ष है, किंतु संतुष्टि नहीं है। इस संसार में न कुछ मिल सकता है, न मिलता ही है। ध्यान में, भक्ति में ये सारे भ्रम टूट जाते हैं। तृष्णा हमें बाहर की तरफ ले जाती है, जबकि ध्यान भीतर की ओर। और भीतर की ये यात्रा उस परम शक्ति से हमारा परिचय कराती है।

श्रोताओं, ईश्वर की पुकार अकारण होनी चाहिए। ये पुकार आनंद से फलित होनी चाहिए। किसी चाहत, किसी मकसद से उसकी याद आना, उसे आवाज देना बेमानी है। इसमें अड़चन है जो हमें कहीं नहीं पहुंचाती। प्रेम में डूबकर जैसे किसी अपने की याद आ जाए और हम उसे पुकार उठें तड़प कर। भक्ति में ये घटना ही वंदना है, यही उसकी पूजा है, यही उसकी आराधना।

वंदना की पूजा की विधि अलग हो सकती है, किंतु लक्ष्य सबका एक है। हमारे मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, किंतु गंतव्य सबका एक है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग संप्रदायों ने जिसे परम सत्ता, परमेश्वर, खुदा या भगवान कहा, वो एक है। सदियों की साधना, युगों के भटकाव के बाद यही सत्य सामने है कि वो विराट एक है, चाहे हम उसे कहीं भी ढूंढें, किसी भी नाम से पुकारें।

श्रोताओ, क्या होता है हरि सुमिरन, क्या होता है नाम स्मरण। जिस दिन हमने नाम के बल का सहारा पकड़ लिया, जिस दिन हमने कहा कि मैं नहीं तू ही है, सब कुछ तुझ पर छोड़ा, मैं तो बस उपकरण हूँ। जिस दिन हमने कहा कि मैं तो मात्र बांसुरी हूँ, गीत तो उसके हैं, संगीत उसका है, मैं बस मार्ग हूँ उसके आने का, उसी दिन जीवन से पीड़ा के बादल छट जाते हैं।

श्रोताओं, इस भक्ति रचना के साथ ही संपन्न होती है आज की भजन यात्रा। इस कार्यक्रम से अब अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारत माँ की संताने हम शीश झुकाना क्या जाने, धरा उठा लें गगन झुका दें, उठें चलें सीना ताने। हम ही कृष्ण का चक्र सुदर्शन, हम अर्जुन के तीर हैं, ध्रुव प्रहलाद भरत के भाई, हम अभिमन्यु वीर हैं। हम हंसते हैं तूफानों में, रोना धोना क्या जाने, भारत माँ की संताने हम शीश झुकाना क्या जाने, शीश झुकाना क्या जाने। रणक्षेत्र में हमारे वीर सैनिकों का ये साहस हमारे विजय की आश्वस्ति है। वो सैनिक देश ही जिनका धर्म है, देश ही जिनका कर्म, देश ही जिनका विचार, देश ही जिनका व्यवहार है। दुश्मन के सामने जो एक प्रबल हुंकार है, एक गरजती हुई ललकार है। अपनी सेना के शौर्य को नमन करते हुए वतन का राग कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल ए बी तारापोर की। सन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध का एक ऐसा नाम जिसने अपने शौर्य, पराक्रम और कुशल नेतृत्व से इतिहास लिख दिया। पाकिस्तान के सियालकोट सेक्टर के फिल्लौरा में पाकिस्तानी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनकी टुकड़ी ने जिस तरह से पाकिस्तानी सेना के 60 टैंकों को तबाह किया था, वो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। इस युद्ध में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय देते हुए उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 18 अगस्त सन 1923 को मुंबई में जन्मे एवी तारापोर का पूरा नाम आर्देशिर बुरजोर जी तारापोर था। उनके पूर्वज छत्रपति शिवाजी की सेना का हिस्सा थे। शिवाजी की सेना का नेतृत्व करने के कारण उन्हें 100 गांवों से सम्मानित किया गया था। इन्हीं में तारापोर मुख्य गांव था, जहां से उनके परिवार का नाम आता है। आने वाले समय में उनके दादाजी हैदराबाद चले गए और हैदराबाद के निजाम के उत्पाद शुल्क विभाग में काम करने लगे। आर्देशिर बुरजोर जी बचपन से ही अत्यंत वीर थे, जिसका परिचय उन्होंने बचपन में ही अपनी बहन को गाय के हमले से बचाकर दे दिया था। स्कूल में शिक्षा के दौरान वो अपने शिक्षकों के अत्यंत स्नेह पात्र थे। पढ़ाई, मुक्केबाजी, तैराकी, टेनिस और क्रिकेट, हर क्षेत्र में वो अव्वल रहा करते। माता पिता चाहते थे कि उनका होनहार बेटा परिवार का नाम रोशन करे। इसके लिए उन्होंने बालक आर्देशिर को पुणे के एक बोर्डिंग स्कूल में शिक्षा के लिए भेज दिया। यहीं से उनके भीतर सेना में भर्ती होकर देश के लिए कुछ विशेष करने का सपना जागा।

आर्देशिर बुरजोरजी तारापोर ने सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी शुरू कर दी। कुछ ही समय में उनकी मेहनत रंग लाई। सन 1942 में वो हैदराबाद सेना में शामिल हुए। इस तरह हैदराबाद सेना की 7वीं इन्फेंट्री से उनका सैन्य जीवन आरंभ हुआ। लेकिन पैदल सेना में शामिल होने के कारण वो असंतुष्ट थे। दरअसल वो एक बख्तरबंद रेजिमेंट में शामिल होकर रणभूमि में अपने शौर्य का प्रदर्शन करना चाहते थे। उनकी बटालियन के निरीक्षण के दौरान हुई एक घटना में उनकी वीरता से हैदराबाद राज्य बलों के कमांडर इन चीफ उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्हें अपने कार्यालय बुलाकर बधाई दी। तभी आर्देशिर बुरजोरजी ने उनसे बख्तरबंद रेजिमेंट में अपने स्थानांतरण का अनुरोध किया। अब उन्हें हैदराबाद इम्पीरियल सर्विस लांसर में स्थानांतरित कर दिया गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान पश्चिम एशिया में उन्होंने वीरता और युद्ध कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनकी गिनती हैदराबाद के चुनिंदा सैन्य अधिकारियों में होने लगी। आजादी के बाद हैदराबाद का निजाम भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। वो भारत के बीच अपना स्वतंत्र देश चाहता था। जब तमाम कोशिशों के बाद भी बात नहीं बनी, तब सितंबर 1948 में भारतीय सेना द्वारा एक गुप्त ऑपरेशन ऑपरेशन पोलो को अंजाम दिया गया। निजाम को अपदस्थ कर हैदराबाद को भारत संघ में मिला दिया गया। भारत संघ में हैदराबाद के विलय के बाद अंततः हैदराबाद की सेना भी भारतीय सेना में मिल गई। कुछ समय बाद आर्देशिर बुरजोरजी तारापोर को पूना हॉर्स में स्थानांतरित कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर एक दीर्घकालिक संघर्ष रहा है, जिसकी जड़ें भारत विभाजन की ऐतिहासिक घटना से जुड़ी हुई हैं, और तब से लेकर आज तक अनेक बार युद्धों सहित और भी संघर्ष छिड़े हैं। 1947-48 के बाद 1965 में भी इसी मुद्दे पर भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ा था, जिसे दूसरे कश्मीर युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। पाकिस्तान की निगाहें हमेशा ही कश्मीर पर रही हैं। सन 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध को उसने बारीकी से देखा था। पाकिस्तान ने सोचा कि अभी अभी एक युद्ध से निवृत्त हुए देश की स्थिति इस समय कमजोर होगी। अगर ऐसे समय में वो भारत पर हमला करता है तो शायद वो अपने मंसूबे में सफल हो सके। इसी उद्देश्य से पाकिस्तान ने सन 1965 में भारत पर एक बार फिर हमले की योजना बनाई, लेकिन ये योजना पाकिस्तान को उल्टी ही पड़ गई। 1965 में हुआ ये वही युद्ध है जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अगुवाई में भारतीय सेना ने लाहौर के बाहरी इलाके तक पहुंचकर शहर को घेर लिया था। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम की घोषणा की गई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। इस युद्ध से पहले ही एबी तारापोर की पदोन्नति हो चुकी थी और वो लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर इस युद्ध में शामिल हुए।

अगस्त 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध आरंभ हो चुका था। दुश्मन सेना 260,000 इन्फेंट्री, 280 विमान और 756 टैंकों के साथ थी। वहीं भारत 7,00,000 जवानों की इन्फेंट्री, 700 विमान और 720 टैंक के साथ था। लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापोर को इस युद्ध में कमांडिंग ऑफिसर बनाकर भारतीय फौज की अगुवाई करने के लिए भेजा गया था। 11 सितंबर 1965 वो तारीख थी जब एबी तारापोर के नेतृत्व में पूना हॉर्स रेजिमेंट को चविंडा की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान के सियालकोट सेक्टर में फिल्लौरा को जीतने का आदेश मिला। सियालकोट सेक्टर में भीषण युद्ध जारी था। लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापोर इस मिशन को जीतने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लगातार मिल रही हार से पाकिस्तानी सेना बौखलाई हुई थी। आवेश में आकर उसने ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी पैटर्न टैंक युद्ध के मैदान में उतार दिए। इधर एबी तारापोर ने जवाबी कार्रवाई की पूरी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से गोलाबारी शुरू की गई, भारतीय सैनिक उन पर टूट पड़े। एक एक करके उन्होंने पाकिस्तानी सेना के टैंकों को नष्ट करना शुरू किया। एबी तारापोर का नेतृत्व ऐसा था कि सैनिक अपनी जान की बाजी लगाने को तत्पर थे। पाकिस्तानी सेना अपने अमेरिकी पैटर्न टैंकों के जरिए लगातार भीषण हमला कर रही थी। भारतीय सेना के 43 टैंकों की टुकड़ी मदद के लिए पहुंचती, इसके पहले ही भारतीय सैनिकों ने दुश्मन के 60 टैंकों को ध्वस्त कर दिया। इस समय तक लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापोर दुश्मन के हमले में गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते रहे। घायल हो जाने के कारण उन्हें इलाज के लिए वापस आने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने युद्ध छोड़कर जाने से इनकार कर दिया था। अपने साहस और पराक्रम के दम पर वजीराली पर कब्जा करके वो आगे बढ़ चुके थे और दुश्मन के 60 टैंकों को ध्वस्त कर दिया था। सियालकोट सेक्टर में लड़ी गई फिल्लौरा और चविंडा की लड़ाई को सैन्य इतिहास में टैंकों का सबसे भीषण युद्ध माना गया। अपने जज्बे के बलबूते एबी तारापोर अब तक पाकिस्तान के 60 टैंक बर्बाद कर चुके थे, जबकि भारत के सिर्फ 9 ही टैंक बर्बाद हुए। एबी तारापोर के पास विकल्प था कि वो पीछे लौटते और अपनी जान बचा लेते, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ना स्वीकारा। युद्ध के दौरान ही उनके टैंक को टक्कर लगी और उसमें आग लग गई। लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापोर 16 सितंबर 1965 को युद्ध के मैदान में ही वीर गति को प्राप्त हुए। अपने लीडर की मौत के बाद भी भारतीय जवानों ने दुश्मन से जमकर लोहा लिया और फिल्लौरा पर भारतीय तिरंगा लहरा उठा। एबी तारापोर ने अपने साथी मेजर चीमा से कहा था कि अगर युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो जाए तो उनका अंतिम संस्कार युद्ध के मैदान पर ही किया जाए। फिल्लौरा की लड़ाई में अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसे परमवीर महाबलिदानी को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कर

0: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ धरा।
1: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ बादल। तो धरा, आज हम बात करेंगे हमारे वायुमंडल के बारे में।
0: तो क्या बात है बादल, आज तो आप बड़े खुश भी लग रहे हो और मैं ये देख रही हूँ कि आप कुछ मंद मंद मुस्करा भी रहे हो।
1: हाँ धरा, आज मेरी नींद बहुत जल्दी खुल गई थी। कुछ देर तो मैं लेटा रहा, फिर खिड़की के बाहर देखा तो बड़ा सुहाना मौसम लगा। सोचा क्यों ना घर की छत पर जाकर कुछ देर टहलाऊं। बस ये मुस्कुराहट इसी का नतीजा है।
0: बात तो सही है, मौसम सुहाना हो और हम खुले आसमान के नीचे खड़े हों, हवा के झोंके इतने मन भावन हों, तो बस मजा तो आ ही जाता है।
1: हाँ धरा, ऐसे में कई कवियों की कविताएं याद आने लगती हैं। तब मन में बस यही बात आती है कि हवा के बीच हम कितना तरोताजा महसूस करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही, तब हम लंबी लंबी सांस भी लेने लगते हैं और अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं।
1: जानती हो धरा, ये सब हमारी पृथ्वी के आसपास वायुमंडल के कारण है, जो कई गैसों का मिश्रण है जो हमारी पृथ्वी को सब तरफ से घेरे हुए है।
0: हाँ, पढ़ा तो मैंने भी था कि पृथ्वी की सतह सैकड़ों किलोमीटर तक गैसों से ढकी है, और ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। बस इसी कारण इन गैसों को पृथ्वी की सतह से अलग नहीं किया जा सकता।
1: हाँ, वायुमंडल को अगर सरल शब्दों में कहें तो ये गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को घेरे हुए है, और ये हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा देता है।
0: बिल्कुल, हमें शुद्ध हवा तो मिलती ही है, साथ ही साथ सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से ये हमें बचा लेता है, और सूर्य की गर्म किरणों से भी हमें बचाता है।
1: बिल्कुल, और इसके साथ ही दिन और रात के तापमान को रोककर जीवन को संभव बनाने में मदद भी करता है।
0: क्योंकि पृथ्वी का ये जो वायुमंडल है ना, वो एक परतदार संरचना है जो सूर्य की ऊर्जा को पर्याप्त मात्रा में रोककर तापमान में संतुलन बनाती है, जो जीवन के लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल सही कहा धरा, यानी हम कह सकते हैं कि वायुमंडल हमारी पृथ्वी का ऐसा आवरण है जो बाह्य अंतरिक्ष और जीव मंडल के बीच एक सुरक्षात्मक कवच या सीमा बनाता है।
0: और हाँ बादल, एक बात बताऊं, ये वायुमंडल जो है ना, वो उल्का पिंडों को भी हमारी ओर आने नहीं देता, और वायुमंडल में घर्षण के साथ ही या रगड़ के साथ ही ये वायुमंडल से गुजरते हुए राख में बदल जाते हैं।
1: और वायुमंडल में नमी की मात्रा के कई प्रकार, जैसे बादल, कोहरा, ओस, वर्षा, पाला, ओलावृष्टि, बर्फबारी आदि का भी निर्माण करते हैं।
0: यानी वायुमंडल में बादल तुम नमी के कारण ही बनते हो। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा कि वायुमंडल में कई तरह की गैसों का मिश्रण होता है, तो क्या हम इस पर थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करें बादल?
1: हाँ हाँ बिल्कुल सही है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन भी इस वायुमंडल में पाई जाती है, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में।
0: और बादल, तुम तो जानते ही होगे कि नाइट्रोजन जो होती है, ये नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। और इसके अलावा वायुमंडल में धूल के बहुत सारे छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं।
1: और जब हम सांस लेते हैं तब हम अपने अंदर कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं।
0: लेकिन नाइट्रोजन की जरूरत तो पेड़ पौधों को ज्यादा होती है, लेकिन एक बात ये भी है कि ये पेड़ पौधे सीधे सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस नहीं ले पाते हैं।
1: अच्छा, तब क्या करते हैं?
0: तब मिट्टी और पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु जो होते हैं, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं और इसका स्वरूप बदल कर पौधों को दे देते हैं।
1: वायुमंडल में ऑक्सीजन मिलने वाली दूसरी गैस है। हम मनुष्य और पशु सांस लेने में ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं।
0: और हाँ, हरे पेड़ पौधे प्रकाश के साथ ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, इस तरह वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा समान रूप से बनी रहती है।
1: हमारी पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी हुई है, और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को जीवित रहने के लिए इस वायुमंडल पर निर्भर रहना होता है।
0: ये वायुमंडल ही तो हमें सांस लेने के लिए वायु देता है, और सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से भी हमारी रक्षा करता है।
1: पता है, अगर ये वायुमंडल ना हो तो क्या हो सकता है?
0: क्या होगा?
1: यदि ये वायुमंडल ना हो तो दिन के समय हमें सूर्य की गर्मी इतनी अधिक लगेगी कि हमारा शरीर जल सकता है।
0: ओह, और अगर दिन में जल सकते हैं तो रात में क्या हो सकता है?
1: रात के समय ठंड इतनी अधिक हो जाएगी कि हम उससे जम सकते हैं।
0: अच्छा, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को हम प्राणियों के रहने के लायक बनाता है।
1: हाँ हाँ, और पता है जिस वायु का उपयोग सांस लेने में करते हैं असल में वो कई सारी गैसों का मिश्रण होता है।
0: हाँ, मैंने भी स्कूल में पढ़ा था ये तो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दो ऐसी गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना हुआ है।
1: पर ये भी है कि जब हम वृक्षों को काट देते हैं तो इससे ये संतुलन गड़बड़ाने लग जाता है।
0: बादल, तुम्हारी इस बात पर मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। कहो तो सुनाऊं?
1: हाँ बिल्कुल सुनाओ तारा।
0: धरती डगमग डोलती नित आते भूकंप, करो प्रकृति दोहन नहीं मिट जाए हड़कंप।
1: वाह वाह, कितनी अच्छी बात कही है।
0: अरे आगे भी तो है। वृक्ष नहीं काटे कभी धरती सून हो जाए, रहेंगे वृक्ष जो सभी तभी प्रलय बच पाए।
1: वाह वाह, बिल्कुल सही बात कही है। अब एक और गैस भी है जो पेड़ पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: वो कौन सी?
1: वो है कार्बन डाइऑक्साइड।
0: अच्छा।
1: हरे पेड़ पौधे इसे अपने भोजन के लिए उपयोग में लेते हैं।
0: हाँ, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और एक प्राणी इस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, बस इससे वायुमंडल में संतुलन बना रहता है।
1: हाँ, पर ये संतुलन कोयला, ईंधन और खनिज तेल आदि ज्यादा जलाने से बिगड़ जाता है। इससे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो जाती है जो मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है।
0: पर बादल, ये तो आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है, ये वायुमंडल के संतुलन को भी प्रभावित करता है।
1: हमने अपने जीवन में वायुमंडल की संरचना के बारे में भी पढ़ा था। इसमें 5 परतें होती हैं, पर मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा था।
0: कोई बात नहीं बादल, मुझे तो याद है। मैंने अभी कुछ समय पहले ही अपने बच्चों को पढ़ाते हुए इसे दोहरा लिया है, तो मुझे सब कुछ याद है।
1: अरे वाह, तो सबको बताओ।
0: तो फिर सुनो। हमारा वायुमंडल कई परतों से बना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल।
1: अरे वाह, ये तो बड़ा ही दिलचस्प लग रहा है, इसको थोड़ा और समझा कर बताओ। श्रोताओं बहुत ध्यान से सुनिएगा।
0: तो फिर सुनो। सबसे पहला क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसकी ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर के आसपास है, और हम इसी में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। और पृथ्वी पर होने वाले सभी मौसम इसी परत के अंदर ही होते हैं।
1: अच्छा।
0: फिर दूसरा है समताप मंडल। ये क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग होता है और लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे अच्छी परत मानी जाती है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा भी करती है।
1: अब मुझे भी ये सब याद आ रहा है।
0: आया ना? तो अब सुनो तीसरी परत के बारे में। तीसरी परत है मध्यमंडल परत। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से जो भी उल्कापिंड आते हैं वो इसी परत में तो जल जाते हैं।
1: ओह।
0: फिर चौथी है बाह्य वायुमंडल परत। ये लगभग 80 से 400 किलोमीटर तक फैली है और रेडियो संचार के लिए इस परत का हम उपयोग करते हैं। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत द्वारा रोक कर फिर से पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है।
1: तो मतलब हम रेडियो जो सुनते हैं वो इसी वायुमंडल परत के कारण सुनते हैं?
0: जी हाँ, और वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है उसे हम बहिर्मंडल परत कहते हैं। ये वायु की एक बहुत ही पतली परत होती है। यहाँ पर हीलियम और नाइट्रोजन जैसी हल्की गैसें अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं।
1: अरे वाह धरा, आपने कितने आसान शब्दों में पांचों वायुमंडल की परतों के बारे में समझाया है। वाह,
0: तो हो गया ना आज आपका रिवीजन। अच्छा बादल, तुमको पता है ना कि मौसम को लेकर हमारे दिलो दिमाग में कई तरह के प्रश्न उठते ही रहते हैं कि मौसम कैसा रहेगा।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो। किसी विशेष दिन के लिए हम अक्सर घर पर बात करते हैं कि फला दिन मौसम अच्छा रहे या पता नहीं उस दिन कैसा मौसम होगा।
0: हाँ, और अगर मौसम ठीक ना हो तो गर्मी और उमस यदि हो तो वो हमें चिड़चिड़ा कर देता है।
1: और जब मौसम अच्छा हो, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, तो बड़ा मजा आता है। लगता है कि कहीं घूमने जाया जाए, पिकनिक मनाई जाए।
0: हाँ, मौसम का अनुमान वहाँ की जलवायु पर ही निर्भर होता है। हम रोजाना जिस तापमान का अनुभव करते हैं वो वायुमंडल का ही तो तापमान होता है।
1: हाँ, मुझे पता है, वायुमंडल में ताप यानी गर्मी, शीतलता यानी ठंडक, इसके परिणाम को ही तापमान कहते हैं।
0: बिल्कुल सही बादल। और एक बात और भी पता रखनी होगी कि ये तापमान सिर्फ दिन और रात में ही नहीं बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है।
1: हाँ हाँ, गर्मी में बेहद गर्मी और शरद में शीतलता लिए हुए।
0: बिल्कुल सही। सूर्य से आने वाला तीव्र ताप भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो घटता चला जाता है। तभी तो पृथ्वी के ध्रुव बर्फ से ढके हुए हैं।
1: और वायुमंडलीय दबाव के कारण तापमान पर प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल की हर परत का तापमान अलग अलग होता है और यही तापमान पृथ्वी पर गर्मी और ठंड का कारण बनता है।
0: पर कभी कभी तापमान में कई विषमताएं भी पाई जाती हैं बादल, और इसके कई कारण होते हैं।
1: और पता है, हमारी पृथ्वी सौर ऊर्जा का केवल 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है।
0: ओ, और ये भी तो आश्चर्य की बात है कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ जोर लगाती है, पर हम इंसानों को इसका एहसास ही नहीं होता, क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और तब हमारा शरीर भी स्वतः विपरीत जोर लगाने लगता है।
1: हाँ हाँ, कभी कभी ऐसे पवन चलती है हमें उसके विपरीत दिशा में चलना मुश्किल हो जाता है। जैसे इस तरह की हवा में हम जब भी छाता लेकर चलते हैं तो बड़ी कठिनाई होती है।
0: और कभी कभी छाता छूट भी तो जाता है हाथों से।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तरह।
0: बादल, विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न प्रकार की पवन चलती हैं और ऋतु के अनुसार से अपनी दिशा भी बदलती रहती हैं। जैसे मानसून की पवन, ग्रीष्म ऋतु की पवन और शीत ऋतु की पवन।
1: हाँ, और ये किसी भी दिन एक विशेष समय में चलती है। हमारे देश में उत्तरीय गर्म क्षेत्र की पवन जब चलती है तब इसे लू कहते हैं।
0: हाँ, और लू से तो बचकर रहना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, आज हमने बात की पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण घटक वायुमंडल की, जिसके बिना हमारा ही नहीं बल्कि किसी भी प्राणी का जीवन संभव नहीं है।
1: आपकी इस बात पर बचपन में पढ़ी हुई एक कविता की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है, अगर आप कहें तो सुनाओ।
0: जी बिल्कुल सुनाइए।
1: जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को बहकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण पर हमारा कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और लेखन प्रमिला मुंशी दिवाकर का। मैं थी आपके साथ धरा यानी पूर्वा खले।
1: मैं था आपके साथ बादल यानी दीपक निमा।
0: तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति।
1: नमस्कार।

प्रकृति की पुकार। अभी आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे थे। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: और अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशगान।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम योग संवाद। उसके पहले एक छोटा सा अंतराल।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, भाग्य और कर्म की लड़ाई शायद मनुष्य के जीवन की सबसे पुरानी उलझन है। एक ओर विश्वास है कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा, और दूसरी ओर कर्म की पुकार है कि मनुष्य अपने पुरुषार्थ से अपनी राह स्वयं बना सकता है। दो मत हैं, दो धारणाएं हैं, और इनके बीच सदियों से एक प्रश्न खड़ा है कि सच क्या है। क्या भाग्य की लकीरों में ही लिखी होती है जीवन की हर कहानी? क्या प्रारब्ध के आगे मनुष्य का पुरुषार्थ, उसका संकल्प, उसका साहस सब कुछ व्यर्थ हो जाता है? एक प्रश्न मानव मन को मथता रहा है कि क्या जीवन की डोर केवल प्रारब्ध के हाथों में है, या मनुष्य का पौरुष उस डोर को अपने संकल्प से नई दिशा दे सकता है। और यही ज्ञानी जन उपदेश करते हैं कि नहीं, मनुष्य केवल परिस्थितियों की धारा में बहता हुआ एक तिनका नहीं है, उसके भीतर वो चेतना है जो दिशा बदल सकती है, सोए हुए सामर्थ्य को जगा सकती है और असंभव के द्वार पर भी दस्तक दे सकती है। प्रारब्ध यदि बीते हुए कर्मों की छाया है, तो पुरुषार्थ वर्तमान में जलता हुआ वो दीप है जो भविष्य का मार्ग प्रकाशित करता है। यहाँ प्रश्न केवल भाग्य का नहीं, बल्कि उस मनुष्य का है जो अपने पुरुषार्थ से स्वयं को पहचानने और अपने जीवन को रूप देने का साहस करता है। योग वासिष्ठ इसी पुरुषार्थ की महिमा का उद्घोष करता है, उठो, जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जीवन की दिशा केवल भाग्य नहीं जागृत पुरुषार्थ भी तय करता है। तो आइए योग संवाद कार्यक्रम में आज चर्चा करें पौरुष की प्रधानता और प्रारब्धवाद के खंडन पर, यानी आज की चर्चा में है भाग्य और कर्म की प्रधानता का विश्लेषण। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: बहुत ही रोचक सा विषय है आज का
1: जी।
0: और हमारे श्रोता भी जरूर इस विषय पर कभी ना कभी जीवन में उन्होंने सोचा होगा। अक्सर ये होता है कि पुरुषार्थ जब सिद्ध नहीं होता है तो मनुष्य भाग्यवादी हो जाता है। तो मेरे मन में प्रश्न यही है कि मनुष्य के पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे होती है?
1: बहुत सुंदर सवाल किया आपने, और यही वशिष्ठ जी श्री राम को समझा रहे हैं
0: जी।
1: कहते हैं, रघुनंदन, जैसे नीले पीले आदि विभिन्न रंगों की अभिव्यक्ति में प्रकाश ही मुख्य कारण है, उसी प्रकार शास्त्र के अनुसार मन, वाणी और शरीर द्वारा व्यवहार करने वाले अधिकारी पुरुषों के समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। अब यहां पर विचार करने योग्य ये है कि शास्त्र के अनुसार मन, वाणी और शरीर का व्यवहार यानी कर्म, हम लोग मन, वचन, कर्म पर बहुत बात करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा
0: जी जी,
1: लेकिन हम लोग इस पर विचार नहीं करते कि हमारा मन क्या सोचता है, हम अपनी वाणी से क्या बोलते हैं और कर्म क्या करते हैं। यानी इन तीनों में आप देखें तो कहने में, बोलने में और करने में इतना भेद है कि हम मन से कैसी कैसी अपनी कल्पनाएं, कैसी कैसी फैंटेसी क्रिएट करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो हम सोच रहे हैं उसके अनुसार क्या हम बोल भी रहे हैं। बोलेंगे तभी जब सोच और बोलने में एकता हो। आजकल तो इस पर आधुनिक जो मोटिवेटर हैं वो बहुत सारी लोग इस बात को कह रहे हैं कि मैनिफेस्ट करो, ये करो, वो करो, लेकिन हजारों साल पहले भारतीय ज्ञान परंपरा में ऋषियों ने वो सूत्र बताए हैं, जब शास्त्र विहित हम कर्म नहीं करते। शास्त्र विहित कर्म का अर्थ ये कदापि नहीं है, कई लोग इसका अर्थ ये निकालते हैं कि शास्त्रों को थोपा गया है, क्योंकि शास्त्र जिस समय लिखे गए उस समय की दुनिया अलग थी। आज जो दुनिया है वो डिजिटल दुनिया है, आज लोग कहां जा रहे हैं, तो आज के लिए कैसे वो समीचीन हो सकता है। शास्त्र का मतलब होता है कि जो सत्य है, जो नियम है, वो कभी नहीं बदलेगा। नियमों में नए नए नियम, नई नई जानकारियां जुड़ेंगी, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि पुरानी जानकारियां गलत हो गई।
0: जी जी,
1: है ना, पुरानी जानकारियां भी मौजूद हैं। अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अगर न्यूटन ने दिया, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को आज नकार दिया गया।
0: बिल्कुल,
1: वो ज्ञान है। तो ऐसे ही शास्त्र ज्ञान है, जहां पर सत्य को उद्घाटित करने के नियम बताए गए हैं, इसलिए ऋत कहा गया। ऋत मतलब सत्य। सत्य की खोज शास्त्रों में हुई है और ऋषियों ने देखा है, तो इसलिए जो शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार मन से चिंतन करो, और फिर जो चिंतन करो उसके अनुसार बोलो,
0: बोलो
1: वही आप अपने कर्म में करो, क्योंकि जो आप बोलते हैं वो आपका मस्तिष्क सुनता है। लैंग्वेज, जैसे मनोविज्ञान में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लैंग्वेज पर काम किया, नोम चोम्स्की नाम का एक दार्शनिक हुआ जिसने ये कहा कि आदमी सिर्फ जो है व्याकरण से चलता है, मतलब अपने मस्तिष्क को देखें तो मस्तिष्क में हर शब्द के भाव हैं, शब्द आते ही वो भाव का
0: एक चित्र बनता
1: है। माँ शब्द के आते ही हर व्यक्ति के हृदय में जो भाव बनेगा तो वो माँ शब्द के बिना नहीं बनेगा,
0: बिल्कुल।
1: तो अंत में देखें तो उस भाव को ट्रिगर करने वाला वो शब्द है। तो जो आपका मस्तिष्क शब्द सुनता है, आप दूसरों से जो बोलते हैं आप भी सुनते हैं, लेकिन कई बार हम लोग ऐसे आदति हो जाते हैं गलत बोलने के कि हम लोग 80% ऐसे विचार करते हैं। ये तो शुद्ध सिद्ध है कि जो विचार हमारे किसी काम के नहीं है उन विचारों में हम संलग्न रहते हैं
0: जी।
1: हम ऐसी भाषा बोलते हैं जिन भाषा को सुन करके हम खुद ही दुखी हो जाए, खुद ही डिमोरलाइज हो जाए, हमारा आत्मविश्वास डिग जाए
0: जी।
1: उस हिसाब से फिर हमारा शरीर का जो हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारे शरीर को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। तो पुरुषार्थ की सिद्धि तभी होगी जब शास्त्र के अनुसार मन विचार करेगा। विचार में यहाँ थोड़ा सा मैं विस्तार दूंगा कि श्रवण मतलब शास्त्र को सुने, फिर मनन करें, फिर उसका निधिध्यासन करें। अद्वैत में ये तीन स्टेप कहा जाता है कि श्रवण मनन निधिध्यासन। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप वैसा बोलने भी लगेंगे और जो बोलेंगे वही आपका शरीर सुनेगा, फिर उसी अनुसार वो व्यवहार करेगा। और अगर ऐसा आपने किया तो आपका पुरुषार्थ निश्चित ही सिद्ध होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जेहिकर जे पर सत्य स्नेहु तेहिके मिले ही न कछु संदेहु। कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने सामान्य शब्दों में कि आपका सत्य स्नेह तो हो, और वो कैसे दिखेगा? मन वचन कर्म से दिखेगा। ऐसा नहीं कि आप कर्म से कुछ और करें, मन से कुछ और सोचें और से कुछ और बोले, है ना?
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: ऐसा
0: जी।
1: ये योग होना चाहिए
0: जी,
1: इन
0: जी,
1: तीनों
0: जी।
1: का योग मन अच्छा, वचन कर्म का
0: जी। अच्छा ये बताएं कि मोह में फंसने का मुख्य कारण क्या है?
1: मोह में फंसने का मुख्य कारण सिर्फ ये है कि मनुष्य केवल मन से किसी वस्तु की इच्छा करता है, शास्त्र अनुसार कर्म से नहीं। वह पागलों से चेष्टा करता है, उसकी चेष्टा केवल मोह में डालने वाली है, पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली नहीं।
0: अच्छा,
1: मन से इच्छा करिए और शास्त्रों के अनुसार कर्म न करिए तो ये चेष्टा जो है वो पागलों की चेष्टा है।
0: जी जी जी जी,
1: विक्षिप्त कर देगी आपको। हाँ, हाँ। और आप देखेंगे तो लगभग लोग इसके शिकार हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना? इच्छा हमारी कितनी प्रबल है। राजा बनना किसे नहीं आता, सब चाहते हैं कि राजा बने, लेकिन राजा बनने के लिए जो कर्म है या राजा बन जाने के बाद जो राजा का कर्म है क्या हम कर रहे हैं? तो इसी पर तो पूरी परंपरा चल रही है। मुझे एक दृश्य याद आता है, जब राजा और प्रजा की बात आई, समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी को एक बार कहीं यात्रा कर रहे थे वो, तो उनको लगा कि इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कुशल राजा है और प्रजा का भरण पोषण करता है। तो इस भ्रम से मुक्त करने के लिए उन्होंने कहा कि देखो ये क्या है। उन्होंने कहा तो पत्थर है, कहा इसको तोड़ो। तो कहते अरे साहब ये क्या तोड़ने का मतलब? तो तोड़ा गया तो उसमें एक कीड़ा निकला।
0: कीड़ा?
1: हाँ। कहते हैं कि तुमने अपने राज्य का भरण पोषण करने के लिए जितने साधन किए हैं, इस कीड़े के लिए तुमने क्या किया है? ये भी तो यहाँ जी रहा है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये तुम भ्रम पाल के बैठे हो कि तुम जिंदा रख रहे हो,
0: तुम सबको पाल रहे हो,
1: और ये भ्रम मनुष्य को पल जाता है अपनी बुद्धि के साथ।
0: जी जी।
1: जबकि वो ये बताना चाहते थे कि इस सृष्टि में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का हक है। मां फलेशु कदाचन, जो कहा भगवान कृष्ण ने, इसका बड़ा गूढ़ अर्थ था। मतलब मैं कहता हूं कि फल के साथ ट्रिगर होने वाले लोग, फल के साथ चलने वाले लोग इस रहस्य को कैसे जानेंगे? वो ये भूल जाते हैं कि फल कुछ और नहीं है, वो कर्म का ही रूपांतरण है। कर्म ही आपका फल बनता है, और आप सोचते हैं कि कर्म फल अलग है, इसीलिए भारत में कर्म फल कहलाता है, या आपके कर्म का फल है। ये मत सोचो कि कहीं और से दैवी दैव के साथ मिला
0: जी,
1: हुआ है
0: जी,
1: आप
0: जी।
1: ही के कर्म का फल है। ये अलग बात है कि आप अपने उस कर्म को उद्घाटित नहीं कर पा रहे हैं कि आपके किस कर्म का ये फल है, लेकिन है वो आप ही के कर्म का फल। एक मैं कथा बताऊं आपको, पूछा गया, जिसे आपने प्रारब्ध की बात की, कहते हैं पूछा गया कि प्रारब्ध कैसे व्यक्ति का पीछा करता है? तो इंद्र कहते हैं कि जैसे हजारों गायों के बीच एक बछड़ा अपनी माँ के स्तन के पास पहुंच जाता है, किसी और के पास नहीं पहुंचता, ऐसे ही आपका प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब आपका पूर्व कृत कर्म, आपका पीछा कर रहा है। प्रारब्ध कोई फल नहीं है। लोगों ने ये बहुत गलत अवधारणा पाल रखी है कि प्रारब्ध का फल हम भोग रहे हैं। प्रारब्ध आपका कर्म है जिसका कर्म फल आप भोग रहे हैं वो कर्म का फल है,
0: यही फल की प्राप्ति का कारण है।
1: यही फल की प्राप्ति का कारण है कि शास्त्र के अनुसार मनन करें, चिंतन करें और वैसी ही वाणी बोलें। इसी को हम लोग सदकर्म कहते हैं, सद चिंतन, सद विचार और सदकर्म। जब ये तीनों मिलते हैं तो पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम से।
0: अच्छा ये बताएं कि पुरुषार्थ कितने प्रकार का होता है?
1: पुरुषार्थ दो प्रकार का होता है, एक शास्त्रानुमोदित पुरुषार्थ और दूसरा शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ। यानी शास्त्रानुमोदित पुरुषार्थ पुण्य कर्म और शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ पाप कर्म है। इन दोनों में से जो शास्त्र विरुद्ध पुरुषार्थ है वह अनर्थ का कारण होता है और शास्त्रानुमोदित पुरुषार्थ परमार्थ वस्तु की प्राप्ति का कारण होता है। परमार्थ वस्तु मतलब परमात्मा की प्राप्ति का कारण होता है, उस परम चेतना को जानने का मार्ग प्रशस्त करता है जिस चेतना पर ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। जैसे कहते हैं ना, महासागर के जल में जो उत्ताल तरंगें उठ रही हैं और गिर रही हैं वो सागर में हो रही हैं, ऐसे ही जो परमार्थ सत्य है उस परमार्थ सत्य में इस पूरे जगत की गति चल रही है, चाहे वो उत्पत्ति हो, चाहे वो स्थिति हो, चाहे वो प्रलय हो। इन तीनों स्थितियों में जो क्रिया है, क्रिया हो रही है वो उस परमार्थ सत्य की वजह से हो रही है, यद्यपि सत्य के नाते क्रिया नहीं हो रही है। क्रिया सत्य से बिल्कुल अलग है, लेकिन क्या समुद्र की तरंगे समुद्र की वजह से हैं?
0: नहीं,
1: समुद्र की वजह से नहीं है। विचार करके देखें तो वो चंद्रमा और सूर्य के एक आकर्षण का प्रभाव है।
0: जी जी जी।
1: देखें तो ज्वार भाटा जो आता है वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है। बृहद ज्वार बृहद भाटा क्यों आता है? क्योंकि उस समय फुलमून होता है, माने पूर्ण चंद्रमा होता है, ठीक है, या चंद्रमा नहीं होता है तो उनका वो आकर्षण है। अगर वो आकर्षण न होता तो समुद्र में लहर नहीं होती। तो लहर समुद्र में नहीं है, लहर चंद्रमा का आकर्षण है।
0: जी जी।
1: तो ऐसे ही प्रकृति में क्रिया हो रही है, लेकिन क्रिया जो है उस परम परमार्थ जो परम सत्य है उसके स्थिति में हो रही है, वो स्थित है। हाँ, जो अज्ञेय है, जो ज्ञात नहीं हो पा रहा है। ज्ञेय तो आप जगत को जानेंगे, और हमारे यहाँ ऋषि कहते हैं कि नहीं, ज्ञेय वो परमार्थ सत्य है। देखिए ये अंतर हो गया पाश्चात्य और भारतीय दर्शन का, कि भारतीय दर्शन ने कभी भी ज्ञेय प्रकृति की शक्ति को नहीं कहा, उसने परमार्थ सत्य को ज्ञेय कहा, कहा वो जानने योग्य है। हाँ। और राम उसको जानने के अधिकारी हो गए हैं, इसलिए उनको ये ज्ञान दिया जाए। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रकृति को ही जानने में पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। हम भगवान के पास भी भगवान के लिए नहीं जाते, संसार के लिए जाते हैं। आप विचार करके देखें कि संसार का कोई कष्ट, संसार की कोई पीड़ा, संसार का कोई सुख पाने के लिए हम भगवान की आराधना करते हैं। अंततः भगवान ने इतना कुछ दिया उसके बाद हम संतुष्ट नहीं हुए, जो मांग रहे हैं क्या वो पाके संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे। या जिनको मिला है वो संतुष्ट हैं? नहीं हैं। लेकिन हम कभी विचार नहीं करते, क्योंकि शास्त्रानुकूल हम पुरुषार्थ नहीं करते। शास्त्रानुमोदित पुरुषार्थ जब करेंगे तब इस तरह की दृष्टि पैदा होगी और हम बीतराग को समझ पाएंगे और वैराग्य प्रकट होगा। बीतराग में वैराग्य प्रकट होता है।
0: हाँ।
1: और कई बार संसार की विफलताओं से भी वैराग्य प्रकट होता है।
0: जी,
1: वो बीतराग की स्थिति नहीं है।
0: जी जी जी
1: जी,
0: ये बात हमने निराशा की है। निराशा है बिल्कुल। अच्छा, हम प्रारब्ध और कर्म की बात कर रहे हैं, तो योग वासिष्ठ क्या कहता है प्रारब्ध क्या है, और क्या इस जन्म में प्रारब्ध ही भोगता है मनुष्य?
1: प्रारब्ध को लेकर के मैंने भी बहुत सारे लोगों के विचार देखे। कई ऐसी मान्यताएं हैं जहां लोग कहते हैं कि प्रारब्ध हम भोग रहे हैं। प्रारब्ध को इस रूप में बताया गया कि प्रारब्ध का फल हम भोग रहे हैं। निश्चित ही कभी भी कोई फल बिना कर्म के बनता ही नहीं है, कर्म का ही फल बनता है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं राम से, कहते हैं कि राम, यह पूर्व जन्म का जो पुरुषार्थ है वह प्रारब्ध है। पूर्व जन्म का पुरुषार्थ, यानी पूर्व जन्म के कर्म का जो फल है वो है प्रारब्ध, यानी वो भी कर्म का ही फल है। प्रारब्ध कुछ और नहीं है, कर्म का फल है। और व्यक्ति जो है प्रयत्न करके अपने कर्म फल को क्षीण कर सकता है।
0: कैसे?
1: हाँ, इसके लिए वो कहते हैं कि ये जो प्रारब्ध है मुझे प्रेरित करके विशेष परिस्थितियों में डाल देता है, इस प्रकार की बुद्धि को बलपूर्वक कुचल डालना चाहिए। ये इशारा है वशिष्ठ जी का
0: जी।
1: कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि प्रारब्ध हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में बलपूर्वक डाल देता है या हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रारब्धावशात है,
0: जी जी।
1: तो कहते हैं इसको प्रयत्न पूर्वक कुचल देना चाहिए, क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक प्रबल नहीं हो सकता।
0: अच्छा,
1: प्रारब्ध
0: बड़ी बात हो,
1: बड़ी बात हो गई। देखिए ऋषि की घोषणा है, राम जी से कह रहे हैं कि वो प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक प्रबल नहीं हो सकता।
0: जी जी।
1: तब तक प्रयत्न पूर्वक उत्तम पुरुषार्थ के लिए सचेष्ट रहना चाहिए जब तक कि पूर्व जन्म का अशुभ पौरुष स्वयं पूर्णतः शांत न हो जाए।
0: ये बड़ा सुंदर उत्तर हो गया। कई बार होता है ना, लोग कहते हैं कि अगर भाग्य में लिखा है, अगर प्रारब्ध है, तो फिर हम कुछ न करें, क्यों करें, क्या फर्क पड़ता है। तो ये सुंदर जवाब,
1: भाग्यवाद यही तो पोषित हो रहा है इसी बात के लिए। मुझे रामचरित मानस की पंक्तियां याद आ रही है। रामचरित मानस की दो पंक्तियों को मैं उद्धृत करना चाहूंगा। जैसे एक जगह गोस्वामी जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सोतस फल चाखा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो यहाँ पर वही बात कह रही इन्होंने, जो इन्होंने कही है अभी, कि प्रयत्न से अधिक प्रबल
0: परम नहीं हो सकता। बात है, लेकिन मैं बड़ी मुग्ध होती हूँ इस बात पर कि जब हम योग संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम गीता की भी बात कर रहे हैं, तो तुलसीदास जी का रामचरित मानस की पंक्तियां आ जाती है। मतलब कैसे योगी वो भी थे, कैसी कैसी बातें वो लिख रहे हैं। जो वशिष्ठ जी कह रहे हैं
1: वो भी
0: तुलसीदास जी कह रहे हैं।
1: नाना पुराण निगमागम संबतम कहा ही उन्होंने, विभिन्न पुराणों के निगम आगम का संबत बात मैं कर रहा हूँ। इसीलिए कहा गया कि शास्त्रानुकूल, शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ। वही गोस्वामी जी एक जो लिखते हैं, वही है सोई जो राम रच
0: राखा,
1: कोई तर्क बढ़ावा ही साखा।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जो भाग्यवादी लोग हैं वो सहारा ले लेते हैं,
0: कि
1: जो भगवान चाहते हैं
0: वही है, वही जो राम रच राखा।
1: क्या वो भूल जाते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर स्वतः पल चाखा। तो ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राम ऐसा नहीं है। और सच ये है, जो जहां तक मुझे लगता है सुनीता जी, कि हमारे ऋषि इतने दूरदृष्टा थे कि वो हमारे मन का प्रबंधन करना चाहते थे। वो जानते थे कि जब कभी आपका मन आपके पुरुषार्थ से छीण हो, विकल हो, तब वो इस सहारे से आप अपने आप को रोकें, सोई जो राम, ताकि आपको विचलन न हो। लेकिन अब ये भी आप सहारा लेकर के पलायन न कर जाएं, इसलिए उन्होंने कहा कर्म प्रधान विश्व का जो जस कर स्वतः फल चाखा। तो उन्होंने कहा कि वो कभी भी आपके मतलब प्रयत्न से प्रबल नहीं हो सकता। और वो कह रहे हैं कि जब तक पहले जन्मों का किया हुआ अशुभ कर्म समूल नष्ट न हो जाए, तब तक तत्परता से उत्साह पूर्वक साधन करते रहना चाहिए।
0: अच्छा,
1: ये उपदेश है वशिष्ठ जी का हम सभी के लिए। यद्यपि वो राम जी को कह रहे हैं कि जब तक पूर्व जन्म के अशुभ, माने हमारे जीवन में कुछ ऐसे परिणाम आ रहे हैं जो हमें कबूल नहीं हो या स्वीकार नहीं हो, तो हमें क्या करना चाहिए, इस जीवन में पुरुषार्थ इतना प्रबल कर देना चाहिए। मुझे कथा आती है, एक भारत के बहुत बड़े ऋषि हुए हैं जिन्होंने 24 बार गायत्री का पुरस्करण किया।
0: अच्छा।
1: और उन्होंने जिस जिस के लिए किया, उनके जीवन में बहुत कष्ट था, तो वो तंग आकर के गुरु ने कह दिया कि गायत्री का पुरस्करण करिए और सब दुख दूर हो जाएगा। 24 बार उन्होंने किया और उनकी पत्नी नहीं रही, बेटा नहीं रहा, सब कुछ संसार का चिंता चला गया, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा गुरु की बात है, मान लिया। और जब 24 पुरस्करण होने के बाद गायत्री प्रकट हो गई और कहते हैं कि जो मांगो, तुम्हारी जो वांछा हो, तो वो हंसने लगे, कहते थे जिनके लिए मांगना था
0: वो चले गए,
1: वो सब चले गए
0: जी।
1: अब तो कोई इच्छा ही नहीं बची, उन्हीं के लिए सब मैं कर रहा था, मेरा तो कोई कभी इच्छा नहीं था,
0: कभी नहीं।
1: मेरा अपनों के साथ जो नाता था, उन्हीं के लिए हम बेहोल थे, परेशान थे, और वो सब के सब चले गए। तब तक तो आप आई नहीं, अब जब वो चले गए तो मांगू किसके लिए। तो गायत्री देवी कहती है, ऐसा मतलब ऋषि ने कहलवाया है, कि जरा पीछे मुड़ के देखो। तो जब पीछे देखते हैं वो, तो उनका प्रारब्ध जल रहा था।
0: अच्छा।
1: यही बात है, पीछे आग लगी थी। कहा देखो ये तुम्हारे जो 24 पुरस्करण का फल है, कि हर पुरस्करण ने तुम्हारे प्रारब्ध को जलाया है, तुम्हारे अशुभ फल को मिटाया है, और उसका परिणाम ये है कि तुम आज भी पुरस्करण कर रहे हो, जबकि तुम कब के डिग चुके होते। 24 तक टिकना मामूली बात नहीं है।
0: जी, जी, जी।
1: तो ऐसे में तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं, तुम्हारे प्रयत्न से तुम्हारा पुरुषार्थ, जो अशुभ पुरुषार्थ था, जो शास्त्र विरुद्ध था, वो सब नष्ट हो चुका है। अब तुम निर्मल हो गए हो, अब तो तुम्हारे सामने जगत की सारी रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे कदमों में झूलेंगी, क्योंकि तुम अब इस योग्य बने हो।
0: बिल्कुल।
1: तो वो गायत्री को प्रणाम करते हैं, कहते हैं देवी, अब क्यों मुझे इस अविद्या के चक्र में पड़ना। अब तो अविद्या का आवरण हट गया आपके आने से, आप तो ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं, देवी हैं, अब तो मैं प्रकाशित हो गया, अब मैं क्या फिर मांगू आपसे। तो बड़ी कृपा की आपने मुझे बोल, वो कहते हैं वो मुक्त हो गए। तो ऐसा भी ऋषियों ने दृष्टि दी है। तो प्रयत्न से हम अपने पूर्व के फल को मिटा सकते हैं, लेकिन उसका आधार प्रयत्न है, उसका आधार प्रारब्ध के अधीन होकर के बैठ जाना या पलायन कर जाना नहीं है।
0: जी जी। अच्छा, एक बात आप बताएं कि इहलोक और परलोक की हमने बात की, इसकी सिद्धि कैसे होती है?
1: इहलोक और परलोक की सिद्धि, इहलोक और परलोक की सिद्धि होती है, आप जब शास्त्र के अनुसार किया हुआ उद्योग करते हैं, शास्त्रानुसार जो उद्योग करते हैं
0: जी,
1: उस उद्योग से इहलोक और परलोक की सिद्धि होती है। शास्त्र यहां बार बार इसलिए कह रहे हैं कि शास्त्र जो है हमारे सुधीजन या गुरुजनों का एक पूरा, शास्त्र गुरु है, जिसे कथा आती है भागवत में, जब जा रहे हैं भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर, तो उद्धव से कहते हैं कि अब मैं इसी मतलब भागवत महाशास्त्र में रहूंगा, भागवत महापुराण में रहूंगा, यद्यपि उसको लोग कह के वो तत्व नहीं निरूपित करते, भागवत महापुराण कहने का आशय उनका ये था कि शास्त्र में रहूंगा, शास्त्रों में जो वचन है ऋषियों के, उनके द्वारा जो देखे गए दृश्य हैं, वो चाहे जितने पुराने हों लेकिन आज भी वो अर्वाचीन है, नवीन है, प्राचीन नहीं है। देखिये एक बात आप ध्यान रखिए, सनातन जो धर्म की बात करते हैं हम लोग, एक्चुअल में सनातन धर्म है, जो सत्य है वो सनातन है और सनातन धर्म है। कोई धर्म सनातन नहीं है,
0: धर्म का नाम सनातन नहीं
1: है, सनातन धर्म है।
0: जी, जी,
1: और सनातन की बात शास्त्रों में हुई है, जिस भी शास्त्र में वहां का अध्येता आता है वो सनातन परंपरा की बात
0: मतलब
1: करता
0: है, सनातन ही धर्म है,
1: सनातन ही धर्म है। और यहाँ पर क्या होता है, कई बार हम लोग सनातन धर्म और इन धर्मों की लड़ाई में उलझ जाते हैं, लेकिन जो सनातन है, जो कभी खंडित नहीं होगा, अखंड ज्ञान जो है, अद्वैय ज्ञान जो है, वो धर्म है, जिसके सिवाय कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, अद्वैय ज्ञान। और अद्वैय ज्ञान वही ज्ञान है, परमार्थ सत्य, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म वनापरा, ये है अद्वैय ज्ञान, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये है अद्वैय ज्ञान, सब ब्रह्म में है। लेकिन ये दृष्टि आते ही आप देखिए, मतलब कहता हूं मैं, जो विषम दृष्टि है मनुष्य की, जहां पर हम अपना पराया, मैं और तुम, अहम मम वृत्ति से ग्रसित हो जाते हैं, इस वृत्ति से मुक्ति दिलाती है यही अद्वैय ज्ञान की परंपरा, जहां पर दूसरा कुछ है ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको भी बहुत सुंदर चौपाई में कहा है कि सी राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगपान। यही है अद्वैय ज्ञान कि सी राम में है। अब यहाँ कोई कहे तुलसी के राम, कहां से तुलसी के राम हो गए भाई, जब पूरा जगत ही राम में है, देख रहे हैं वो, तो कहां राम नहीं है
0: जी।
1: जित देखूं तो तू ही तू है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, ये कहने के अलग अलग ढंग हैं। लेकिन सी राम में जिसको जगत दिख गया, अब उसके पास भेद दृष्टि कहाँ रही, राम से अलग कुछ है ही नहीं उसके लिए। तो ये जब दृष्टि आती है, ये है सनातन धर्म, जहां पर आप सर्वव्यापी उस परम तत्व को, ब्रह्म तत्व को सब में देख सके, इसको कहते हैं ब्राह्मी दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहा गया, अद्वैय ज्ञान योग कहा गया, इसी योग का उपदेश वशिष्ठ जी कर रहे हैं राम जी को।
0: अच्छा, अक्सर लगता है कि जो जीवन है वो व्यर्थ बीत गया है ना,
1: जी
0: जन्म तेरा बातों ही बीत गया,
1: जी जी।
0: तो मैं जानना चाह रही थी कि किन लोगों का जीवन व्यर्थ में व्यतीत हो जाता है।
1: इसके लिए वशिष्ठ जी कहते हैं, जो शास्त्र के अनुसार अपनी श्रवण मनन आदि चेष्टाओं का साधन नहीं करते और चित्त में विषयों का ही चिंतन करते रहते हैं, उन मूढ़ पुरुषों की अत्यंत दूषित भोगेच्छा को धिक्कार है और ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ व्यतीत हो जाता है। भोगेच्छा, अब आप देखिए, भोगों की इच्छाएं शांत नहीं होती, ये हमने आज तक के भोगों से सीखा लेकिन नहीं सीख पाए, अनसुना कर दिया। आप भागवत महापुराण में कथा आती है ययाति का प्रसंग,
0: जी
1: सुना होगा, बहुत सारे श्रोताओं ने सुना होगा कि वो भोगों में इतने संलिप्त थे कि उन्होंने अपने पुत्र से भोगों की इच्छा को शांत करने के लिए जवानी मांगना शुरू कर दिया कि आप अपनी जवानी दे दो। और एक उनका अंतिम जो सबसे छोटा पुत्र था, अपने पिता के भोग की इस विह्वलता को देखकर वो समझ गया कि ये भोग कभी शांत नहीं करते, और उस पुरु ने अपना कहते हैं दे दिया उनको कि ले जाओ। और जब लेकर के फिर कुछ दिन उन्होंने भोग किया तो उन्हें लगा कि अरे मेरे पुत्र को भोगों की नश्वरता का बोध है, लेकिन मैं कितना कृतज्ञ हूं कि मैं उससे मांग रहा हूं, बाकी पुत्रों से मांगा उन्होंने नहीं दिया, छोटे ने दे दिया, कहा कि वो उनका गुरु बन गया। तो कई बार हमारे परंपरा में गुरु परंपरा इतनी सुदृढ़ रही है कि पिता का गुरु पुत्र भी बना है, और सबसे छोटा पुत्र जो है वो उनको ज्ञान दे गया, और फिर वो अपने आप को धिक्कारते हैं, वो भोगेच्छा को धिक्कारते हैं और पुरु को उसके यौवन को सौंपते हैं और फिर वो मुक्त हो जाते हैं इससे। तो कहते हैं कि ऐसे लोग अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। आपको बताऊं, जो लगातार हमेशा विषयों का ही चिंतन कर रहे हैं, विषय विष कहा गया है ऋषियों की दृष्टि में, और हम लोगों के लिए विषय अमृत है, विषय अमृत का पान करते हैं हम लोग, उसी के लिए जी रहे हैं, और ये नहीं सोचते हैं कि मतलब विषय मारता है, जिसको हमारे भर्तृहरि जी कहते हैं कि भोगम न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कि भोगों को हमने नहीं, भोगों ने हमें भोगा, कृष्णा ने हमें बूढ़ा कर दिया, वो बूढ़ी नहीं हुई, वो तो जवान अभी भी है।
0: जी, जी,
1: और
0: जी,
1: हर वृद्ध आदमी देखिए वो तृष्णा के साथ आने वाली पीढ़ियों की योजनाओं को लेके बैठा है ना, जबकि अब आंखों से दिखना बंद हो गया, हाथ पांव कांपने लगे, शरीर नहीं संभल रहा है, लेकिन आज भी परिवार और संसार की चिंता वैसे ही बनी हुई है, तो तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, शरीर बूढ़ा हो गया। तो ये कोई भर्तृहरि जैसा आत्मदृष्टा देखेगा, कोई योगी देखेगा। तो इसीलिए राम, ये योग जो वासिष्ठ है, ये योगियों का प्रसंग है, और इसके लिए हमारे श्रोताओं को निश्चित ही अच्छी अवधारणा के साथ इस ग्रंथ का श्रवण करना चाहिए।
0: अच्छा, लेकिन कमाल की बात यह है कि जो बातें आप कह रहे हैं कि तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए, मनुष्य बूढ़ा हो गया, सुना बहुत बार सुना, लेकिन असर तो हम पर भी नहीं है।
1: जी जी, बिल्कुल ठीक है।
0: ये असर कैसे हो?
1: हाँ, अभ्यास वही जो अभी हमने शुरू में ही कहा है कि शास्त्र के अनुसार मन, वाणी और शरीर का व्यवहार।
0: जी जी,
1: तो अब जैसे शरीर बूढ़ी होगी ये मानकर हम क्या जवानी में व्यवहार करते हैं? फिर मुझे एक कथा याद आ गई कि एक बूढ़े बाबा जा रहे थे कहीं से, तो वो थोड़ी झुकी कमर थी, हाथ में लाठी लिए थे, तो बच्चों

0: स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। स्वार्थ बहुत प्यारा शब्द है, लेकिन इसके अर्थ इतने बिगाड़ दिए गए कि हम स्वार्थी शब्द का नाम से घृणा करते हैं कि बड़ा स्वार्थी आदमी है।
1: हाँ।
0: जबकि स्वार्थ शब्द योगियों का शब्द है कि जो स्वयं के अर्थ को खोजने में तत्पर हो या जिसने स्वयं के अर्थ को जान लिया वो स्वार्थी है।
1: स्व का अर्थ
0: जी। तो ये कहते हैं कि परम स्वार्थ जो है वह है परमात्म साक्षात्कार। और जब आप स्वार्थ को सिद्ध करते हैं तो आप अपने स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, और स्वरूप साक्षात्कार में अयमात्मा ब्रह्म या अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता है, ज्ञान नहीं होता, बोध होता है। जी, तो ये है परम स्वार्थ।
1: ये बोध और ज्ञान की लड़ाई हम लोग के साथ भी चल रही है।
0: हम लोग ज्ञान में सुन ली, हम लोगों ने क्या किया, ऋषियों की भाषा सुन ली, लेकिन न उसका मनन किया, श्रवण तो कर लिया मनन नहीं किया, मन से विचार ही नहीं करते
1: जी जी,
0: और निधिध्यासन तो दूर, तो फिर व्यवहार करने का सवाल ही नहीं होता होता। तो हमारे पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे हो
1: जी?
0: हमारे पुरुषार्थ की सिद्धि इसलिए नहीं हो रही है। अच्छा, एक बार और विचार करिए कि संसार में कभी किसी के पुरुषार्थ की सिद्धि हुई? पुरुषार्थ का जो परम पुरुषार्थ है वो मोक्ष है
1: जी।
0: संसार में तो बंधन ही मिलता है ना। आप बहुत कुछ अर्जित कर लें तो और बड़ा बंधन खड़ा कर लेंगे, और छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। जितनी आपकी इच्छाएं पूरी होती चली जाएं, उतनी ही आप इच्छाओं के बंधन में बंधते चले जाएंगे, उतना ही वो संसार की वस्तु आपको और गहरे में बांधेगी। परम पुरुषार्थ तो मोक्ष है। तो पुरुषार्थ का मतलब क्या हो? धर्म। इसीलिए भारत का ऋषि अद्भुत था। धर्म, धर्म में फिर हमने बात की सनातन धर्म है ना, जो सनातन है उसके अनुसार व्यवहार करना, उसके अनुसार विचार करना और उसी को बोलना, यह है धर्म
1: जी।
0: फिर धर्म जब होगा तो जीवन का अर्थ सिद्ध होगा। अर्थ मतलब यहाँ धन ही नहीं है।
1: हाँ।
0: जीवन भी तो एक धन है, जीवन से बड़ा धन क्या है?
1: बिल्कुल।
0: जीवन पर जब संकट आए तो संसार के समस्त धन को क्या हम दांव पर नहीं लगाते?
1: बिल्कुल।
0: तो जीवन से बड़ा कोई धन नहीं है, और उसी जीवन को संसार के धन को पाने के लिए हम नष्ट करते हैं और बीमार होते हैं, और बीमार होकर फिर बाद में बचाने के लिए धन खर्च करते हैं। ये हम लोगों की मूर्तापूर्ण कहानी है कि पहले हम धन को कमाने के लिए अपने शरीर को बीमार करते हैं, और फिर बीमारी से मुक्त होने के लिए कमाए हुए धन को खर्च करते हैं
1: जी,
0: और एक दिन मर जाते हैं। तो हमने कमाया कि खोया, क्या किया? कंकड़ पत्थर इकट्ठा किया
1: जी।
0: तो कहते हैं कि वो तब अर्थ की सिद्धि होती है, और अर्थ जब सिद्ध होता है तब आपके काम की सिद्धि होती है। भारत में पूर्ण काम की बात की गई है। भारत का ऋषि कहता है काम मतलब अधूरी कामनाएं नहीं, पूर्ण काम होना। एक मंत्र बहुत सभी हमारे श्रोताओं ने सुना होगा, आपको भी शायद स्मृति हो जाए, ओम पूर्ण मदः पूर्ण मिदम पूर्णात् पूर्ण मदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेवा अवशिष्यते। मैंने आप देखें तो आपका जो स्वरूप है वो पूर्ण है, और ऐसा पूर्ण है जिसमें से कुछ भी घटा लीजिए उसकी पूर्णता में कमी नहीं होगी। संसार के किसी भी विषय वस्तु को अगर आपसे छीना जाए तो आप अधूरे हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने जीवन के अर्थ को प्रकट कर चुके हैं तो वो कभी भी अपूर्ण नहीं होगा। और पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेवा अवशिष्यते, उस पूर्ण से जो घटा तो भी पूर्ण, जो शेष बचा वो भी पूर्ण। तो ऐसे में पूर्ण को जब हम जान लेते हैं तो हम पूर्ण काम होते हैं, तो काम की सिद्धि होती है। और जब ऐसे पूर्ण काम हम होते हैं तो मोक्ष तो हो ही जाता है। यही तो मोक्ष है। पूर्ण काम होना मतलब मोक्ष होना, और पूर्ण काम होना मतलब अपने ओम पूर्ण मदह, उस पूर्ण ओम स्वरूप को अनाहत जो ध्वनि है उस तरंग के साथ हो जाना है। अपने स्वरूप को ही नहीं जानना बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप तरंगों की भाषा भी समझना, जिसको क्वांटम फिजिक्स तरंग पदार्थ के रूप में व्यक्त करता है कि एक ही समय में कब कोई वस्तु पदार्थ है कब तरंग है ये जानना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ही हमारी तरंगों की भी एक दुनिया है, जहां पर वो तरंगों की अनाहत नाद कहा हमारे ऋषियों ने उसे। वो तरंगें दो की वजह से नहीं है, आहत नहीं है, वो अनाहत है, वो ओंग है, अनहद नाद। तो उसके द्वारा हम अपने जीवन को,
1: समय बहुत कम रह गया है तो मैं चाहती हूँ कि बहुत संक्षेप में आप बता दें कि जीवन में गुणों को ग्रहण करने की विधि क्या है।
0: सुंदर कहा आपने, जीवन में गुणों को ग्रहण करने की विधि है विचार पूर्वक दोषों को त्याग करके गुणों को ग्रहण करना चाहिए।
1: अच्छा,
0: अब देखिए ये भी एक ऋषि का कितना गूढ़ तत्व चिंतन है। हम लोग दोष के साथ गुण को ग्रहण करते हैं। वशिष्ठ जी के ही इस योग वशिष्ठ में एक प्रकरण आता है जिसमें कहते हैं कि शुद्ध गाय का दूध भी अगर चमड़े के थैले में दूहा जाए तो वो अपवित्र हो जाए। तो ऐसे ही दोष के साथ अगर गुण ग्रहण किया गया तो गुण भी दोषपूर्ण हो जाएगा। तो दोष का त्याग कर आप गुणों को ग्रहण करें, और दोष का त्याग कैसे होगा? विचार पूर्वक होगा, क्योंकि बिना विचारे आप दोष के साथ होते हैं, विचार पूर्वक आप दोषों को देख पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप प्रतिक्रिया मत करें, आप रिस्पॉन्ड करें। रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्डिंग व्यक्तित्व होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए कि हम रिस्पॉन्स करें। तो इस तरीके से, और वो तभी होगा जब विचार पूर्वक हो। और कहा भी गया हमारे यहाँ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, है ना। तो पछताने वाली बात तब होती है जब दोष के साथ गुण ग्रहण किया जाता है और विचार पूर्वक दोष को त्याग करके गुणों को ग्रहण किया जाए।
1: तो बहुत ही सुंदर चर्चा रही शशिकांत जी, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हम आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की पौरुष की प्रधानता और प्रारब्धवाद के खंडन विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपके साथ बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब अनुमति दें, नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आज आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त सुनीता सिंह। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। बस थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम।

आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बांसुरी वादन। बांसुरी वादन होगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और उनके शिष्यों का। ये प्रस्तुत हुई भारत भवन के 44वें वर्षगांठ समारोह के मौके पर। कार्यक्रम की शुरुआत हुई राग यमन से।

0: आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के संपादित अंश।
1: बहुत ही सम्मान के साथ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से निवेदन है, 84 साल गिरह के इस अवसर पर हम सबको धन्य करें। बांसुरी का नाद हम सबकी रूह में, हम सबकी आत्मा में, हम सबकी चेतना में प्रार्थना बनकर गूंजता रहे। जोरदार तालियों के बीच पंडित हरिप्रसाद चौरसिया।

आज के इस खास कार्यक्रम में आप आनंद ले रहे थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी और उनके शिष्यों के बांसुरी वादन का। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पुलोरन और मैनहट्टन जायफल के लिए हुआ इतिहास का सबसे बड़ा सौदा। क्या आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे प्रसिद्ध रियल एस्टेट सौदा मैनहट्टन की खरीद वास्तव में इंडोनेशिया के एक छोटे और सुदूर द्वीप पुलोरन से जुड़ा था। आज भले ही मैनहट्टन गगनचुंबी इमारतों का एक वैश्विक जंगल है, लेकिन 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ये केवल एक दलदली बस्ती हुआ करती थी, जिसमें कोई मसाले का उत्पादन भी नहीं होता था। नक्शे पर पुलोरन को खोजने के लिए आपको कमरे के आकार के कागज की जरूरत होगी। ये केवल 2 मील लंबा और आधा मील चौड़ा है। इसके चारों ओर घूमने में मात्र 1 घंटा लगता है और यहाँ ताजे पानी का कोई स्रोत नहीं है। फिर भी ये द्वीप मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस का घर था, जिसे आमतौर पर जायफल के पेड़ के रूप में जाना जाता है। 1603 में जायफल और उसकी बाहरी झिल्ली जावित्री वनस्पति जगत की कीमती वस्तुएं थी, जिनका उपयोग मांस को सुरक्षित रखने और महंगे स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में किया जाता था। क्या आप जानते हैं कि बांदा में 10 पाउंड जायफल की कीमत आधे पैसे से भी कम थी, लेकिन यूरोप में इसे 32,000% के चौंका देने वाले मुनाफे पर बेचा गया। जायफल का लालच इतना अधिक था कि राजा जेम्स प्रथम ने अंततः खुद को इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, फ्रांस, पुलोवे और पुलोरन का राजा घोषित कर दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए पुलोरन का महत्व जायफल की एक पौध में निहित था। 1616 में यहाँ के द्वीपवासी, जो कि ओरांग काया नामक प्रधानों द्वारा शासित स्वशासी गणराज्य थे, उन्होंने डच उत्पीड़न से बचने के लिए अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। उन्होंने अंग्रेजों को पुलोरन की पीली मिट्टी में लगा हुआ जायफल का एक पौधा भेंट किया। ये विश्वास का एक बड़ा कार्य था, क्योंकि बांदावासी अपने एकाधिकार की रक्षा के लिए इन पौधों की कड़ी निगरानी करते थे। क्या आप जानते हैं कि इस नन्ही सी पौध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना स्वरूप बदलने पर मजबूर कर दिया? चूंकि उस समय कंपनी को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था, इसलिए उसने क्राउन की ओर से द्वीप को स्वीकार किया। इसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल ने एक नया चार्टर जारी किया, जिसने कंपनी को विदेशी क्षेत्रों में किलेबंदी करने और बसने की अनुमति दी। हालांकि डचों के खिलाफ पुलोरन पर कब्जा बनाए रखना एक तनावपूर्ण और महंगा दायित्व था, जिसमें 4 साल की लंबी नाकेबंदी शामिल थी। इन मसालों के द्वीपों को लेकर अंग्रेजों और डचों के बीच प्रतिद्वंद्विता इतनी तीव्र थी कि डचों के अलावा किसी और के साथ व्यापार करना देशद्रोह माना जाता था। अंततः 1667 में 60 वर्षों के दबाव के बाद ब्रिटिश क्राउन ने हिसाब बराबर करने का फैसला किया। ब्रेडा की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने पुलोरन के सभी अधिकार डचों को सौंप दिए। बदले में उन्हें उत्तरी अमेरिकी समुद्र तट पर न्यू एम्स्टर्डम नामक एक बस्ती मिली, जिसका नाम उन्होंने तुरंत बदलकर न्यूयॉर्क रख दिया। उस समय डचों को लगा होगा कि उन्होंने अंग्रेजों को ठग लिया है। दुनिया के सबसे मूल्यवान मसाले पर एकाधिकार के बदले मैनहट्टन जैसा बिना मसालों वाला द्वीप देकर। क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया के इस छोटे से द्वीप के बिना बिग एप्पल का इतिहास डच भाषा में लिखा गया होता? भले ही बाद में पुलोरन उपेक्षित हो गया और इसके पेड़ काट दिए गए, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के जन्म में मैनहट्टन की तुलना में पुलोरन के इस छोटे से जायफल की भूमिका कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इंडोनेशिया के उस छोटे से पौधे के बिना आज न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों पर शायद अभी भी डच झंडा फहरा रहा होता। ये एक याद दिलाता है कि ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा इंडिया से अधिक ईस्ट के बारे में थी।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़। लीजिए प्रस्तुत है नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। परिक्रमा के आज के सफर पर चलिए मेरे साथ।

श्रोताओं, मैनेट परिसर में सोमवार की बारिश से भीगी शाम उस वक्त और सुरीली हो गई जब पद्म भूषण से सम्मानित बांसुरी वादक डॉ. रोनू मजुमदार ने बांसुरी की मधुर तान छेड़ी। स्पीक मैके की ओर से आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य स्टूडेंट्स को भारतीय शास्त्रीय संगीत, कला और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना था। डॉक्टर मजुमदार ने शुरुआत राग सरस्वती से की। बांसुरी पर सुरों की धीमी और सधी हुई उठान के साथ उन्होंने राग का विस्तार किया। इसके बाद रूपक ताल की प्रस्तुति में सुर और लय का सुंदर तालमेल देखने को मिला। बांसुरी के उतार चढ़ाव में कभी शांति का भाव उभरा तो कभी सुरों की चंचलता ने श्रोताओं को बांधे रखा। इसके बाद उन्होंने वंदे मातरम की धुन से माहौल को देशभक्ति के भाव से भर दिया। वैष्णव जंतो तेने कहिए पर आधारित बंदिश ने प्रस्तुति में भक्ति का रंग जोड़ दिया। बारिश के मौसम के अनुरूप उन्होंने कजरी भी प्रस्तुत की। बांसुरी से निकले सुरों में सावन की रिमझिम, लोक जीवन की सहजता और विरह की अनुभूति महसूस हुई। तबले पर रामेंद्र सिंह सोलंकी और बांसुरी पर अल्पेश सचीला ने संगत की।

मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी एवं संस्कृति विभाग की ओर से सोमवार को रविंद्र भवन में जश्न आज़ादी मुशायरे का आयोजन किया गया। अकादमी के निदेशक डॉक्टर नुसरत मेहंदी ने कहा कि मुल्क की मोहब्बत हमारी संवेदना, स्मृति और पहचान का स्वाभाविक हिस्सा है। मुशायरे में देशभर से आए शायरों ने वतन, एकता और सांस्कृतिक विरासत को अपने कलाम में पिरोया। विजेंद्र परवाज, फारूक अंजुम, नौमान शौक, साजिद रिजवी, डॉक्टर परवीन कैफ, रहमान मुसव्विर, डॉक्टर भावना श्रीवास्तव और अनुराग अर्श ने भी कलाम पेश किए। संचालन प्रोफेसर रहमान मुसव्विर ने किया। इस मुशायरे में आईएएस और गीतकार डॉक्टर भावना श्रीवास्तव लखनऊ ने गाया, जश्न आज़ादी मनाए वीरता को कर नमन हम, अश्रु के मोती चढ़ाएं, वंदना हो भारती की, नेह के दीपक जलाएं, जश्न आज़ादी मनाएं। मनीष शुक्ला ने उम्मीद जगाई, अभी जख्मी परंदे के परों में जान बाकी है, तेरी तहरीर में नामाए हिंदुस्तान बाकी है। शायान कुरैशी ने कहा, मेरे सीने में धड़कता है ये बनकर जिंदगी, दिल के अंदर रख लिया है मैंने हिंदुस्तान को।

श्रोताओं, एमसीयू में मंगलवार से यानी आज से 3 दिवसीय सत्रारंभ अभ्युदय 2026 शुरू होगा। थीम मैं और मेरा विश्वविद्यालय है। चीफ गेस्ट अभिनेता लेखक पीयूष मिश्रा विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। 35 वर्षों के 50 पूर्व विद्यार्थी भी अपने अनुभव इस कार्यक्रम में साझा करेंगे। इसका समापन 20 अगस्त को होगा।

और श्रोताओं, भोपाल के युवा कराटे खिलाड़ी, प्रशिक्षक और मार्शल आर्ट्स कोच समर्पित दुबे ने तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित विशेष कराटे इवेंट में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। इस उपलब्धि के लिए उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। आधिकारिक प्रमाण पत्र बहुत जल्द इंग्लैंड से कोरियर के माध्यम से भेजा जाएगा। समर्पित ने बताया कि ये रिकॉर्ड कराटे की विभिन्न तकनीकों को कम समय में लगातार निर्धारित तरीके से करने के प्रदर्शन पर आधारित था। प्रतियोगिता में उन्होंने नुकीते के साथ ओपन हैंड ब्लॉक, कराटे चॉप, ग्रोइन किक, अपर ब्लॉक, मिडिल ब्लॉक और लोअर ब्लॉक जैसी तकनीकों का प्रदर्शन किया। इसके लिए उन्हें करीब 30 मिनट तक लगातार प्रदर्शन करना था। बारह वर्षों से कराटे का अभ्यास कर रहे समर्पित ने नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर पहचान बनाई है। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में वो करीब 14 महीने तक लगातार पदक जीत चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके नाम 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अब तक वे करीब 44 गोल्ड सहित 50 से अधिक पदक जीत चुके हैं। समर्पित मार्शल आर्ट कोच भी हैं और युवाओं को कराटे का मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। और श्रोताओं, रुद्राक्ष कल्चर एवं वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 4 दिवसीय नाट्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों के साथ हास्य, गंभीरता और जीवन के अलग अलग पहलुओं को मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। पहले दिन नीरज हेस्टिंग द्वारा लिखित नाटक मुर्दा घर प्रस्तुत किया जाएगा। स्थान आपको हम बता दें, स्थान है रंगश्री लिटिल बैले ट्रुप। इसके मंचन का समय है 7:00 PM और प्रवेश निःशुल्क है। तो सही समय पर आप निर्धारित स्थान पर पहुंचें और इस नाटक का आनंद लें। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। इसके साथ ही परिक्रमा का आज का अंक अब यहीं संपन्न होता है। इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आज की इस सभा में आपके साथ हूँ मैं, सुनीता सिंह। फिलहाल आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ कुछ देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कुछ देशभक्ति रचनाएं। उम्मीद है आज के ये गीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आजाद हिंद।

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं इतिहास स्वराज के इस विशाल कथा सरोवर में अपनी साथी तारीख के साथ आपका स्वागत करता हूं।
1: नमस्कार दोस्तों, आज के अपने कार्यक्रम में हम एक महान स्वातंत्र वीर की गाथा तो सुनाएंगे ही, साथ ही आपको हमारे संविधान को लेकर जागरूक भी करेंगे। जैसे हमारे संविधान के तीन प्रमुख भाग हैं, भाग एक में संघ तथा उसके राज्य क्षेत्रों के विषय में टिप्पणी की गई है तथा ये बताया गया है कि राज्य क्या हैं और उनके अधिकार क्या हैं।
0: दूसरे भाग में नागरिकता के विषय में बताया गया है कि भारतीय नागरिक कहलाने का अधिकार किन लोगों के पास है और किन लोगों के पास नहीं। तीसरे भाग में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार से बताया गया है और चौथा भाग नीति निर्देशन पर केंद्रित है।
1: भाग तीन तथा चार मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं, क्योंकि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देश देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सर्वप्रथम ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
0: ये तो हुई संविधान से संबंधित बातें। अब जरा आज के उस व्यक्तित्व की बात की जाए जिसने भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में वो अध्याय जोड़ा जिसका पहला अक्षर शुरू करने का साहस भी उस वक्त के किसी नेता में नहीं था।
1: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे स्वर्णिम अध्यायों में से एक आजाद हिंद फौज, जिसके जनक

0: नारायण दत्त था। दत्त परिवार को कोलकाता का एक कुलीन परिवार माना जाता था। प्रभावती और जानकीदास बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे।
1: नौजवान सुभाष कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्रंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर उनके साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर काम करने की इच्छा प्रकट की। रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। मुंबई में गांधी जी मणिभवन में निवास करते थे। वहां 20 जुलाई 1921 को महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच पहली बार मुलाकात हुई। गांधी जी ने भी उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी।
0: इसके बाद सुभाष बाबू कोलकाता आ गए और दास बाबू से मिले। दास बाबू उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उन दिनों गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया था। दास बाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष बाबू इस आंदोलन में सहभागी हो गए। 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की।
1: दास बाबू ने विधानसभा के अंदर से अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी से लड़कर जीता। स्वयं दास बाबू कोलकाता के महापौर बन गए। उन्होंने सुभाष बाबू को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया। सुभाष बाबू ने अपने कार्यकाल में कोलकाता महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल डाला। कोलकाता के रस्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर उन्हें भारतीय नाम दिए गए।
0: 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। कोलकाता में सुभाष बाबू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके पश्चात एक समय ऐसा भी आया जब गांधी जी पूर्ण स्वराज्य की मांग से सहमत नहीं थे, लेकिन सुभाष बाबू और पंडित जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था।

0: अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष बाबू को कुल 11 बार कारावास हुआ। सबसे पहले उन्हें 1921 में 6 महीनों का कारावास हुआ। 1925 में गोपीनाथ साहा नामक एक क्रांतिकारी कोलकाता के पुलिस अधीक्षक चार्ल्स टेगार्ट को मारना चाहता था। उसने गलती से अर्नेस्ट डे नामक एक व्यापारी को मार डाला। इसके लिए उसे फांसी की सजा दी गई। गोपीनाथ को फांसी होने के बाद सुभाष बाबू जोर से रोए। उन्होंने गोपीनाथ का शव मंगवा कर उसका अंतिम संस्कार किया। इससे अंग्रेज सरकार ने ये निष्कर्ष किया कि सुभाष बाबू ज्वलंत क्रांतिकारियों से न ही संबंध रखते हैं, बल्कि वे ही उन क्रांतिकारियों का स्फूर्ति स्थान हैं। इसी बहाने अंग्रेज सरकार ने सुभाष बाबू को गिरफ्तार किया और बिना कोई मुकदमा चलाए उन्हें अनिश्चित कालखंड के लिए म्यांमार के मंडाले कारागृह में बंदी बनाया।
1: जब 5 नवंबर 1925 के दिन देश बंधु चितरंजन दास कोलकाता में चल बसे, सुभाष बाबू ने उनकी मृत्यु की खबर मंडाले कारागृह में रेडियो पर सुनी। मंडाले कारागृह में रहते समय सुभाष बाबू की तबीयत बहुत खराब हो गई, उन्हें तपेदिक हो गया, परंतु अंग्रेज सरकार ने फिर भी उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया। सरकार ने उन्हें रिहा करने के लिए ये शर्त रखी कि वे इलाज के लिए यूरोप चले जाएं, लेकिन सरकार ने ये तो स्पष्ट नहीं किया था कि इलाज के बाद वे भारत कब लौट सकते हैं, इसलिए सुभाष बाबू ने ये शर्त स्वीकार नहीं की। आखिर में परिस्थिति इतनी कठिन हो गई कि शायद वे कारावास में ही मर जाएंगे। अंग्रेज सरकार ये खतरा भी नहीं उठाना चाहती थी कि सुभाष बाबू की कारागृह में मृत्यु हो जाए, इसलिए सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। फिर सुभाष बाबू इलाज के लिए डलहौजी चले गए।
0: 1932 में सुभाष बाबू को फिर से कारावास हुआ। इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल में उनकी तबीयत फिर से नादुरुस्त हो गई। वैद्यकीय सलाह पर सुभाष बाबू इस बार इलाज के लिए यूरोप जाने को राजी हो गए। यूरोप में सुभाष बाबू ने अपनी सेहत का ख्याल रखते समय अपना कार्य जारी रखा। वहां से इटली के नेता मुसोलिनी से मिले, जिन्होंने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दिया। आयरलैंड के नेता डी वलेरा सुभाष बाबू के अच्छे दोस्त बन गए।
1: 1934 में सुभाष बाबू को उनके पिता के मृत्युशैया पर होने की खबर मिली, इसलिए वे हवाई जहाज से कराची होकर कोलकाता लौटे। कराची में उन्हें पता चला कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। कोलकाता पहुंचते ही अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिन जेल में रखकर वापस यूरोप भेज दिया। सुभाष बाबू 1933 से 1936 तक यूरोप में रहे।
0: 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होने का तय हुआ था। इस अधिवेशन से पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष बाबू को चुना। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन में सुभाष बाबू का अध्यक्षीय भाषण बहुत ही प्रभावी हुआ। अपने अध्यक्ष पद के कार्यकाल में सुभाष बाबू ने योजना आयोग की स्थापना की। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। सुभाष बाबू ने बेंगलोर में मशहूर वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विज्ञान परिषद भी ली। 1937 में जब जापान ने चीन पर आक्रमण किया तो सुभाष बाबू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने चीनी जनता की सहायता के लिए डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस के नेतृत्व में वैद्यकीय पथक भेजने का निर्णय लिया।
1: 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष बाबू को चुना तो था, मगर गांधी जी को सुभाष बाबू की कार्य पद्धति पसंद नहीं आई। इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए थे। सुभाष बाबू चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई का लाभ उठाकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र किया जाए। उन्होंने अध्यक्ष रहते हुए इस तरफ कदम उठाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन गांधी जी अब उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में सुभाष बाबू के खिलाफ पट्टा भी सीतारमैया को चुना। सब समझते थे कि जब महात्मा गांधी ने पट्टा भी सीतारमैया का साथ दिया है तब वे चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वास्तव में सुभाष बाबू को चुनाव में 1580 मत मिल गए और पट्टा भी सीतारमैया को 1377 मत मिले। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष बाबू 203 मतों से ये चुनाव जीत गए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि सुभाष बाबू कुछ काम ही न कर पाए। आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष बाबू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।
0: 3 मई 1939 के दिन सुभाष बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की। इसलिए अंग्रेज सरकार ने सुभाष बाबू सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष बाबू जेल में निष्क्रिय नहीं रहना चाहते थे। सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष बाबू ने जेल में आमरण उपोषण शुरू कर दिया। तब सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, मगर अंग्रेज सरकार ये नहीं चाहती थी कि सुभाष बाबू युद्ध के दौरान मुक्त रहें, इसीलिए सरकार ने उन्हें उनके ही घर में नजर कैद करके रखा।

0: नजर कैद से निकलने के लिए सुभाष बाबू ने एक योजना बनाई। 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देने के लिए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष धरकर अपने घर से भाग निकले। शरद बाबू के बड़े बेटे शिशिर ने उन्हें अपनी गाड़ी से कोलकाता से दूर गोमोह तक पहुंचाया। गोमोह रेलवे स्टेशन से फ्रंटियर मेल पकड़कर वे पेशावर पहुंचे। पेशावर में उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सहकारी मियां अकबर शाह मिले। मियां अकबर शाह ने उनकी मुलाकात कीर्ति किसान पार्टी के भगत राम तलवार से करा दी। भगत राम तलवार के साथ में सुभाष बाबू पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े। इस सफर में भगत राम तलवार रहमत खान नाम के पठान बने थे और सुभाष बाबू उनके गूंगे बहरे चाचा बने थे। पहाड़ियों में पैदल चलते हुए उन्होंने ये सफर पूरा किया।
1: काबुल में सुभाष बाबू 2 महीनों तक उत्तम चंद मल्होत्रा नामक एक भारतीय व्यापारी के घर में रहे। वहाँ उन्होंने पहले रूसी दूतावास में प्रवेश पाना चाहा। इसमें नाकामयाब रहने पर उन्होंने जर्मन और इटालियन दूतावासों में प्रवेश पाने की कोशिश की। इटालियन दूतावास में उनकी कोशिश सफल रही। जर्मन और इटालियन दूतावासों ने उनकी सहायता की। आखिर में ओरलांडो मात्सुता नामक इटालियन व्यक्ति बनकर सुभाष बाबू काबुल से रेलवे से निकलकर रूस की राजधानी मॉस्को होकर जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे।
0: बर्लिन में सुभाष बाबू सर्वप्रथम रिबेंट्रॉप जैसे जर्मनी के अन्य नेताओं से मिले। उन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इसी दौरान सुभाष बाबू नेताजी नाम से जाने जाने लगे। जर्मन सरकार के एक मंत्री एडम फॉन ट्रॉट सुभाष बाबू के अच्छे दोस्त बन गए।
1: आखिर 29 मई 1942 के दिन सुभाष बाबू जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडोल्फ हिटलर से मिले। लेकिन हिटलर को भारत के विषय में विशेष रुचि नहीं थी। उन्होंने सुभाष बाबू को सहायता का कोई स्पष्ट वचन नहीं दिया। अंत में सुभाष बाबू को पता चला कि हिटलर और जर्मनी से उन्हें कुछ और नहीं मिलने वाला है।
0: इसलिए 8 मार्च 1943 के दिन जर्मनी के कील बंदर में वे अपने साथी आबिद हसन सफरानी के साथ एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर पूर्वी एशिया की तरफ निकल गए। ये जर्मन पनडुब्बी उन्हें हिंद महासागर में मेडागास्कर के किनारे तक लेकर आई। वहां वे दोनों समुद्र में से तैरकर जापानी पनडुब्बी तक पहुंच गए। द्वितीय विश्व युद्ध के काल में किन्हीं भी दो देशों की नौसेनाओं की पनडुब्बियों के दौरान नागरिकों की ये एकमात्र अदला बदली हुई थी। ये जापानी पनडुब्बी उन्हें इंडोनेशिया के पादांग बंदर तक लेकर आई।
1: पूर्व एशिया पहुंचकर सुभाष बाबू ने जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो से संपर्क किया। उन्होंने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहकार्य करने का आश्वासन दिया। 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत आजाद हिंद की स्थापना की। वे खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी। नेताजी आजाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति भी बन गए।
0: पूर्व एशिया में नेताजी ने अनेक भाषण करके वहाँ स्थायी भारतीय लोगों से आजाद हिंद फौज में भर्ती होने का और उसे आर्थिक मदद करने का आह्वान किया। उन्होंने अपने आह्वान में संदेश दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने चलो दिल्ली का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों का पलड़ा भारी पड़ा और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा।
1: जब आजाद हिंद फौज पीछे हट रही थी, तब जापानी सेना ने नेताजी के भाग जाने की व्यवस्था की। परंतु नेताजी ने झांसी की रानी रेजिमेंट की लड़कियों के साथ सैकड़ों मील चल के जाना पसंद किया। इस प्रकार नेताजी ने सच्चे नेतृत्व का एक आदर्श बनाकर रखा।
0: 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी से बात करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और अर्जी हुकूमत आजाद हिंद तथा आजाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता बुलाकर अपनी जंग के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। इस प्रकार नेताजी ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता बुलाया।

0: द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से माचुरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को जापान की दोमेई खबर संस्था ने दुनिया को खबर दी कि 18 अगस्त के दिन नेताजी का हवाई जहाज ताइवान की भूमि पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस दुर्घटना में बुरी तरह से घायल होकर नेताजी ने अस्पताल में अंतिम सांस ली थी।
1: दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज में नेताजी के साथ उनके सहकारी कर्नल हबीबुर रहमान थे। उन्होंने नेताजी को बचाने का निश्चय किया, लेकिन वे कामयाब नहीं रहे। फिर नेताजी की अस्थियां जापान की राजधानी टोक्यो में रेनकोजी नामक बौद्ध मंदिर में रखी गई।
0: अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही उन्होंने एक भाषण के दौरान कहा था, कोई भी व्यक्ति कष्ट और बलिदान के जरिए असफल नहीं हो सकता। अगर वह पृथ्वी पर कोई चीज गंवाता भी है तो अमरत्व का वारिस बनकर काफी कुछ हासिल कर लेता है।

0: मुकाबला फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। तो अब दीजिए हमें इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे,
3: तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: श्रोताओं, हमारी आजाद जमी, आजाद आसमां की दास्तां, हमारे तन और हमारे मन की स्वतंत्रता की कहानी अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद में।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। दोस्तों, कहते हैं कि जान है तो जहान है। बिल्कुल सच, 100% सही बात है ना। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो ये दुनिया खूबसूरत है। जो कुछ हमारे पास है उसका हम मजा ले सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम बीमार हो गए, अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, तो फिर कुछ भी हमारे पास हो, दुनिया की सारी दौलत हो, सारे सुख और सारी सुविधाएं हो, लेकिन वो सभी कुछ बेमजा हो जाती हैं। तो इसी बात के मद्देनजर आपसे हम करते हैं स्वास्थ्य चर्चा। कुछ छोटी छोटी बातें जिनका आप ख्याल रखें तो आप रह सकते हैं चुस्त दुरुस्त, जिंदगी आपकी खुशनुमा रह सकती है और आप हमेशा मुस्कुराते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अंतराल, हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

0: 1.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण और कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा। श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य इस प्रकृति की ही उपज है और सभ्यता के विकास के साथ ही हमने अपने हर प्रश्नों हर समस्या का समाधान भी इसी प्रकृति से ही तो प्राप्त किया है। विशेष रूप से यदि भारतीय ज्ञान और परंपराओं की बात की जाए तो सदियों से हमारी यही विचारधारा रही है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव, उनके निर्माण में प्रकृति के 5 तत्वों जिन्हें की पंच महाभूत जाता है, इन्हीं का हाथ है। तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यानी इन्हीं तत्वों से संसार की, ब्रह्मांड की हर चीज बनी है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी, और इन्हीं 5 तत्वों पर टिका है हमारा स्वास्थ्य भी। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विषय विशेषज्ञ आयुर्वेदाचार्य श्री शैलेश मानकर जी। मानकर जी विगत 25 वर्षों से प्रैक्टिसरत हैं, लगभग 15 वर्षों से सुवर्ण प्राशन संस्कार एवं गर्भ संस्कार के नियमित परामर्शदाता और अनुसंधानकर्ता भी रहे हैं। ये अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं, जो आयुर्वेद के अध्ययन, परामर्श और चिकित्सा में समर्पित हैं। सन 2018 में मानकर जी को प्रतिष्ठित पंडित उद्धव दास मेहता राज्य स्तरीय चिकित्सा सेवा सम्मान से विभूषित किया गया है। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: आज हम इस कार्यक्रम में आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो हमारी प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की परंपरा रही है, उसमें हमारे स्वास्थ्य के संबंध में क्या प्रावधान है और इसमें प्रकृति की क्या भूमिका है।
1: आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है
0: जी।
1: हम जितने भी भारतीय लोग हैं, हमारी भारतीय परंपरा है, यह सारा का सारा ज्ञान प्रकृति से ही अर्जित किया हुआ है। हमारी सारी परंपराओं में यह बहुत स्पष्ट रूप से मिलता है। हमारे यहाँ एक सेंटेंस कहा जाता है, जैसा जैसा इस ब्रह्मांड में है वैसा वैसा इस पिंड में है। तो जहाँ इस पूरे ब्रह्मांड में जो चीज हो रही है, वही चीजें रिफ्लेक्ट हमारे शरीर में, हमारे किसी भी पिंड में भी वही चीज हो रही है। मतलब हमने उनको एकाग्र किया है कि प्रकृति के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ हमारा कैसा एकाकार है। आपने मूल तत्व इसमें बता ही दिए हैं, जो हमारे पंच महाभूत होते हैं। जो पंच महाभूत में आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। यही हमारे तत्वों के, हमारे शरीर के, हमारे सृष्टि का मूल आधार है। इन्हीं से हमारा शरीर बना हुआ है। हम लोक भाषा में भी बोलते हैं ना, सामान्य रूप से ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा
0: जी।
1: ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे जब हम दिनचर्या में, लोक भाषा में आराम से बोलते हैं। और यही इसका सार है कि जो पंच महाभूत है, उसी से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। पंच महाभूत में ही हमारी सब्जियां भी उग रही है
0: जी,
1: हमारे पेड़ पौधे भी है, इसी जल का उपयोग भी हमारे शरीर में हो रहा है। हमारे शरीर का जो रिक्त स्थान है वह आकाश को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारी श्वास प्रश्वास को हम प्राण बोलते हैं
0: जी, प्राणवायु,
1: प्राणवायु
0: जी।
1: यह प्राण को ही हम वायु के रूप में हम देख रहे हैं। आकाश महाभूत से जो हमारा अंदर अंग है, जो खाली स्थान है
0: जी,
1: जो आमाशय है, पक्वाशय है, ऐसे जो स्टमक वगैरह हैं, इनमें जो होलो स्पेस है वह आकाश को रिप्रेजेंट कर रहा है।
0: अच्छा।
1: जो वायु हम सांस ले रहे हैं, यह हमारे प्राण को, वायु को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे शरीर में जितना रक्त है, लसीका है, जो भी चीजें जो द्रव रूप में, तरल रूप में बह रहा है, वो हमारे सारे जल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
0: अच्छा।
1: और हमारी मांस है, हड्डियां हैं, यह हमारे सर्वे जो है वो सब का सब पृथ्वी महाभूत को ये कर रहा है। और साथ में रह गई बात अग्नि की, तो अग्नि जो हमारी पाचन अग्नि है, हम बोलते ही है कि हमारे शरीर में जठर अग्नि होती है, हमारा खाना जो पचता है वह अग्नि के माध्यम से ही पचता है।
0: जी।
1: हमारी जितनी मेटाबॉलिज्म होती है वो 13 प्रकार की अग्नियां हमारे शरीर में बता के रखी हैं।
0: 13 प्रकार की अग्नियां,
1: 13 प्रकार की अग्नियां। तो जठर अग्नि के साथ में हमारे सारे धातुओं का पोषण करने वाली, हम आज के समान में जो मेटाबॉलिज्म वगैरह बोलते हैं, यह सारा का सारा अग्नि के स्वरूप में हमारे ज्ञान परंपरा में उसको वर्णित किया है।
0: अच्छा।
1: और उत्तर उत्तर एक के बाद एक धातु पूरी तरह से जब सम्यक रूप से समान अवस्था में बनी रहेगी तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। मतलब हमारे शास्त्र में बहुत अच्छे से बताया कि ये जो पंच महाभूत है
0: जी,
1: या हम आयुर्वेद के हिसाब से जो दोष सप्तधातु वगैरह सभी लगते हैं, इनकी सबकी साम्य अवस्था, ये सब एक बैलेंस कॉम्बिनेशन में रहेंगे तो ही हम स्वस्थ कहलाएंगे।
0: अच्छा
1: ऐसा
0: जी
1: नहीं है कि
0: जी
1: कोई एक चीज़ बढ़ी है कम हो, वो चीज़ जो होती है इसके सम्यक रूप से, हमारे इसमें कहा भी गया है कि जब हमारी इंद्रियां प्रसन्न हो, जब हमारे अंग सुचारू रूप से काम कर रहे हो,
0: जी
1: है ना, हमारी मानसिक स्थिति सम्यक हो और हमारी आध्यात्मिक भी, हम भारतीय
0: अच्छा
1: परंपरा में अध्यात्म को
0: जी
1: भी
0: जी
1: मानते हैं,
0: जी
1: तो इनका जब सम्यक रूप से समान अवस्था जब रहेगी तभी हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ की परिभाषा ही ऐसी दे के रखी है ना,
0: अच्छा
1: स्वस्थ रहने के लिए सबका बैलेंस कॉम्बिनेशन होना
0: बेहद
1: जरूरी
0: जरूरी
1: है, बेहतर है।
0: जी
1: और एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि जब हमारा जन्म होता है तो हमारे जन्म के समय हम पे छह चीज की काम करती हैं, छह तत्व काम करते हैं,
0: जी
1: जिसमें हमारे माता के भाव होते हैं, पिता के भाव होते हैं, उसी के साथ में जो हम अन्न ग्रहण करते हैं उसका प्रभाव होता है,
0: जी
1: जो मन का जो हमारा प्रभाव, जब ऐसी हमारी मानसिक स्थिति होती है
0: जी जी
1: उसका भी प्रभाव पड़ता है, और इसके साथ में जो जीवात्मा है वह अपने कुछ गुणधर्म लेके आती है, तब जाके एक जीव का
0: निर्माण होता है
1: निर्माण होता है और
0: जी
1: उसमें एक बैलेंस कॉम्बिनेशन बनता है और इसके कारण वह अस्तित्व में रहता है।
0: जी
1: यह सारा का सारा कॉम्बिनेशन, ये सारा कार्य जो है वो पंच महाभूत से बने हुए शरीर पर ही हो रहा है।
0: अच्छा तो सर यहाँ पर एक प्रश्न मन में ये उठता है कि ये जो पांच तत्व हैं वो क्या हर मनुष्य में समान अनुपात में होते हैं या इनके अनुपात भी मनुष्य मनुष्य में अलग अलग होते हैं?
1: बिल्कुल सहज रूप से इसमें हर मनुष्य में इसके अनुपात में थोड़ा सा अंतर आता है, इसलिए
0: जी
1: हमको मनुष्यों में विभिन्नता मिलती है।
0: हाँ अच्छा मतलब रंग रूप जो है या
1: रंग
0: हमारा स्वभाव है
1: स्वभाव है, रंग
0: जी
1: रूप है, उनकी आदतें हैं, उनका आकार प्रकार है ना,
0: जी
1: उनके बाल, उनके अंगों का सब स्वरूप जो है, यह सारा का सारा उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे ही रहता है, और
0: अच्छा
1: वो एक बैलेंस कॉम्बिनेशन रहेगा तब वो अस्तित्व में आएगा।
0: जी तो ये तो बात हो गई पंच महाभूतों की जिनकी हमारे शरीर के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है,
1: बहुत बड़ी
0: हम
1: भूमिका
0: बने ही इन्हीं पंच तत्वों से हैं। एक और टर्म आती है आयुर्वेद में त्रिदोष की, वात पित्त और कफ। तो ये जो त्रिदोष हैं पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि इन्हें त्रिदोष क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोष से हम आम इंसान तो दोष यानी कुछ एक कमी समझते हैं, और फिर उसके बाद एक बात ये आती है कि क्या इन त्रिदोषों का भी इन पंच तत्वों से कुछ संबंध है?
1: निश्चित रूप से
0: जी
1: जो मूल तत्व है वो तो पंच महाभूत ही है।
0: जी जी
1: इसको जब हम शरीर रचना के रूप में देखते हैं तो हमारे त्रिदोष होते हैं, सप्त धातु होते हैं और तीन मल,
0: जी
1: ऐसे करके हमारे शरीर में मुख्य घटक आते हैं, समझ में आते हैं। ये जो तीन दोषों की बातें की गई हैं
0: जी
1: ये बहुत स्पष्ट रूप से ये शरीर को धारण करते हैं, इसलिए इसको धातु भी कहते हैं, है
0: अच्छा
1: ना।
0: जी
1: लेकिन जब इनका प्रमाण कुछ कम ज्यादा होता है या बढ़ जाए या घट जाए तो ये उन स्रोतों को, शरीर के सिस्टम को, धातुओं को, जब वो उसमें दोष उत्पन्न करते हैं इसके कारण इनको दोष कहा गया है।
0: अच्छा
1: इन दोषों के लिए जो हम गलती करते हैं सामान्य रूप से एक डायरेक्शन की, यार कफ बढ़ रहा है तो कफ को सुखा दो, है ना,
0: जी
1: पर कले के लिए कफ जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर कफ का ही स्थान है,
0: जी
1: तो जहाँ कफ की आवश्यकता है उसकी है, तो उसको हमको सुखाना नहीं है, इसलिए मैंने पहले भी शब्द इस्तेमाल किया कि आपको सम्यक अवस्था
0: सम्यक
1: रखना है, उसको एक बैलेंस कॉम्बिनेशन में ही रखना है,
0: जी
1: तो कफ के प्रमाण को सम्यक करना, उसको बैलेंस करना,
0: यानी हमें
1: समझना है
0: जितना जरूरी है उतना होना
1: उसके
0: चाहिए
1: होना चाहिए,
0: जी, ना
1: व्यक्ति की
0: कम
1: वजह से
0: ना
1: ना
0: ज्यादा।
1: कम ना ज्यादा, और उस व्यक्ति के अनुसार होना चाहिए,
0: अच्छा
1: है ना,
0: यानी हमारा
1: क्योंकि
0: स्वभाव और हमारे शरीर की जो गुणधर्म है उस पर
1: उसके
0: भी ये
1: हिसाब
0: चीज
1: से
0: निर्भर करती है
1: निर्भर करी।
0: जी।
1: ये स्वाभाविक है, हमारे प्रकृति में पहाड़ी क्षेत्र में रहने वालों की शरीर कदकाठी अलग होती
0: जी
1: है,
0: जी बिल्कुल
1: हमारे जो साधारण देश होता है वहाँ की कदकाठी अलग होती है,
0: जी
1: और जो गर्म देश रहते हैं वहाँ के लोग, तो उनके खान पान में भी उसके कारण अंतर आ रहा है,
0: जी
1: उस जगह के हिसाब से तुलना, उसको बैलेंस कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो ये जो विभिन्नताएं आपको दिख रही है
0: जी
1: ये विभिन्नताओं का प्रैक्टिकली हमको अप्रोच रखना चाहिए, इसलिए हमको हमारी बुद्धि लचीली रखनी
0: अच्छा
1: चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात
1: हम
0: है
1: जब रिजिड होते हैं
0: जी
1: तो हम फिर गलती करते हैं कि यहाँ ऐसा है, यह है, तो
0: जी
1: हमको वो सारी गणनाओं के साथ में अपने आप को अपनी
0: जी
1: गणना करनी चाहिए।
0: तो सर अब प्रश्न यही आता है कि यदि यह त्रिदोष हैं और हमारे शरीर में इन तीनों की उपस्थिति है, अब इन तीनों का बैलेंस कैसे बना रहे?
1: एक विषय को बता देता हूँ कि हमारा जो वात दोष है,
0: जी,
1: वात पित्त और कफ,
0: हुँ.
1: ये तीन तत्व है. वात मतलब वायु, पर ये जो वायु बोल रहे हैं इसमें वायु तत्व और आकाश तत्व इनका सम्मिलित रूप है.
0: अच्छा, यानी पंच महाभूतों में से,
1: पंच महाभूत में से
0: आकाश जो और जो वायु है, वो वात को बनाते हैं.
1: वात को बनाते हैं,
0: जी, ठीक है.
1: इसमें जो पित्त होता है वह अग्नि और जल इसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है. और जहाँ पे पृथ्वी महाभूत है वहाँ पे जल और पृथ्वी,
0: अच्छा,
1: जो हमारा कफ है, कफ दोष है. तो कफ कैसा होता है? थिक होता है, चिकट होता है. हमारा शरीर ही सबसे पहले मिट्टी से बना है ना, तो मिट्टी, पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत मिलने के बाद जो कफ होगा
0: जी,
1: उससे ये पिंड बनेगा. एक सरल सा उदाहरण देता हूँ, मिट्टी का घड़ा बनता है तो सबसे पहले मिट्टी और जल को मिला के
0: पेस्ट सा बनाएगा.
1: हाँ, उसको एक गुथेंगे तो एक ठोस आधार बनेगा.
0: जी,
1: फिर हम उसके ऊपर, उसको चक्के के ऊपर रखेंगे, फिर उसका गतिमान करेंगे, तो वायु से उसके आकार का निर्माण होगा. उसको हम धीरे धीरे गति देने के बाद उसको आकार देंगे. आकार देने के बाद उसकी खाली जगह, भरी जगह, जो आकार होगा
0: जी,
1: उसके बाद में हम उसका पचन करेंगे. उसको अग्नि में, उसको
0: पकाएंगे,
1: इस अस्तित्व में रहने के लिए जो उसका पाचन होगा, उसकी क्रियाएं रहेंगी, तब जाके एक मटका अस्तित्व में. ऐसी प्रकार से हमारे शरीर में भी वात पित्त कफ का, कि वात के कारण हमारे जो सारे प्राण श्वास, मैंने बोला था, अंगों का निर्माण होगा, और पिंड जब तक रहेगा, पिंड को आकार देने का कार्य वात करेगा, और उसके मेटाबॉलिज्म, उसके पोषण का, उसमें हर समय जो चलने वाली जो क्रियाएं हैं, उसको पाचन करके निर्माण करने के लिए हम पित्त का कार्य करेंगे.
0: तो यानी वात पित्त और कफ, ये पंच तत्वों की देन है,
1: देन है,
0: और इन्हीं का बैलेंस जो है वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बना के रखता है.
1: स्वास्थ्य बना के रखता है. इसमें हमारे अंगों में भी जो विभाजन किया हुआ है,
0: जी,
1: जो गले के ऊपर का जो छाती वाला कफ जैसा है, और कंठ और सिर, ये हमारे कफ को रिप्रेजेंट करता है.
0: अच्छा,
1: ये कफ का है
0: जी.
1: जो आपके नाभि के आसपास का एरिया, मध्य शरीर है हमारा, यह पित्त को रिप्रेजेंट करता है, और कमर से नीचे का हिस्सा वात को रिप्रेजेंट करता है.
0: जी.
1: ऐसे ही हमारा दिन की साइकिल है. ब्रह्म मुहूर्त हमारा, जो दिन निकलने के पहले का जो समय है, वो वात को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिन निकलते समय हमारा कफ को रिप्रेजेंट कर रहा है. दोपहर का समय हमारा फिर पित्त को रिप्रेजेंट कर रहा है. फिर हमारा शाम होने वाला समय फिर वात को रिप्रेजेंट कर रहा है.
0: अच्छा.
1: फिर शाम के बाद रात का समय जो है वो कफ को, और मध्य रात्रि जो है वो पित्त को. ऐसा हमारा डिवाइडेशन वात पित्त कफ के हिसाब से किया हुआ है.
0: अच्छा, अच्छा.
1: हमने जो पैरामीटर बनाया, पंच महाभूत मूल आधार है, लेकिन वात पित्त कफ के हिसाब से हमने उसका व्यक्ति के शरीर में भी डिवाइडेशन किया हुआ है, दिनचर्या दिन में भी उसका डिवाइडेशन किया है, और वर्ष में भी डिवाइडेशन किया हुआ है.
0: अच्छा, वर्ष में किस तरह से सर?
1: वर्ष में हमारे 12 पूरे महीने होते हैं, उसमें 6-6 महीने का साइकिल, उसको दो हिस्सों में बांटा है, आदान काल, विसर्ग काल.
0: अच्छा.
1: सरल भाषा में हम समझे तो हम पतंग उड़ाते हैं, मकर संक्रांति आती है
0: जी.
1: मकर संक्रांति से भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण होते हैं
0: जी.
1: यहाँ से हमारा शरीर घटना शुरू होता है.
0: अच्छा.
1: और जुलाई के माह में कर्क संक्रांति आती है
0: जी.
1: जब भगवान दक्षिणायन होते हैं तब हमारा शरीर वहाँ से बनना शुरू होता है.
0: अच्छा.
1: तो ये 6 महीने हमारा शरीर घटता है, 6 महीने हमारा शरीर.
0: तो सर, जो आप ये बोल रहे हैं शरीर का घटना या शरीर का बढ़ना, इससे क्या अभिप्राय है?
1: शरीर का घटना या बढ़ना से अभिप्राय यह है कि हमारी जितनी भी वाइटल एनर्जीज हैं, हमारी अग्नि है वही पचन का कार्य कर रही है ना
0: जी.
1: तो वो धीरे धीरे कम होते जाती है. जैसे हम मकर संक्रांति के बाद जब हमारा शरीर पूरी तरह से बलवान होता है, तो जो फाल्गुन महीना आता है, जो होली का समय है
0: जी,
1: उस वसंत ऋतु में हमारे शरीर में कफ का सबसे ज्यादा आधिक्य होता है. तो हमारा कफ प्रकोप का समय बता के रखा है.
0: अच्छा.
1: उसके बाद में हमारा कफ, जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो कफ धीरे धीरे शमन होने लगता है
0: जी.
1: उसके बाद में हम जो वात का समय है वो वर्षा ऋतु है.
0: अच्छा.
1: उस समय हमारे शरीर में वात का प्रकोप होता है और हमारा शरीर कम हो रहा है, हमारी अग्नि सबसे कम है, हम अपने शरीर में सबसे कम इम्यूनिटी वाले टाइम में जो है वो
0: वर्षा ऋतु में.
1: इसलिए आपने देखा होगा हमारी अग्नि भी कमजोर है उस समय, इसलिए हमारे मैक्सिमम उपास वो उस कालखंड में आते हैं.
0: संक्रमण का काल भी वही है.
1: तो मूवमेंट भी कम होना चाहिए, और इम्यूनिटी वाइज हमने ऐसे पैरामीटर्स बनाए कि आप उससे सुरक्षित रह सकें। तो हम कम खाना खाते हैं, सुपाच्य खाना खाते हैं और हल्का खाना खाते हैं। वैसे ही जैसे शरद ऋतु आती है, तो नवंबर दिसंबर के महीने में जब शरद ऋतु, तो शरद पूर्णिमा हमारा एक ऐसा माइलस्टोन है जब हम दूध को औटा औटा के गाढ़ा करके पीते हैं। मतलब कर्क संक्रांति के बाद धीरे धीरे जब अग्नि बढ़ना शुरू होती है, तो पहला माइलस्टोन हमको मिलता है शरद पूर्णिमा का।
0: अच्छा जी।
1: कि हमारी अग्नि अब बढ़ गई
0: बढ़
1: है,
0: गई है।
1: अब आप गरिष्ठ भोजन भी आप कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: इस तरीके से फिर हम वहां से भारी अन्न लेते हैं और हमारा शरीर, हम हेल्दी सीजन बोलते हैं ना, इस समय जो भी खाइए वो पच जाएगा।
0: हाँ।
1: आपके शरीर को लगेगा
0: जी। ठंड के ऋतु में जैसे बहुत फल खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, घी खाइए,
1: घी खाइए, आपका खाना पूरा सारे षड्रसात्मक होके उसको पूरा बलिष्ठ होके उसमें सारे न्यूट्रिशन हो, उसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी।
0: अच्छा जी,
1: सामान्य ऋतु के हिसाब से, और इस समय हमारे शरीर का निर्माण होगा। तो शरद ऋतु में पित्त प्रकोप का काल है, ऐसा हमारा डिवाइजेशन हो गया। वसंत ऋतु में कफ प्रकोप है, वर्षा ऋतु में आपका वात का प्रकोप है, और जो शरद ऋतु है उसमें पित्त का प्रकोप
0: जी। यानी सर, यदि हम दिन देखें तो उसके अलग अलग कालखंड में वात पित्त और कफ का प्रभाव अलग अलग है। महीने देखेंगे या वर्ष देखेंगे या ऋतुएं देखेंगे तो उसमें भी हमको वात पित्त और कफ का अलग अलग प्रभाव है। और शायद यही हमारे खान पान में भी हमको ध्यान में रखना होगा कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो हम किस मौसम में किस तरह की चीजें लें, या फिर दिन में और रात में हमें किस तरह का आहार लेना चाहिए।
1: निश्चित रूप से अभी वर्तमान में आपके पास में ऐसे लोगों की बढ़ोतरी होगी कि सर देखिए, मैं इतना संभल के रहता हूँ, मैं कुछ नहीं खाता हूँ तो भी बीमार हूँ।
0: जी।
1: तो मैं उनसे वही आग्रह करता हूँ कि जब मौसम बदला तो अपने अपने कपड़े बदले, तो मौसम बदला तो अपने अपना आहार क्यों नहीं बदला।
0: जैसे सर्दी में हम स्वेटर यूज कर रहे हैं, या गर्मियों में पतले कपड़े यूज कर रहे हैं, सेम ऐसे ही हमें हमारा आहार भी मौसम के अनुसार
1: करना चाहिए,
0: बदलना चाहिए।
1: हाँ, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमको ये परिवर्तन करना ही चाहिए। हमारी दिनचर्या में, हमारी ऋतुचर्या में, हमारे शास्त्र में बता के रखा है
0: जी,
1: कि कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना। प्रकृति हमारे हाथ में नहीं है, उसको वो अपने गति से चल रही है।
0: जी।
1: उसमें ऋतुएं बदल रही है, उसके स्वरूप है, उसके मापदंड सामने आ रहे हैं। हमको हमारे शरीर को उसके अनुसार बदलना है। देश काल में हमको कुछ कुछ अंतर मिलते हैं, इसलिए कई बार हमको पता चलता है कि इस सीजन में ये लोगों का एडॉप्ट काम करने के तरीके में और वहाँ के काम करने के तरीके में अंतर है, क्योंकि वो देश का प्रभाव है। तो इसीलिए मैंने बोला कि लचीली बुद्धि के साथ अगर आप एकदम से रिजिड हो जाएंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा, लेकिन ऋतु और उसके हिसाब से तालमेल बिठाना।
0: अब सर, ये तो बिल्कुल ऊपरी बातें हो गई आयुर्वेद से संबंधित, तो आप जो दिनचर्या के बारे में बात कर रहे थे, हम उसी पर आते हैं कि हमारी दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए।
1: दिनचर्या भी जो हमारी दोषों के हिसाब से ही होनी चाहिए।
0: अच्छा, वात पित्त और कफ के
1: हिसाब से। वात पित्त कफ, हमने डिवाइडेशन करके रखा हुआ है। अब एक सहज प्रश्न आता है कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए।
0: हाँ जी,
1: इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, यह वात दोष का समय है।
0: अच्छा।
1: हमारे शास्त्र में स्पष्ट बताया हुआ है कि हमारे शरीर में जो पित्त है, जो कफ है, हमारी जो 37 धातुएं हैं, वो सब के सब पंगु है। इसको जो मूवमेंट देना है वो वात करेगा।
0: अच्छा।
1: तो जब आपके शरीर के मूवमेंट को, उसको गति देने का कार्य करना है, तो वात के कालखंड में वह गति देने का कार्य सबसे उत्तम रीति से हो सकता है।
0: जी बिल्कुल।
1: अर्थात जब हम जो धातु या जो व्यक्ति जिस समय बलवान है, उससे उसी का कार्य कराना चाहिए।
0: सही बात है।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: सरल सहज भाषा में। तो जब हमारा वात बलवान है, तो हमको वात का कार्य कराना चाहिए।
0: अच्छा।
1: तो जब हमको गति देने का कार्य है, इसलिए हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हमारे यहाँ वात भी 5 प्रकार के है, पित्त भी 5 प्रकार के है, और कफ भी 5 प्रकार के। ये उनके कर्मों के हिसाब से डिवाइडेशन है।
0: अच्छा अच्छा जी।
1: तो वात में हम बोलते हैं ना, हम पूजा करते हैं, तो उसमें प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा।
0: जी।
1: तो इसमें जो अपान वायु है, वो अपने शरीर से मल भाग को बाहर निकालने का कार्य करती है। तो अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमको एक वेग आएगा, और हमारा जो मल है उसको निष्कृषण करने में हमको सहायता होगी। इसीलिए हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसी तरीके से सोने का भी समय, रात्रि के समय हम जल्दी खाना और जल्दी सो जाना। जब हमारा पित्त का समय चल रहा है,
0: जी
1: और रात का समय, तब हमको शरीर को रेस्ट दे रहे हैं।
0: जी
1: रात के खाने के बाद 100 कदम चलना, क्योंकि उसके बाद हमारा सारा शरीर शिथिल होने वाला है
0: जी।
1: और फिर हमको सोना, ऐसा एक संतुलन बनाने के कार्य दोषों में बता के रखा हुआ है।
0: तो सर, दिनचर्या में जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, अब उसके बाद हमारी एक आगे की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए?
1: हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उसके बाद हमारे इसमें जो नियम बताया हुआ है कि हमको शौच के लिए जाना है। सबसे पहला कर्म मैंने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद हमको जो इच्छा है, तो उठने का क्या नियम बताया है, बहुत सरलता से बताया हुआ है कि रात्रि का भोजन पचा है या नहीं पचा है इसका चिंतन करना, और उसके बाद में बिस्तर से पैर नीचे करना।
0: अच्छा,
1: कि अगर हमने लेट खाया है,
0: है ना?
1: तो हमको थोड़ा सा, एक बहुत अच्छा सा उसमें सम्यक रूप से बताया कि आप थोड़ा सा 5 मिनट के लिए और सो जाइए।
0: अच्छा जी,
1: है ना? तो ये जो हम थोड़ा सा सोते हैं कि अलार्म बजने के बाद में हमको जो छोटी सी नींद आती है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है।
0: जी जी, ये तो होता है।
1: उसी तरीके से रात में जब हम इसका चिंतन करके हमको देखते हैं कि पेट थोड़ा भारी लग रहा है या ऐसा है, और हम थोड़ा सा सो जाते हैं, तो वो प्रक्रिया थोड़ी सी तेज होके फिर आपको हल्कापन शरीर में आता है।
0: अच्छा,
1: आप बिल्कुल प्रैक्टिकल इसको देख पाएंगे। और उसके साथ ही सवेरे उठते समय हमारे यहाँ कुछ नियम बताए कि कराग्र वस्ते करना है।
0: जी जी,
1: मतलब आपको हाथ जोड़ना है, हाथ में भगवान का आराधना, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और उनको देखना। उसके बाद हमको हाथ को रब करना है, रगड़ना है। हाथ को गर्म करने के बाद उसको आंखों पे सेक देना है।
0: जी,
1: मतलब हमारा शरीर एक सामान्य तापमान पे कार्य करता है, उसको प्रकृति के साथ जब तालमेल आप बिठा लो तब आप धरती पे पैर रखो। तो उसके पहले हम धरती के विषय भी क्षमा मांगते हैं, विनम्रता का भाव लाते हैं, साथ में हम उस टेम्परेचर के साथ एकाकार होने के बाद में बिस्तर से उठ के बाहर जाते हैं, क्योंकि हम रात भर अपने शरीर को ढके हुए रहते हैं
0: जी।
1: और हमारा शरीर का एक तापमान थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है
0: जी। तो यहाँ पर आप एक चीज क्लियर कीजिए सर, कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है?
1: ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो बहुत स्पष्ट बता के रखा है कि सूर्य उदय के 48 मुहूर्त पहले।
0: अच्छा जी,
1: मतलब घोर अंधकार वाला जो समय होता है 3:30 से 4 बजे का, 4-4:30 बजे का जो समय रहता है वो ब्रह्म मुहूर्त वाला है, और उस समय हमको उठना चाहिए।
0: तो हम अब उठ गए और हम फ्रेश भी हो गए, उसके बाद फिर हमारी क्या दिनचर्या है?
1: इसके बाद में हमको अपना दंत धावन, अपने दांतों को जो मुंह में है, क्योंकि रात भर का जो भी कफ है
0: जी,
1: जो सिक्रेशंस हैं, जो हमने रात को भोजन किया है वो हमारे मुख में है और उस कफ का आवरण है। मैंने फिर बताया कि जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं वो कफ का कालखंड होता है।
0: अच्छा,
1: तो अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है तो सूर्योदय के बाद उठने के बाद आपके मुंह में एक कफ का आवरण मिलेगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो वो कफ के आवरण का प्रमाण बहुत कम हो जाएगा।
0: अच्छा,
1: और आपके जितने मुख के रोग है उसमें कफ का आवरण रहेगा तो ही मुख के रोग बढ़ने वाले हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: जिसके कारण हम बोलते हैं कि मंजन करना है। अब मंजन कैसे करना है, तो मंजन के लिए अपने शास्त्र में बताया कषाय चीज, जैसी चीज जो थोड़ी सी रूखीपन लेके आए, जो कफ का शमन करे।
0: अच्छा,
1: तो इसलिए हमने दतून बताई, है ना? हम राख की बात की, तो राख मतलब बहुत स्पष्ट है कि जो कंडे की राख होती है उसको ऊपर के हटा के जो बीज का सफेद राख होती है उसका इस्तेमाल करना, और एकदम महीन
0: महीन जी,
1: उसको आप जब घुमाएंगे तो वो सारा कफ निकल जाएगा और उससे मुंह में एक सूखापन आपको समझ में आएगा, कफ का आवरण खत्म हो जाएगा। तो हमको मंजन उससे करके फिर अच्छे से कुल्ला कर लेना चाहिए।
0: तो सर, जैसे आपने बताया कंडे की राख, और वो भी कंडा जो है वो मतलब बिल्कुल बारीक राख, तो हर एक व्यक्ति को तो आज तो उपलब्ध नहीं है या वो अरेंज नहीं कर सकता, तो उसका कोई वैकल्पिक उपाय है?
1: वो एक प्रकार है, हमने उसका एक उदाहरण दिया था, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे जैसे बबूल,
0: हाँ,
1: हम बोलते हैं बबूल, नीम है, बबूल है, इनके जो दांत होती है, आपका वज्रदंती है,
0: अच्छा
1: है ना,
0: जी जी,
1: इनका उपयोग होता है ना? तो ऐसे जो औषधि द्रव्यों के जो चूर्ण होते हैं उनके माध्यम से हम अपना मंजन कर सकते हैं। और एक सरल सा है कि हमारे यहाँ पहले मुख स्वच्छता में, खाना खाने के बाद, पंगत में बैठने के बाद नमक से भी,
0: हाँ, जी, जी,
1: मुंह, क्योंकि जी, नमक जो रहता है वो कफ के आवरण को हटा देता है जी। पहले इसका लोगों ने मना किया, फिर टूथपेस्ट में नमक की मार्केटिंग करने लगे, तो वो आपको उस कफ के आवरण को हटाने वाली जो चीजें हैं उनको अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आप अपने मुख को स्वस्थ रख पाएंगे। और ऐसा करना है कि वो इतने कड़े ना हो कि आपके मसूड़ों को और दांतों को नुकसान पहुंचाए, इसलिए जितना सॉफ्ट और जितना महीन होगा उतना उसका ध्यान रखना है।
0: सर एक चीज़ और आती है कि ज़्यादातर ऐसा आता है कि सुबह उठकर आप से जितना भी पानी पीते बने कम से कम एक ग्लास आप पानी पिए, तो ये क्या दिनचर्या में होना चाहिए हमारे?
1: निश्चित रूप से हमारे यहाँ उषापान ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है।
0: अच्छा जी,
1: उषापान मतलब शरीर के तापमान का गुनगुना पानी हमको पीना है, ना ठंडा पीना है ना गर्म पीना है। प्रकृति के हिसाब से, जिसकी जैसी प्रकृति है उसके हिसाब से हमारे पानी का प्रमाण कम ज़्यादा हो सकता है, पर 1 लीटर, 1 गिलास से 2-3 गिलास तक पर्याप्त है। इससे
0: अच्छा,
1: ज़्यादा पानी की
0: एक
1: आवश्यकता नहीं हो
0: वयस्क
1: सकती
0: व्यक्ति
1: एक
0: को
1: व्यक्ति को।
0: जी, तो ये आदत तो हमें अपने बच्चों को बचपन से ही डलानी
1: हाँ,
0: चाहिए कि
1: उसके आजकल बोलचाल में हम बहुत आसानी से बोलते हैं ना कि हमारा शरीर जो है 70% पानी से बना है,
0: जी।
1: तो पानी की रिक्वायरमेंट तो होनी ही चाहिए। तो उसके कारण भी हमको, क्योंकि सवेरे लेंगे तो वो थोड़ा सा आपको फायदा ही करेगा, पर शरीर तापमान का पानी लीजिए,
0: अच्छा, ये ना तो बहुत गर्म ना
1: गर्म
0: ठंडा।
1: ठंडा
0: अब हमने मंजन कर लिया,
1: कर
0: उसके
1: लिया।
0: बाद
1: इसमें
0: अब दिनचर्या में आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या है?
1: इसके बाद जो है हमको जो है आंखों का, कान नाक,
0: जी
1: इनकी
0: जी
1: स्वच्छता भी रखनी चाहिए,
0: जी
1: स्नान करना चाहिए, है
0: हाँ जी
1: ना। स्नान करने से उसका बहुत महत्व है कि उससे आपकी अग्नि प्रज्वलित होती है,
0: अच्छा
1: आपके शरीर में लाघवता आती है, प्रसन्नता आती है, और आपका जो फ्रेश, तो स्वाभाविक है हमारा जितना आलस्य उससे ख़त्म होता है, पेट की अग्नि भी दीप्त हो रही है, मतलब हमको उसके बाद भूख भी लगने वाली है,
0: अच्छा
1: और हमारी दिनचर्या को एक अच्छा मिलना चाहिए। तो शरीर की स्वच्छता, लोकल हाइजीन जो हम मेंटेन करते हैं, जैसा ओरल हाइजीन हमने मेंटेन किए,
0: जी
1: वैसे हमको जितनी अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको भी स्वच्छ रखना चाहिए। और उसको स्वच्छ रखने के बाद स्नान, तो हमारे पूरे शरीर को स्वच्छ रखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में हमको निश्चित रूप से जो अल्पाहार, तो उसके पहले हम भारतीय परंपरा में क्या करते हैं कि अपना जितना कार्य रहता है समर्पण से करते हैं, तो पूजा करते हैं या भगवान के सामने अपना
0: जी
1: शांत मन से जो सवेरे का अल्पाहार हमको करना चाहिए।
0: तो सर अभी तो हम जो चीज़ देखते हैं कि नाश्ता जो होना चाहिए वो बहुत हैवी हो जाना चाहिए, और फिर उसके बाद लंच जो हो आपका वो, क्योंकि हमारा समय जो है बहुत आगे खसक गया है, लंच का लंच टाइम जो है वो 1:30 बजे 2 बजे वाला हो गया है, तो वो लाइट हो जाए, बट जो सुबह का ब्रेकफास्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसको आप अल्पाहार बोल रहे हैं, वो बहुत हैवी होना चाहिए। ये सही है ये कंसेप्ट या हमारे हिसाब से गलत है, आयुर्वेद के
1: नहीं,
0: हिसाब से?
1: सही गलत का विषय नहीं है।
0: जी
1: एरिया एरिया वाइज आपको चेंजेस मिलेंगे। आप उत्तर भारत में जाएंगे तो वहाँ पे परंपरागत रूप से उनका जो सवेरे का नाश्ता रहता है वो बहुत हैवी रहता है,
0: जी, पराठे, आलू के
1: पराठे
0: पराठे,
1: उसमें सब
0: जी।
1: चीज़ें रहेंगी। हमारे यहाँ पे उतना हैवी नाश्ता हम नहीं करते हैं,
0: नहीं
1: लेकिन इसमें सवेरे आपको कुछ ना कुछ अल्प मात्रा में ही अन्न ग्रहण करना चाहिए।
0: अच्छा
1: हमारा कंसेप्ट बहुत सीधा है, हमको दोपहर का जो भोजन है वह 9:10 से लेके 12 बजे के बीच में, मैंने समय का कालखंड थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, लेकिन हमको इस बीच में हमको कर ही लेना चाहिए।
0: अच्छा
1: तो 12 बजे तक अगर आपका भोजन हो जाता है तो वो भोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। सादा सा नियम है कि दोपहर का भोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, रात का भोजन दोपहर के भोजन से कम होना चाहिए,
0: अच्छा
1: ऐसा एक हमारे यहाँ पे नियम है।
0: जी
1: दोपहर के भोजन के बाद हमको बाईं करवट लेटना है,
0: अच्छा
1: और रात के खाने के बाद हमको कम से कम 100 कदम चलना है, स्वस्थ रहने का ये नियम है। क्योंकि हम दिन भर काम करते हैं, हमारे शरीर की गति बनी रहती है, रात को हमको शिथिलता के ऊपर, तो खाना खाने के तुरंत इमीडिएट बाद नहीं सोना है, उसके 2 घंटे बाद सोना है।
0: जी
1: तो इस तरीके से हमारा भोजन का नियम है, सवेरे जो है वो कम मात्रा में, दोपहर का जो भोजन है वह थोड़ा सा
0: अधिक
1: अधिक मात्रा में, जो हमारी शरीर क्षमता के हिसाब से। और उसका भी नियम ये बताया हुआ है कि आपको जब भी भोजन करना है तो आपको आधा पेट भोजन से, 1/4 भाग पानी से और 1/4 भाग खाली रखना है।
0: अच्छा
1: ऐसा एक
0: जी
1: कैलकुलेशन
0: जी
1: करना चाहिए कि हमको जितनी भूख है उसको हम जब खा रहे हैं तो पेट में इस तरीके की मात्रा हमको अन्न की रखना चाहिए।
0: जिस तरह से आपने दिनचर्या को बताया, उसी तरह से आप हमें रात्रिचर्या के बारे में भी बताइए।
1: रात्रिचर्या का भी बहुत महत्व है, क्योंकि हमको स्वस्थ रहने के लिए आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 मुख्य सूत्र दिए हुए हैं। तो निद्रा का महत्व इसी से सिद्ध हो जाता है। तो जब हम रात को सो रहे हैं तो नियम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रात्रि भोजन के बाद में आपको कम से कम 100 कदम चलना है, और 1.5 से 2 घंटे बाद ही बिस्तर पे जाना है
0: भोजन के
1: भोजन के।
0: जी
1: है ना, तो इससे हमारा जो भारीपन होता है पेट का वो भी कम होगा और रात में जो डाइजेशन की समस्या आने वाली है वो नहीं आएंगी।
0: अच्छा,
1: इसके साथ में हमारे यहाँ दिनचर्या में कुछ चीजें जुड़ी हुई थी। जब आप बिस्तर पे जाते हैं तो आपको पैर के तलवों पे घी और पानी की मालिश करनी चाहिए।
0: अच्छा,
1: उसको तेल पे जितनी तेजी से उसको रगड़ेंगे उसके कारण हमारे दिन भर के जो पैरों की थकान होती है वो भी कम होती है और हमारा मस्तिष्क भी शांत होता है। हमारा जो सोने का बिस्तर होना चाहिए वो बिल्कुल सम्यक होना चाहिए, सरल हो, बहुत ऊंची गर्दन, तकिया भी नहीं लेनी है
0: जी।
1: मुख्य रूप से हमको गर्दन पे सहारा देके सोना चाहिए
0: जी।
1: और जब हम सो रहे हैं तो शांत चित्त हो। इसीलिए फिर से बहुत सारे लोग उस समय हमारे इष्ट का ध्यान करते हैं
0: जी,
1: कि
0: जी।
1: आज हमने दिन भर में जो भी गलतियां की है उसकी क्षमा याचना करके हमको फ्रेश होने के लिए। तो जब आपका मन स्थिर होगा तभी आपकी नींद की गुणवत्ता अच्छी होगी।
0: जी।
1: तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको सोना चाहिए। तो और हमारे पैरों के मैंने मसाज के बारे में आपको बता ही दिया।
0: जी, जी।
1: आंखों के में भी है कि हमको उसमें आई ड्रॉप वगैरह कुछ डाल लेना चाहिए तो दिन भर का जो हमारे आंखों पे स्ट्रेन है वो ठीक होता है। साथ में रात में सोते समय 1 से 2 बूंद नाक में गाय का घी अवश्य डालें।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हमारा जो नाक है वो हमारे मस्तिष्क का सिर का द्वार ऐसा कहा गया है।
0: अच्छा,
1: और घी जो होता है वो धी धृति स्मृति आपके मस्तिष्क को ताकत देता है, तो आपके नींद को भी इम्प्रूव करता है और आपके पूरे जितने सेंस ऑर्गन्स हैं उसको हेल्दी रखने में मदद करता है।
0: अच्छा,
1: तो इस तरीके से हम दिन भर के जितने प्रभाव को कितना न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ऐसे सभी चीजों को सम्मिलित करके रात को आराम से बिस्तर पे, नरम बिस्तर पे हमको सो जाना चाहिए।
0: तो सर उसमें भी एक चीज आती है कि बाएं करवट और दाएं करवट का क्या रोल रहता है इसमें?
1: ऐसा नहीं है, वो हर व्यक्ति का अपना अपना पैटर्न होता है।
0: अच्छा अच्छा
1: सीधा सो सकते हैं, दाएं सो सकते हैं, बाएं सो सकते हैं, और रात में व्यक्ति अपने करवट ले, पर वो सुखासन में होना चाहिए, उसके लिए सुख पूर्वक हो ताकि उसका मस्तिष्क हमारी नींद जिसमें आए।
0: अच्छा,
1: क्योंकि वो नींद की क्वालिटी अच्छी होगी
0: जी
1: तो हम सम्यक रूप से रहेंगे। साथ ही हमारा जो रात में हम 6 घंटे की नींद हम बोलते हैं
0: जी,
1: तो ये 6 घंटे की नींद में हमारा शरीर को शांत होना चाहिए, मसल्स रिलैक्स हो जाए, अंदर के अंग रिलैक्स हो जाए, और इन नींद के बीच में एक गहरी नींद आती है
0: जी,
1: वो जो नींद होती है वो हमारे मस्तिष्क को शांत करती है, उसमें हमारे विचारों का ऊहापोह नहीं रहता है
0: जी,
1: है ना। तो ऐसा जब शांत मन होता है तभी हमारी नींद की क्वालिटी को हम उत्तम मिलते हैं। जब सवेरे उठते हैं तब हमको हल्कापन लगना चाहिए, आसानी से आंखें खुलनी चाहिए, फ्रेश लगना चाहिए,
0: हम खुश होके उठे,
1: खुश होके उठे, तो हम सम्यक नींद, एक अच्छी नींद जिसको हम बोलते हैं वो इसमें सामने हमको मिलती है, इसका चिंतन करना चाहिए।
0: चलिए सर, आपने आज इतनी आयुर्वेद का जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है उसे समझाया, हमारी क्या दिनचर्या होना चाहिए, ये जो 5 पंच महाभूत है जिन्हें 5 तत्व जो कहा गया है उनसे हमारा जो शरीर बना है, उनके साथ जो वात पित्त कफ इनका जो बैलेंस है वो हमारे शरीर में किस तरह से हो सकता है, इसके बारे में आपने इतनी महत्वपूर्ण और सारगर्भित जानकारी दी। सर आप यहाँ आए, अमूल्य समय आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने ज्ञान में से मैं जितना आपके समक्ष बोला हूँ उससे आपके श्रोताओं को स्वास्थ्य का लाभ होगा, यही इच्छा के साथ में आप सभी को प्रणाम।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी और समन्वय सहयोग सतीश बाथम का। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे

तो शुरुआती लक्षण को देखते ही हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं और अगर हम जल्दी उसके पास पहुंचते हैं तो हम जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं और बहुत सी परेशानियों से हम बच जाते हैं। इसके अलावा कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हमारे आहार व्यवहार की हैं, किस तरह से हमें रहना चाहिए, हमारी दैनिक दिनचर्या किस तरह की हो। कुल मिलाकर इस तरह की कुछ बातें इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं और आपको वो बातें पसंद भी आती हैं और आपके लिए बहुत ज़रूरी भी हैं वो बातें। तो उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो बहुत कुछ अभी आगे आपके लिए है, हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए रेडियो आज़ाद हिंद से, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

देवे। नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज ससुराल गेंदा फूल और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: परिव्राजक विवेकानंद का मन एक जगह ज्यादा दिन नहीं लगता था। फिर उन्हें अपना असली काम राष्ट्र निर्माण की चिंता भी रहती थी। इस काम को कहां से शुरू किया जाए, उसके लिए पैसा और सहायता तथा लोकबल कहां से जुटाएंगे आदि चिंता उन्हें सदा सताती रहती थी। ऊपर से गुरु भाइयों का माया बंधन, वे सब कुछ त्याग कर एकांत में चिंतन करना चाहते थे। अंत में सभी के मतों के विरुद्ध वे अकेले मेरठ से दिल्ली आ गए।
1: परंतु 10 दिन बाद ही गुरु भाइयों ने दिल्ली आकर उन्हें ढूंढ निकाला। उन्हें देख स्वामी जी खुश तो हुए, पर अपनी एकांतवास की इच्छा पूरी न होते देख नाराज हो गए और कहा,
2: देखो भाई, मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मैंने तुम लोगों से कह रखा है कि मेरा पीछा मत करो। वही बात फिर कहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ रहे। मैं अभी दिल्ली छोड़कर जा रहा हूँ। कोई मेरे पीछे चलने की चेष्टा ना करे, कोई मुझे ढूंढ निकालने के लिए प्रयास ना करे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बातों का पालन करो। मैं सारे पुराने संबंधों को तोड़ना चाहता हूँ। मैं अपनी इच्छा से भ्रमण करूंगा, पहाड़, जंगल, मरुभूमि अथवा नगर में। चाहे जो हो, जो मुसीबत आए, मैं चला। मेरी इच्छा है कि हर कोई अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार साधना करने में लग जाए।
3: अरे, हम लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि तुम यहाँ ठहरे हो। हम लोग तो केवल दिल्ली नगर देखने आए थे। जब यहाँ आकर स्वामी विदिशानंद नामक एक अंग्रेजी भाषी साधु के विषय में खबर मिली, तब हम उन्हें देखने आ गए। अतएव तुमसे मुलाकात हो गई। ये एक आकस्मिक घटना मात्र है।
0: जैसे भी हो, स्वामी जी उस समय शांत हो गए और तुरंत दिल्ली त्याग कर नहीं आए। गुरु भाइयों ने निश्चय ही दूसरी जगह आश्रय लिया, किंतु सबका भोजन स्वामी जी के साथ सेठ जी के घर पर ही होने लगा। धीरे धीरे गुरु भ्रातागण एक एक कर विभिन्न स्थानों को जाने लगे। रह गए अखंडानंद जी और अद्वैतानंद जी। कुछ ही दिनों में स्वामी जी दिल्ली छोड़कर चले गए। बाकी दोनों सन्यासी वृंदावन गए। दिल्ली के बाद स्वामी जी का राजस्थान भ्रमण शुरू हुआ। सन 1891 के फरवरी में वे ट्रेन से अलवर स्टेशन पर उतरे।

0: स्वामी जी अलवर के सुशोभित पथ पर अकेले चले जा रहे थे। अंत में वे एक दातव्य चिकित्सालय के सामने रुक गए। एक सज्जन चिकित्सालय के फाटक से निकले, स्वामी जी को न जाने क्या सूझा, उन्होंने उस व्यक्ति को रोककर बंगाली भाषा में पूछा।
1: एक खाने की साधु देर थाकार मोतोन कोनो जाएगा अच्छे?
0: यहाँ क्या साधुओं के ठहरने लायक कोई जगह है? उक्त सज्जन का नाम श्री गुरुचरण लश्कर और वे ही उस औषधालय के चिकित्सक थे। डॉक्टर साहब लंबे अरसे से बंगाल से बाहर थे, अतः कमनीय वदन वरुण सन्यासी के मुख से अपनी मातृभाषा सुनकर विशेष आनंदित हुए और ससम्मान अभिवादन करते हुए उन्होंने साग्रह कहा,
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए मेरे साथ।
0: वे उन्हें पास ही स्थित एक दो मंजिला मकान में ले गए। ये उनके खुद का घर था। उन्होंने कहा,
2: ये घर साधुओं के लिए है, यहाँ ठहरने पर आपको कोई कष्ट तो नहीं होगा?
1: ना ना कोनो कष्ट हो बिना।
3: डॉक्टर साहब ने उसी समय उनके लिए आवश्यक वस्तुएं मंगवा दी, क्योंकि स्वामी जी के पास उस समय केवल एक गेरुआ वस्त्र, दंड, कमंडलू और कंबल में लिपटी दो चार पुस्तकों के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। प्रारंभिक व्यवस्था हो जाने पर गुरुचरण बाबू ने अपने एक मुसलमान मित्र के पास आकर कहा,
2: मौलवी साहब, एक बंगाली दरवेश आए हैं, चलिए उनसे मिलिए। मैंने ऐसा महात्मा पहले कभी नहीं देखा, आप उनसे बातचीत कीजिए, मैं अस्पताल का काम निपटाकर जल्दी आ जाऊंगा।
3: मौलवी साहब स्थानीय अंग्रेजी विद्यालय के उर्दू और फारसी के शिक्षक थे। वे अपने मित्र की बातें सुनकर तुरंत उनके साथ स्वामी जी के पास आए और नंगे पैरों घर में प्रवेश कर सलाम किया। स्वामी जी ने उन्हें स्नेहपूर्वक अपनी बगल में बैठाकर बातचीत करते हुए कहा,
1: कुरान के संबंध में ये एक विशेष आश्चर्य की बात है कि 1100 वर्ष पहले उसका जो स्वरूप था आज भी वैसा ही है। उसकी प्राचीनतम शुद्धता सुरक्षित है और किसी को भी उस पर कलम चलाने की हिम्मत नहीं हुई।
0: इधर गुरुचरण बाबू औषधालय लौटकर वहां आए लोगों को स्वामी जी के आगमन के विषय में बताने लगे और उनकी प्रबल प्रशंसा भी करने लगे। डॉक्टर साहब की उत्साह जगाने वाली वाणी ने श्रोताओं के मन में भी गहन जिज्ञासा उत्पन्न कर दी और वे सब स्वामी जी का दर्शन करने चल पड़े। स्वामी जी के मधुर संभाषण से मुग्ध हो मौलवी साहब ने भी अपने मुसलमान मित्रों को ये शुभ सूचना दी। इसके फलस्वरूप स्वामी जी के कमरे में धीरे धीरे इतने लोगों का समागम होने लगा कि कमरा भर जाता और लोगों को बरामदे पर भी जगह नहीं मिल पाती। स्वामी जी उन लोगों से धर्म चर्चाएं करते और बीच बीच में उर्दू और हिंदी गीत, यहाँ तक कि बंगला कीर्तन भी गाते। विद्यापति, चंडीदास, रामप्रसाद, सूरदास इत्यादि अनेक भक्त कवियों के पद और भजन उनके श्रीमुख से सुनकर श्रोतागण मंत्र मुग्ध हो बैठे रहते। कभी कभी वे वेद, उपनिषद, बाइबल और पुराणों की उक्तियों को उद्धृत कर अपने कथनों को प्रमाणित करते, अथवा बुद्ध, शंकराचार्य, रामानुज, गुरु नानक, कबीर, चैतन्य, तुलसीदास और श्री रामकृष्ण इत्यादि के जीवन के घटनाओं का वर्णन कर श्रोताओं के मन में धर्म प्रेरणा उत्पन्न किया करते थे। इसी तरह अलवर के उनके दिन व्यतीत होने लगे।
3: कुछ ही दिनों में स्वामी जी के अनुयायियों की संख्या अत्यंत बढ़ जाने के कारण अलवर वासी कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने तय किया कि उन्हें इसके उपरांत अलवर राज्य के अवकाश प्राप्त इंजीनियर पंडित शंभुनाथ जी के घर में रखना होगा। वहां स्वामी जी ने नियमित जीवन यापन और साधना के लिए अधिक सुयोग पाया। यहां आने के बाद वे प्रातः 9 बजे तक ध्यान धारणा में काल व्यतीत कर बैठक खाने में समागत व्यक्तियों से वार्तालाप करने के लिए निकलते। उसी समय जाति वर्ण निरपेक्ष 20-30 भक्तजन वहां आ जाते। उनमें कोई कोई संभवतः शिया या सुन्नी संप्रदाय के मुसलमान और अन्य शैव, वैष्णव आदि संप्रदायों के हिंदू होते। धनी और दरिद्र वहां मिलकर एक हो जाते। स्वामी जी दोपहर तक उन लोगों के बीच बैठकर सबके साथ समान भाव से वार्तालाप करते और धर्म संबंधी विभिन्न समस्याओं का समाधान कर देते। कभी निसंकोच भाव से बातें करते। इसके फलस्वरूप स्वामी जी की इच्छा नहीं रहने पर भी अवांतर विषय बीच बीच में आ जाते। फिर भी क्षुब्ध हुए बिना स्वामी जी समुचित उत्तर देकर प्रश्नकर्ताओं की उत्सुकता मिटा दिया करते। कभी कभी ऐसा होता कि कोई आध्यात्मिक प्रसंग चल रहा है, इसी बीच कोई अविवेकी व्यक्ति अप्रासंगिक प्रश्न कर बैठता।
4: महाराज, आप गेरुआ वस्त्र क्यों पहनते हैं?
5: क्योंकि ये भिखारियों की पोशाक है। उजला कपड़ा पहने रहने पर गरीब लोग मुझसे भिक्षा चाहेंगे, किंतु मैं स्वयं ही भिखारी हूँ। अक्सर एक कौड़ी भी मेरे पास नहीं रहता, अतः चाहने पर भी यदि नहीं दे पाता हूँ तो मुझे अत्यंत कष्ट होता है। गेरुआ वस्त्र देखने पर वे समझते हैं कि मैं उन लोगों की तरह ही गरीब हूँ, इसलिए भिखारी से भीख मांगने की बात ही उनके मन में नहीं उठती।
0: शाम को स्वामी जी के घूमने के लिए निकलने पर कई लोग उनके संग संग चला करते। दिन बीतने पर कर्म समाप्ति के बाद और भी भगवत प्रसंग सुनने के लिए उनके निवास स्थान पर लोग एकत्र होते। तब फिर वही प्रार्थना, ध्यान और भाव भक्ति का स्रोत बहने लगता। फिर सभी भगवत रस का आस्वादन करते, अथवा कभी स्वामी जी मधुर कंठ से भगवत गुणगान करते और कोई कोई उनके साथ स्वर मिलाकर कीर्तन में उन्मत्त हो जाता। कितने ही दिन इस भाव से ढेर सारा समय व्यतीत हो जाता, किसी को इसका होश नहीं रहता। किसी दिन गहरी रात गए तक इसी प्रकार चलता, लगभग रात के 4 बज जाते। बीच बीच में नृत्य भी होता, स्वामी जी के साथ सुर मिलाकर सारे बंगला गीत भी गाते। भूल जाने के डर से कोई गीतों को लिख कर भी रखते। राजस्थान वैष्णव प्रधान स्थान है, अतः स्वामी जी प्राय श्री कृष्ण विषयक संगीत गाया करते। एक दिन उन्होंने ये गीत गाया।

0: इस प्रकार भगवत प्रसंग और संगीत आदि में कितने ही दिन बीत गए। बहुत देर रात तक स्वामी जी को छोड़कर जाने का किसी का मन नहीं होता। रात में अपने घर लौटकर भी स्वामी जी की ही चर्चा होती। सभी सोचते कि फिर कब लौटेंगे। कोई कोई कहते, बाबा जी का हृदय आनंद से भरा है, मुख पर हंसी फूटती ही रहती है। दूसरे लोग कहते, महाशय इतना सुंदर श्लोक पाठ हमने कभी नहीं सुना, उनके कंठ से मानो चांदी के तार की झनकार गूंजती है। फिर कोई कहता, हाँ उनके कंठ में नाद है। तभी कोई दूसरा व्यक्ति संशोधन कर देता, केवल यही नहीं, उनके कंठ में एक ऐसी विद्युत शक्ति है कि सुनते ही मुग्ध हो जाना पड़ता है। इसी तरह कोई दूसरा व्यक्ति इसमें योग देते हुए कहता, और देखते हैं स्वभाव कितना मधुर है, इतने लोग इतनी तरह से तंग करते हैं, मूर्ख की भांति जो सो प्रश्न करते हैं तब भी क्रोध नहीं करते, सारी बातों के उत्तर देते हैं। अन्य व्यक्ति अपनी सम्मति देते हुए कहता, कोई गुस्सा उस्सा नहीं, सिद्ध महापुरुष है, देखिए ना मन में केवल यही होता रहता है कि कब उनके पास जाऊंगा, इच्छा होती है कि दिन रात उनके निकट बैठा रहूं।
1: स्वामी जी के अनुरक्त भक्तों में पूर्वोक्त मौलवी साहब के मन में प्रबल अभिलाषा थी कि स्वामी जी को अपने घर ले जाकर भिक्षा ग्रहण करावे। वे सोचते, स्वामी जी तो दरवेश हैं, सन्यासी हैं, वे जाति भेद से मुक्त हैं, किंतु जिस पंडित जी के घर में वे रह रहे हैं उन्हें तो आपत्ति हो सकती है। फिर भी एक दिन उन्होंने विश्वास के साथ सबके सम्मुख हाथ जोड़कर पंडित जी से कहा, कृपा कर ये अनुमति दीजिए कि बाबा जी कल मेरे घर पर भिक्षा ग्रहण करें। आप लोगों के संतोष के लिए हम ब्राह्मण बाजार से ही बर्तन ले आएंगे और उसी में पकाएंगे, और ये यवन यदि केवल दूर से देखने का सौभाग्य पाए कि स्वामी जी उसकी भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो इतने से ही वो कृतार्थ होगा।
0: मौलवी साहब ने ऐसी विनय और सरलता पूर्वक ये बातें कही कि सभी उपस्थित लोग इससे मुग्ध हो गए, और पंडित जी ने मित्र भाव से उनके दोनों हाथों को पकड़कर कहा,
2: भाई स्वामी जी तो दरवेश हैं, उनके समक्ष जाति भेद का क्या मोल है, इतना कष्ट नहीं करना होगा, मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है, आप जैसी व्यवस्था करेंगे हम लोग उससे ही संतुष्ट होंगे, और जैसी व्यवस्था की बात आप कह रहे हैं वैसी होने पर तो आपके घर में खाने में हम लोगों का धर्म बोध भी बाधक नहीं होगा। स्वामी जी की तो बात ही क्या है, वे तो मुक्त पुरुष हैं।
1: स्वभावतः मौलवी साहब ने स्वामी जी को अपने घर पर भोजन करवा कर विशेष तृप्ति पाई। मौलवी साहब का अनुकरण कर और भी कई सज्जनों ने स्वामी जी को आग्रह पूर्वक अपने घर आमंत्रित कर भोजन कराया था।
0: धीरे धीरे अलवर के महाराजा के दीवान मेजर राजचंद्र जी के कानों में ये समाचार पहुंचा कि शहर में एक विशेष महात्मा का आगमन हुआ है। सुनते ही उन्होंने स्वामी जी को आदर पूर्वक अपने घर ले जाकर उनसे बातचीत की, और वे तुरंत समझ गए कि इन सुविद्वान मेधावी और अनुभूति संपन्न महायोगी की कृपा दृष्टि पड़ने पर अलवर के अंग्रेजी भावापत्र महाराज की मति गति में परिवर्तन हो सकता है। ये सोचकर उन्होंने महाराजा मंगल सिंह को संवाद भेजा, एक साधु आए हैं, वे अंग्रेजी के महापंडित हैं। महाराजा उन दिनों 2-3 मील दूर एक निर्जन महल में रह रहे थे। दीवान जी का पत्र पाकर वे दूसरे दिन ही अलवर लौट आए तथा सीधे दीवान जी के घर जाकर स्वामी जी का श्रद्धा पूर्वक उन्होंने दर्शन किया और प्रणाम करने उपरांत उनके सम्मुख आसन ग्रहण किया। उनके साथ समागत सभासद वृंद ने भी वहां उपयुक्त स्थान पर आसन ग्रहण किया। महाराज ने पहले ही प्रश्न किया,
3: अच्छा स्वामी जी महाराज, सुनता हूँ कि आप अद्वितीय पंडित हैं, तब तो आप सहज ही काफी धन उपार्जन कर सकते हैं, ऐसा ना करके आप भीख मांगने क्यों निकले हैं?
4: महाराज क्या आप बता सकते हैं अपने राज कार्य की अवहेलना कर आप दिन रात साहबों के साथ क्यों दावत खाते हैं, शिकार करने निकलते हैं?
1: सभासदगण स्वामी जी के कथन की भंगिमा से विचलित हो उठे। ये कैसा दुस्साहस है, पता नहीं आज इनके भाग्य में क्या बदा है, किंतु स्वामी जी की बात को महाराजा ने धीरता पूर्वक सुना, सुनकर थोड़ा विचार किया और बाद में कहा,
3: मैं वैसा क्यों करता हूं कह नहीं सकता, फिर भी वहां वो मुझे अच्छा लगता है।
4: तो ठीक है, मुझे भी उसी प्रकार भिखारी की तरह घूमना अच्छा लगता है।
3: अच्छा बाबा जी महाराज, ये जो सारे लोग मूर्ति पूजा करते हैं उसमें मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं, तब मेरी क्या दशा होगी इस अविश्वास के कारण?
1: ये बात कुछ व्यंगपूर्ण लहजे में कही गई और कहने के बाद महाराज ने थोड़ा मृदु हास्य भी किया। तथापि स्वामी जी पहले ही इस बात को इतने हल्के ढंग से नहीं ले सके। भारतीय होकर क्या कोई इस प्रकार की बात कह सकता है? इसी से उन्होंने अविश्वास भरे लहजे में कहा,
3: नहीं नहीं नहीं स्वामी जी, बिल्कुल। देखिए, वस्तुतः मैं अन्य लोगों की भांति लकड़ी, मिट्टी, पत्थर और धातु इन सब की पूजा नहीं कर पाता हूं, तो क्या इससे मेरे दूसरे जन्म में मेरी अधोगति होगी?
4: जिसका जैसा विश्वास।
1: कहते कहते स्वामी जी की नजर दीवार पर टंगी महाराजा की तस्वीर पर पड़ी। उन्होंने उसे उतरवाकर पूछा, ये किसकी तस्वीर है? लोगों ने कहा, वो तस्वीर महाराजा मंगल सिंह की है। स्वामी जी ने तस्वीर हाथ में ली और दीवान जी से कहा,
4: दीवान जी, इस तस्वीर पर थूक दीजिए।
1: दीवान जी और उपस्थित सभी लोग भय से त्रस्त हो गए। दीवान जी ने महाराजा की ओर देखा और कहने लगे,
5: जी जी, क्या कह रहे हैं आप स्वामी जी, ये हमारे महाराज हैं।
4: ठीक है, आप थूक नहीं सकते, पर आप चुप क्यों हैं? आप लोग, आप में से कोई भी इस तस्वीर पर थूक सकता है? कागज के अलावा ये और क्या है? फिर इस कागज पर थूकने से लोगों को आपत्ति क्यों? दीवान जी, आप डर गए हैं, बार बार महाराज की ओर क्यों देख रहे हैं? आइए, आप में से कोई तो आगे आइए, फेंकिए, इस पर थूक फेंकिए।
5: ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी, ये हमारे महाराजा की प्रतिमूर्ति जो है, ऐसा काम हम लोग कैसे कर सकते हैं भला?
4: ऐसा भले ही हो, किंतु महाराजा तो इस तस्वीर के अंदर बैठे नहीं है, इसमें उनका हाड़ मांस या रक्त भी मौजूद नहीं है। महाराजा की भांति ये तस्वीर न हिलती डुलती है, न बातें करती है, फिर भी आप लोगों में से कोई इस पर थूकने को राजी नहीं, क्योंकि आप लोग इसमें महाराजा की काया की छाया देखते हैं। इस पर थूकने से आप लोगों को लगता है कि आप अपने स्वामी का, स्वयं महाराज का अपमान कर रहे हैं।
1: फिर उन्होंने महाराजा मंगल सिंह की ओर मुड़कर कहा,
4: देखिए महाराज, एक दृष्टि से यद्यपि आप ये चित्र नहीं है, तथापि दूसरी दृष्टि से ये आप ही हैं। इसी से मैंने जब इन लोगों से थूक फेंकने कहा था, तब आपके एकांत अनुरागी कर्मचारी गण हतप्रभ हो गए थे। इसमें आपका प्रतिबिंब है, यह उनके मन में आपको ला बिठाता है। इसकी ओर देखते ही वे लोग स्वयं आपको देखने लगते हैं। इसी से आपको व्यक्तिगत रूप से वे लोग जितना सम्मान करते हैं, इस चित्र का भी उतना ही सम्मान करते हैं। जो भक्तगण पत्थर या धातु से बनी प्रतिमा के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन लोगों के संबंध में ठीक यही बात घटित होती है। भक्तगण इसलिए भगवान की प्रतिमा की पूजा करते हैं कि ये प्रतिमा उन लोगों को उनके अपने इष्ट के ऐश्वर्य की महिमा का स्मरण करा देती है, तथा उन लोगों की ध्यान धारणा में सहायक होती है। वे लोग इस धातु या पत्थर की पूजा ही नहीं करते हैं, मैं कई जगहों पर गया हूं, परंतु कहीं भी तो किसी को यह कहकर प्रतिमा की पूजा करते नहीं देखा कि हे पत्थर, मैं तुम्हारी पूजा करता हूं, हे धातु, तुम मुझ पर कृपा करो। सभी केवल उसी अद्वितीय चैतन्य स्वरूप परमात्मा की ही पूजा करते हैं, और भगवान जो जिस रूप में समझता है या उनका जिस रूप में चिंतन मनन करता है, उसी रूप में वे भी उसे दर्शन देते हैं। महाराज, मैं अपना निजी भाव व्यक्त कर रहा हूं, आपका क्या भाव है मैं नहीं जानता।
1: महाराजा मंगल सिंह अभी तक बड़े ध्यान से सब देख सुन रहे थे। अब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा,
3: स्वामी जी, अभी जिस भाव से आपने मूर्ति पूजा की व्याख्या की है, उस अर्थ में मैंने अब तक किसी को पत्थर, काष्ठ या धातु की पूजा करते नहीं देखा। मैं ये तत्व नहीं जानता था। आपने मेरी आंखें खोल दी, किंतु मेरा क्या होगा? आप मुझ पर कृपा करें महाराज।
4: महाराज, कृपा एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं। और वे तो सदा ही कृपामय हैं। उनसे प्रार्थना कीजिए, वे निश्चय ही आप पर कृपा करेंगे।
0: स्वामी जी के चले जाने के बाद भी महाराजा काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे। फिर दीवान जी से कहा,
3: ऐसा महात्मा मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा। दीवान जी, आप उन्हें कुछ दिनों तक अपने यहाँ रोक रखिए ना।
0: दीवान जी ने सहमति दी और कहा,
5: मैं यथासाध्य कोशिश करूंगा महाराज, फिर भी उन्हें रोक पाऊंगा कि नहीं कह नहीं सकता। ये बड़े तेजस्वी और स्वाधीन चेता व्यक्ति हैं महाराज।
1: बहुत अनुनय विनय के उपरांत स्वामी जी दीवान जी के घर इस शर्त पर रहने को सहमत हुए कि जो भी गरीब और साधारण लोग उनका दर्शन करने आएंगे, उन लोगों के लिए भी धनी मानी व्यक्तियों की भांति ही इस घर का द्वार सदा खुला रहेगा। दीवान जी सहज ही राजी हो गए और तब से स्वामी जी उनके घर पर ही रहने लगे।
0: अलवर की एक और घटना शायद सबको नहीं पता। स्वामी जी ने अलवर वासियों का हृदय जीत लिया था। एक ब्राह्मण बालक उनके पास आया करता था और एक शिष्य जिस प्रकार अपने गुरु को प्रेम करता है उसी प्रकार उन्हें प्रेम करता था। उसके उपनयन का समय हो जाने पर भी अर्थाभाव से उसका उपनयन नहीं हो पा रहा था। यह जानने पर स्वामी जी अर्थाभाव दूर करने के लिए विकल हो उठे। उन्होंने अपने धनवान भक्तों से कहा,
4: तुम लोगों से एक भिक्षा चाहता हूँ। इस ब्राह्मण के उपनयन संस्कार के लिए उपयुक्त धन नहीं है। गृहस्थ के रूप में इसकी सहायता करना तुम लोगों का कर्तव्य है, अतः इसके लिए चंदा इकट्ठा करो। इस उम्र का ब्राह्मण बालक अपनी जाति के अनुरूप नित्य नैमित्तिक क्रियाकर्म नहीं जाने, ये तो बड़ा अशोभन है। इसके अतिरिक्त यदि तुम लोग इसके लिए लिखने पढ़ने की व्यवस्था कर सको तो बड़ा उत्तम होगा।
1: भक्तजन तुरंत इस कार्य के लिए आगे बढ़े और स्वामी जी इस विषय में निश्चित हुए। अलवर से चले जाने के बाद भी उस बालक की बात स्वामी जी नहीं भूले। संस्कृत शिक्षा की आवश्यकता को भी वे नहीं भूले। इसी से उन्होंने अपने भक्त गोविंद सहायक को आबू पर्वत से 30 अप्रैल को एक पत्र में लिखा था, उस ब्राह्मण का उपनयन संस्कार क्या तुम करा चुके? क्या संस्कृत पढ़ रहे हो? कितनी प्रगति हुई है?

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

युग प्रवर्तक विवेकानंद। अभी आप ये धारावाहिक सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, प्रातःकालीन प्रसारण सभा में अब मैं आपसे विदा लूं ये वक्त हो रहा है, लेकिन आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से आपको परिचित करवाने के बाद, आज शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि। 5:10 पर भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा। वतन का राग कार्यक्रम में आज शाम 6 बजे हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारापोर की। प्रकृति की पुकार, ये कार्यक्रम शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। आज का विषय वायुमंडल।

शाम 7 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम योग संवाद। चर्चा का विषय पौरुष की प्रधानता और प्रारब्धवाद का खंडन। हमारा विशेष कार्यक्रम होगा शाम 7:30 बजे। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और उनके शिष्यों का बांसुरी वादन। रात 8:30 बजे आजाद हिंद कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात 9 बजे। चर्चा का विषय आयुर्वेद में प्रकृति का स्वास्थ्य से संबंध। और रात 9:30 बजे आप सुनिएगा धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। प्रातःकालीन प्रसारण सभा से अब मैं सुनीता सिंह इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार, आप सुनते रहें 90.8 MHz पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। तराने आजादी के ये कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। आइए शुरू करें सिलसिला देशभक्ति गीतों का।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है ये देशभक्ति गीत।

अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशगान। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तराने आजादी के। इस प्रसारण सभा में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता सिंह। अगली प्रस्तुति के साथ हाजिर होती हूँ, बस एक छोटा सा अंतराल। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत भारती कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कई तरह के वादन और गायन, तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुपमा भागवत का सितार वादन, और उसके बाद सुनवाएंगे आपको गायन देविकी पंडित का। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन, जिसे पेश किया है अनुपमा भागवत ने।

तो श्रोताओं, अभी आपने सुना सितार वादन, जिसे पेश किया अनुपमा भागवत ने। अब आनंद लीजिए गायन का, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं देविकी पंडित।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई।
1: रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: झूलोट के घर ना आए।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
3: अतुल्य भारत।
2: हाँ, घूमना किसे पसंद नहीं, नई नई जगहें देखना, नए नए लोगों से मिलना, एक अलग तरह की संस्कृति और एक अलग तरह का नजारा।
4: हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाई, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ घूमने फिरने के लिए।
2: और इन सब का अपना एक अलग ही आनंद होता है।
4: हो भी क्यों ना,
2: एक अलग ही रोमांच है। इस रोमांच की तमन्ना हमें मजबूर करती है कि हम अपने खोल से बाहर निकले और देखें कि दुनिया कितनी बड़ी और कितनी विविध है।
4: बिल्कुल ठीक कहा कंचन तुमने, वरना हमारी जिंदगी तो ऐसी हो जाएगी जैसे कुएं के अंदर एक मेंढक, अगर हम घूमने नहीं निकले। एक बात बताऊं तुम्हें?
2: हाँ?
4: प्रसंगवश हमें 14वीं सदी के एक यात्री इब्न बतूता की याद आती है। मोरक्को के टेंजियर शहर का वो रहने वाला था।
2: हाँ?
4: और पैदाइशी तौर पर उसे घूमने का जबरदस्त जज्बा था। वह कहता था कि मुझे वो ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए जो किताबों में लिखा है भाई, मैं तो चीजों को अपनी आंखों से देखना, उन्हें महसूस करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ।
2: हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में।
4: अच्छा?
2: वो कहते थे कि मैं दुनिया देखने के लिए उतावला हो रहा हूँ, और घुमक्कड़पन के इसी उन्माद में 22 साल का ये युवक अकेले ही अपने घर से निकल पड़ा, ऐसे जैसे चिड़िया का बच्चा अपना घोंसला छोड़कर निकल पड़ता है।
4: बिल्कुल ठीक।
2: 14वीं सदी का माहौल आज जैसा तो नहीं होगा तब। उस जमाने में अकेले तो क्या, कारवा के साथ चलने पर भी जान की कोई गारंटी नहीं होती थी।
4: हाँ, आपको घर बैठे घुमाने का रोमांच अनुभव कराने के लिए चलो आज हम आपको सैर पर ले चलते हैं, एक रेडियो यात्रा पर। इस कड़ी में सबसे पहले हम चलते हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में।
2: वाह, वाराणसी से मुझे कहावत याद आ गई।
4: कौन सी?
2: शाम अवध सुबह काशी, यानी अवध की शाम और काशी की सुबह बड़ी ही सुहानी होती है।
4: ये तो ठीक है।
2: सच बात है, काशी यानी कि वाराणसी में सुबह मुंह अंधेरे ही हर हर गंगे हर हर महादेव करती टोलियां जब गंगा तट की तरफ बढ़ती हैं, तो मन एक बार की भक्तिमय हो उठता है। सूरज के जगने से पहले ही ये शहर जग पड़ता है, मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं और गंगा का घाट चहल पहल से भर जाता है।
4: काशी नगरी पूरी दुनिया में सबसे निराली है, भगवान शिव ने इसे अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है, और मानता तो यह भी है कि यह शहर दुनिया में होकर भी मानो दुनिया में नहीं है, और इसलिए जब पूरा विश्व प्रलय में डूब जाएगा तो कहते हैं तब काशी ही अपनी जगह पर कायम रहेगी, ऐसी मान्यता लोगों में आदि काल से चली आ रही।
2: और काशी को वाराणसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वरुणा और 80 नदियों के बीच बसा हुआ है। श्रोताओं, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये दोनों ही नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इन नदियों ने अपने प्यार भरे आलिंगन में इस शहर को ऐसे पाला है जैसे दो माताएं किसी बच्चे को पालती हैं।
4: वाह वाह, क्या कल्पना करी है तुमने। दुनिया के इतिहास में अनेक नगरों का उत्थान और पतन होता रहा है। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को ही ले लो। आज से 5000 साल पहले बसे इन शहरों में अब केवल मलबे ही मलबे बचे हैं, लेकिन वाराणसी शायद पूरी दुनिया का ऐसा सबसे पुराना शहर है जो लगातार जिंदा है, अनवरत धड़क रहा है। और हो भी क्यों ना, शिव जी की खास पसंद जो है ये काशी।
2: हाँ, और इसके बारे में मार्क ट्विन ने तो ये भी कहा था कि ये शहर ओल्डर देन हिस्ट्री है। वे लिखते हैं कि ये शहर इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, पुराणों से भी पुराना है, और इन सब की आयु को अगर एक साथ जोड़ लिया जाए तो ये शहर इससे भी दुगना पुराना है।
4: वाराणसी शहर इतना पुराना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। इस ग्रंथ में इसे काशी कहकर के पुकारा गया है। काशी शब्द का अर्थ होता है सिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का शहर या ज्योति का शहर।
2: और प्रकाश ज्ञान का भी प्रतीक होता है, धर्म का भी और जागरण का भी।
4: बिल्कुल,
2: ये हम नहीं कहते, हमारे पुराने श्लोक कहते हैं।
4: कौन से श्लोक?
2: अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आपको बता दें कि ये पंक्तियां वृदारण्यक उपनिषद के नवरस मंत्र से ली गई हैं।
4: बिल्कुल, लेकिन वाराणसी के संदर्भ में प्रकाश का अर्थ ज्ञान नहीं, जागरण नहीं, बल्कि कुछ और ही है। और वो क्या है ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: ऋग्वेद के बाद अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ स्कंद पुराण है, जिसमें पूरा का पूरा एक काशी खंड ही है।
4: अच्छा।
2: और इस खंड में 15,000 श्लोक हैं। इनमें से एक श्लोक में भगवान शंकर कहते हैं,
4: क्या?
2: अखिल विश्व के तीनों लोकों में केवल एक ही शहर मेरा है और वो है काशी।
4: भाई वाह, क्या बात है।
2: और इसी शहर में मेरा शाही महल भी है।
4: श्रोताओं, अगर आप भूल रहे हो तो हम आपको याद दिला दें कि गंगा भी शिव की जटा से ही निकली है, यानी हर तरह से वाराणसी शिव में है। तभी तो हर हर गंगे यहाँ का सबसे बड़ा मंत्र है।
2: और रामायण व महाभारत ग्रंथों में भी वाराणसी की चर्चा बारंबार मिलती है। गौतम बुद्ध की बात करें तो उनका समय भी आज से लगभग 2,500 साल पहले का है।
4: बिल्कुल।
2: ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना पहला उपनिषद ऋषिपत्तन में दिया था। ये ऋषिपत्तन ही आज सारनाथ है, जो वाराणसी से ही लगा हुआ है, जैसे कि भोपाल और बैरागढ़।
4: हाँ, गौतम बुद्ध बोधगया से ज्ञान प्राप्ति के बाद जब यहाँ आए तब यहाँ पर एक बगीचा हुआ करता था, जिसे मृगाड़दव कहा जाता था। इस शब्द का मतलब होता है कि ऐसा बगीचा जिसमें हिरण रहते हों। आज भी यह बगीचा है, जिसे डेयर पार्क कहा जाता है, और आज भी यहाँ पे हिरण रहते हैं।
2: और इस बगीचे में ही गौतम बुद्ध जी ने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। बौद्ध परंपरा में ये घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है, जिसका मतलब होता है धर्म के पहिए का गतिशील होना।
4: हाँ, बुद्ध के निर्वाण के बाद सारनाथ में धमेक स्तूप बनाया गया, जिसके आज केवल अवशेष ही मिलते हैं। यहाँ मुलागन गुटी नाम का एक विहार भी हुआ करता था। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला वर्षाकाल यहीं व्यतीत किया था, और अब इस विहार को श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है।
2: इस तरह बुद्ध से संबंधित होने के कारण सारनाथ आज दुनिया भर के बौद्ध लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। और यहाँ हर समय पर जापान, थाईलैंड, तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार देशों के तीर्थयात्रियों का मेला लगा रहता है।
4: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सारनाथ का एक और महत्व है, और वह यह है कि यहाँ से प्राप्त अशोक की लाट से भारत सरकार का राज्य चिन्ह लिया गया है, जिसमें 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं।
2: बौद्ध धर्म के समान ही जैन धर्म से भी वाराणसी का गहरा रिश्ता रहा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म भी यही हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे।
4: वाराणसी अपने खूबसूरत घाटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यूं तो गंगा हर जगह मनोहारी है, पर काशी में तो इसकी छटा निराली है। मॉडर्न एज के जाने माने पेंटर मकबूल फिदा हुसैन को तो बनारस व यहाँ का गंगा तट इतना भाया कि उनकी पेंटिंग में अनेकों रंग इसमें बिखरे हुए हैं।
2: यहाँ इसके किनारों पर कुल 80 घाट बने हुए हैं, जो राजघाट से शुरू होकर 80 घाट तक फैले हैं। इन्हीं में से एक घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। राम जी के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र ने जब अपने सपने में अपना राज्य दान दे दिया था, तब वे यहीं आकर एक डोम के दास बने थे।
4: लाइफ का कंट्रास्ट अगर देखना हो तो मरणिका घाट और दशाश्वमेध घाट देखें। एक मृत्यु का प्रतीक है तो दूसरा जीवन का। एक पर दाह संस्कार के लिए शवों की लाइन लगी रहती है तो दूसरी तरफ शादी विवाह की मन्नतें पूरी करने वालों से अटा पड़ा रहता है। पूरा का पूरा वातावरण जीवन की किलकारियों से भरा रहता है।
2: उस क्षेत्र के वरवधु शादी के बाद दशाश्वमेघ अवश्य आते हैं। गंगा माँ को चुनर चढ़ाई जाती है, दीपदान चलता रहता है, मंदिरों के घंटे जीवन का उद्घोष करते रहते हैं। घाट क्या है, पूरा एक शहर है। विदेशी यात्रियों का सबसे ज्यादा जमावड़ा भी यहीं दिखाई देता है। घाट की सीढ़ियों पर वे ऐसे शांति से बैठे रहते हैं जैसे यहाँ विद्यमान आध्यात्मिक ऊर्जा को चुपचाप आत्मसात कर रहे हो।
4: हाँ, और दूसरी ओर मणिकर्णिका, कुछ और नहीं बस मौत का सन्नाटा है यहाँ। यहाँ आकर के कबीर का दोहा याद आता है।
2: कौन सा?
4: पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात।
2: यानी मनुष्य का शरीर और क्या है, बस पानी का एक बुलबुला ही तो है। यहाँ से लौटने के बाद हफ्तों तक जीवन की निसारता पीछा करती रहती है। वैराग्य अनुराग पर चोट करता रहता है, पर अंत में जीत अनुराग की ही होती है। ऐसा ना हो तो सब सन्यासी ही हो जाएं।
4: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब काशी की बात चले तो काशी विश्वनाथ मंदिर की चर्चा भला कैसे ना हो। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आपको बता दे कि इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में भी है, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, और यह लाइट कुछ और नहीं ज्योतिर्लिंग ही है।
2: दरअसल ज्योतिर्लिंग उस देव स्थान को कहते हैं जहाँ शिव मूर्ति की नहीं बल्कि शिवलिंग की उपासना होती है।
4: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि शिव सनातन है, निराकार है। सबसे पहले उन्होंने स्वयं को अरिद्र नक्षत्र की एक रात्रि में एक अग्नि शिखा के रूप में प्रकट किया जो धरती को फाड़ करके बाहर निकल रही थी। इस अग्नि शिखा को ही प्रतीकात्मक रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट किया जाता है।
2: श्रोताओं, 3 ज्योतिर्लिंग के नाम तो आपने सुन ही लिए, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और काशी विश्वनाथ। चलिए अब आपको शेष 9 नाम भी बताए देते हैं। केदारनाथ, वैद्यनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घुश्मेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग।
4: श्रोताओं, काशी के विश्वनाथ मंदिर को कभी कभी गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता था। वजह यह थी कि इस मंदिर के शिखर पर 50 फीट ऊंचा सोने का पत्थर चढ़ा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि यह पत्थर किसने चढ़ाया था? पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने।
2: इस मंदिर का कुछ रिश्ता हमारे मध्य प्रदेश से भी है।
4: हाँ।
2: राजमाता अहिल्याबाई होलकर कितनी शिव भक्त थी ये तो सभी जानते हैं।
4: बिल्कुल।
2: उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और गंगा के कुछ घाटों को भी पक्का करवाया था। कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि गंगा में डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर ले तो मोक्ष का द्वार उसके लिए स्वयमेव खुल जाता है।
4: और शायद यही वजह है कि आदि शंकराचार्य से लेकर के गुरु नानक, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद आदि कितने ही महापुरुषों ने इस मंदिर के दर्शन किए, स्वयं को धन्य किया। इतिहास के लंबे दौर में अनेक बार इस मंदिर को हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार दुगनी शान शौकत के साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया।
2: श्रोताओं, वाराणसी शहर धर्म और आध्यात्म की एक गंगा है। तभी तो यहाँ एक से बढ़कर एक पवित्र स्थल है। अब संकट मोचन को ही ले लीजिए। उल्लेख मिलता है कि वाराणसी में असी नदी के पास एक जगह पर हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास को साक्षात दर्शन दिए थे। सो उन्होंने उस जगह पर संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की।
4: लेकिन आज जो मंदिर का ढांचा है उसका निर्माण पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में बंदरों के झुंड मिलते हैं, इतने कि आप हैरान हो जाएं। ऐसा लगता है कि हम वानर लोक में आ गए हैं। पता नहीं जाने कैसे मालूम पड़ जाता है कि ये उनके राजा का मंदिर है।
2: जरा याद करें यहाँ पर हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ।
4: कौन सी?
2: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुं लोक उजागर। यानी यहाँ हनुमान जी को कपीश कहा गया है।
4: बिल्कुल।
2: इसका अर्थ है कपि, यानी बंदरों के ईश और लौकिक अर्थ में राजा। प्रसंगवश आपको बता दें कि हनुमान चालीसा की रचना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही की है और उसकी भाषा भी अवधी है।
4: हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि संकट मोचन मंदिर के बंदर भी बड़े नटखट और शरारती होते हैं। हो सकता है कि ये आपकी कोई कीमती चीज उठा ले जाएं, लेकिन केवल बार्गेनिंग के लिए नहीं, आप उनसे अपनी चीज को वापस लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज उनको देनी पड़ेगी अदला बदली के लिए। बंदरों को आप कुछ खाने पीने की चीज दे दीजिए, वापस बदले में वो आपकी चीज आपको वापस लौटा देंगे।
2: संकट मोचन का रुतबा अगर आपको देखना हो तो जरा कभी मंगलवार या शनिवार को पधार कर देखिए। घंटों के पहले अगर दर्शन करने की आपकी बारी आ जाए तो कहिएगा। कहते हैं अगर किसी की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी ना हो तो उसका सबसे प्रभावशाली उपाय है संकट मोचन के दर्शन करना।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हम वाराणसी की बात करें और वाराणसी के शिल्प की बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। वाराणसी का शिल्प बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, खासकर यहाँ की बनी हुई बनारसी साड़ियाँ। इन साड़ियों का भारतीय लोगों के लिए क्या दर्जा है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर दुल्हन की यह अभिलाषा होती है कि वह अपने विवाह के अवसर पर बनारसी साड़ी जरूर पहने।
2: ये साड़ियाँ होती तो सिल्क की हैं, पर इन पर सोने और चांदी की जरी की जाती है। एम्ब्रॉयडरी इतनी जबरदस्त होती है कि साड़ियाँ भारी भरकम हो जाती हैं। इसलिए ये केवल खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें पहनना संभव ही नहीं।
4: भारत की बात छोड़ दें तो विदेशों में भी इन साड़ियों के प्रति भारी दीवानगी देखने को मिलती है। अगर आपने अपने किसी एनआरआई दोस्त की पत्नी को बनारसी साड़ी भेंट कर दी तो समझ लीजिए कि जिंदगी भर के लिए वह आपका हो गया। वास्तव में शादी विवाह के मौके पर इस साड़ी का तोहफा देना एक बड़ी ही महानता मानी जाती है।
2: यहाँ आपको बता दें कि सिल्क की बनी बनारसी साड़ियाँ बनारस की प्राचीन संस्कृति का अंग नहीं रही हैं। लंदन का एक व्यापारी रॉल्फ फिच 16वीं शताब्दी में भारत आया। उस समय भारत पर सम्राट
4: अकबर के काल तक वाराणसी सिल्क टेक्सटाइल के लिए नहीं जाना जाता था। वास्तव में बनारस की साड़ियां तो गुजरात के बुनकरों की देन है। 17वीं शताब्दी के बाद गुजरात में भयानक अकाल पड़ा और वहां से बहुत सारे बुनकर पलायन करके बनारस में आ गए और इन्हीं लोगों ने बनारसी साड़ियों की नींव डाली।
2: बनारस की बात चले तो यहाँ की गलियां कैसे छूट सकती हैं? पूरी दुनिया में मशहूर हैं यहाँ की गलियां।
4: बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं तो कई बार भटक चुका हूँ इन गलियों में।
2: बाहर वालों के लिए तो भूल भुलैया ही है, तो यहाँ वालों के लिए तोहफा? सड़क पर जाम लगा है, कोई बात नहीं, भीतर ही भीतर गलियों से निकल जाइए।
4: आप पूरा का पूरा शहर इन गलियों के सहारे नाप सकते हैं। करोड़ों का व्यापार इन गलियों में होता है। बनारसी साड़ियों की अच्छी से अच्छी दुकानें इन्हीं गलियों में हैं। बनारस के नायाब हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी इन्हीं गलियों में मिलते हैं।
2: श्रोताओं, विश्वनाथ मंदिर की चर्चा तो हो ही चुकी है। दशाश्वमेध घाट की सड़क से इस मंदिर को जोड़ने का काम भी एक गली ही करती है।
4: बिल्कुल।
2: जिसे विश्वनाथ गली कहा जाता है। गली क्या है, पूरा एक शहर है, मिनी वाराणसी आप देख सकते हैं यहाँ पर।
4: हाँ, एक से बढ़कर एक हैंडीक्राफ्ट के सामान, भगवान की अद्भुत मूर्तियाँ, राजा और सिपाही, पर्स, साड़ियाँ, गहने, ऐसा लगता है कि सपनों की गलियों में तैर रहे हैं आप। विदेशी पर्यटकों की तो भरमार रहती है इस गली में, लेकिन बार्गेनिंग बड़ी जबरदस्त होती है। कुछ खरीदना हो तो होशियार रहिएगा आप।
2: अरे हाँ, बनारस जाइएगा तो बनारसी लस्सी पीना मत भूलिएगा।
4: अच्छा,
2: वो स्वाद वो सुगंध, आहा, वो स्टाइल आप कहीं और पा ही नहीं सकते। ताजी मलाईदार दही आपके सामने ही फेंटी जाएगी और बर्फ का चूरा मिलाया जाएगा, शक्कर मिलाई जाएगी और ऊपर से गुलाब जल डालकर आपको सर्व की जाएगी मलाई की परत के साथ
4: जी।
2: मिट्टी के ये बड़े बड़े कुल्हड़ में देखते ही बस मुंह में पानी आ जाएगा।
4: अरे मुझे तो सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लस्सी बनाने की परंपरागत कला और पूरी तरह से हैंडमेड काम, ना मिक्सी ना फ्रिज और लस्सी की लस्सी।
2: लस्सी के अलावा एक और भी चीज मशहूर है बनारस की।
4: मुझे पता है आपका इशारा क्या है, बनारसी पान की तरफ ना।
2: हाँ बनारसी पान भी बनारस की एक पहचान है। यूं तो कलकतिया पान भी मशहूर है।
4: हाँ।
2: पर बनारसी पान की बात ही कुछ और है। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है?
4: भाई कलकतिया पान बिल्कुल पक्का हरा होता है और बनारसी पान हल्का सा पीलापन लिए हुए होता है, मुझे तो इतना ही पता है। और इसीलिए इस कलकतिया पान की तुलना में इनमें कड़वापन कम होता है। बनारस के लोगों की कमजोरी है यह पान और शायद बनारस के बाहर के लोगों की भी। तभी तो डॉन फिल्म का यह गाना कि खाए के पान बनारस वाला आज भी जब बजता है ना तो लोग झूम उठते हैं। श्रोता, बनारसी पान के बाद आपको याद दिला दे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का बनारसी घराना बड़ा प्रसिद्ध है और यह घराना तबला वादन में महारत रखता है।
2: धर्म प्राण वाराणसी को भारत के 7 मोक्षदायी स्थलों में एक माना जाता है।
4: बिल्कुल।
2: गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका व द्वारवती स्थल मोक्षदायक हैं।
4: भारतीय उपमहाद्वीपों के शक्तिपीठों के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ये वे स्थल है जहां पर दक्ष की पुत्री तथा भगवान शिव की पत्नी के विभिन्न अंग कट करके गिरे थे। इन सभी स्थलों पर आज शक्तिपीठों की स्थापना की गई है और ये पीठ अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। और वाराणसी में सती के कान की बाली गिरी थी, इस स्थान पर ही आज विशालाक्षी मंदिर बना हुआ है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं वाराणसी से संबंधित कुछ महापुरुषों की।
4: बिल्कुल।
2: वाराणसी असाधारण नगर है। यहाँ के वातावरण में चैतन्य लहरियां बहुत होती हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति को एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है।
4: हाँ।
2: ऐसे लोगों का नाम गिनाने बैठे जो वाराणसी के दीवाने रहे हैं तो एक पूरा ही एपिसोड नाकाफी रहेगा, लेकिन हम कुछ चुनिंदा लोगों की बात करते हैं।
4: चलो शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं महाकवि तुलसीदास से। इन्होंने अपना अंतिम जीवन वाराणसी के एक गंगा घाट पर व्यतीत किया और अंत में देह त्याग भी यहीं किया। इस घाट का नाम तुलसी घाट कहलाता है।
2: गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह कबीरदास जी का भी वाराणसी से गहरा संबंध है। उनका पालन पोषण यहाँ के एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। जिस जगह पर कबीर रहे और पले वो आज कबीर चौरा कहलाता है।
4: अब हम बात करते हैं महामना मदन मोहन मालवीय की। इनका जन्म तो इलाहाबाद में ही हुआ था पर इनकी असली कर्मभूमि रही वाराणसी, जहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी के BHU की स्थापना करके वे अमर हो गए।
2: श्रोताओं, आपको ये बता दें कि ये यूनिवर्सिटी न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। इसका केवल मुख्य कैंपस ही 1300 एकड़ में फैला हुआ है।
4: हाँ, तो मदन मोहन मालवीय जो पेशे से वकील थे, भारत की गरीबी का सबसे प्रमुख कारण अशिक्षा मानते थे, सो उन्होंने वाराणसी में एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की ठान ली। और उस समय भारत में जो यूनिवर्सिटीज थीं, वे केवल एफिलिएटेड थीं।
2: मदन मोहन जी के सामने रास्ता बहुत ही कठिन था। सरकार को राजी करना था, जमीन का इंतजाम करना था और ढेर सारा पैसा चाहिए था। लेकिन जब चाह होती है तो राह निकल ही आती है। राजा बनारस ने जमीन दे दी, भारत के धनपतियों ने अपनी तिजोरियां खोल दी, और कांग्रेस के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने कानून भी पास कर दिया।
4: सबसे बड़ा सहयोग तो एनी बेसेंट का मिला, जो पहले ही बनारस हिंदू स्कूल स्थापना कर चुकी थी। यह स्कूल ही बीएचयू के लिए आधारशिला बन गया और इस तरह जनता के पैसे से जनता की ताकत पर सन 1916 में भारत का पहला रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया।
2: जो रोल डॉक्टर हरि सिंह गौर का सागर विश्वविद्यालय की स्थापना में था, उससे भी बढ़कर मदन मोहन मालवीय जी का बीएचयू की स्थापना में रहा, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी के सामने पैसे की जबरदस्त तंगी थी।
4: मदन मोहन केवल एक शिक्षा शास्त्री ही नहीं थे, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महान सेनानी थे। कांग्रेस में उनका क्या स्थान था, यह इस बात से ही प्रमाणित होता है कि एक दो नहीं बल्कि कुल 4 बार वे इस संस्था के प्रेसिडेंट चुने गए। इसी संस्था के मंच पर सबसे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन के दौरान ही उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि वे इस शहर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहते हैं।
2: भारत के सबसे सरल, नेक और ईमानदार प्रधानमंत्रियों में जिनका नाम सबसे पहले जुमा पर आता है, वे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी भी बनारस के ही लाल थे, जो गंगा उस पार के गांव में रहते थे।
4: गरीबी बेइंतहा थी, पढ़ने के लिए गंगा पार करके शहर आना पड़ता था, पर नाव का किराया देने के लिए पैसा नहीं होता था, तो वे तैर करके गंगा पार करते थे। बनारस की गंगा कोई मामूली गंगा नहीं है, इसे पार करना एक जीवट का काम है, और जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने किया, दुबले पतले कमजोर से इंसान ने।
2: लेकिन पढ़ाई का जज्बा भुजाओं में बल बनकर नदी पार कराता रहता। शायद ये गंगा जल के स्पर्श का ही प्रभाव रहा होगा कि उनकी रग रग में ईमानदारी और सच्चाई भर गई। कहते हैं कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद जब उनका देहांत हुआ तो वे अपने पीछे संपत्ति नहीं बल्कि कर्ज छोड़ गए थे।
4: हाँ, मुझे याद है। वाराणसी शहर बड़ी शिद्दत से अपने इस लाल को याद करता है। यहाँ के हवाई अड्डे का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश के खुजराव हवाई अड्डे से यहाँ के लिए सीधी उड़ान भी मिलती है।
2: हम वाराणसी के कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, पर इच्छा रखते हैं कि अगर आपने वाराणसी न देखा हो तो एक बार यहाँ जरूर जाएं।
4: बिल्कुल श्रोताओं, अब वाराणसी की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह आपको फिर ले चलेंगे किसी दूसरे नगर की यात्रा पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और प्रस्तुत किया था प्रमोद शर्मा और
2: कंचन राजानी ने।
4: सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रेम पत्र, एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर मन में मीठी तरंगे दौड़ पड़ती हैं। ऐसा लगता है मानो सरगम के सातों सुर मन की वीणा पर एक साथ झनक उठे हों, जैसे बसंत ऋतु की कोयल ने तड़प कर कुहू भरी हो, जैसे पपीहे ने बादलों को आवाज दी हो, और जैसे सूखी धरती पर मेघ बरस पड़े।

जिन्हें प्रेम पत्र लिखना उनके लिए पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम होता है। वो गणित के कठिन से कठिन सवालों को चुटकियों में हल कर लेते हैं, पर दिल के कागज पर प्रेम की यह पहेली हल करने में मात खा जाते हैं। तो लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है एक ऐसे ही भोले सनम की दास्तान, जो प्रेम पत्र लिखने की ऐसी कोशिश करता है कि उसमें वो फंसता ही चला जाता है।

0: मुझसे प्यार है।
1: क्या बात है, आज मेम साहब का मिजाज बड़ा आशिकाना हो रहा है।
0: क्यों, क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ?
1: अरे नहीं, अभी तो हजार जाने तुम पे कुर्बान। एक बार बंद समर कर निकल जाओ कहीं ना, तो मनचलों के सीने पे सांप लौट जाए। और क्या?
0: नहीं नहीं, कुछ और का हो ना मेरी तारीफ में।
1: क्या सूझी थी मुझे जो मैंने आग में हाथ डाल।
0: क्या कहा, जरा जोर से कहना तो।
1: अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि अगर मांग पे सिंदूर न भरो तुम, तो न जाने कितने लड़के तुम्हें प्रेम पत्र लिखने के लिए कलम में स्याही के बजाय अपना लहू डाल दे।
0: सच? मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा, पर ये बताओ जी, आज तक तुमने क्यों नहीं लिखा मुझे कोई प्रेम पत्र?
1: क्या प्रेम पत्र? मैं? अरे जिंदगी में कभी जो काम नहीं किया वो काम मैं अब।
0: जिंदगी में शादी भी तो नहीं किया थे तुम? हर काम इंसान कभी ना कभी पहली बार ही करता है।
1: हाँ?
0: और सच पूछो तो ऐसे इंसान से लव लेटर पाने का मजा ही कुछ और है। उसके लव लेटर की भला क्या अहमियत, जो दुकान के कैश मेमो की तरह हमेशा ही काटता रहता है। हाँ जी, अब तो तुम्हें मेरे लिए एक प्रेम पत्र लिखना ही होगा। और वो जो खूबियां अभी अभी तुमने बताई थी ना मेरी, उनकी लिस्ट और बढ़ानी होगी।
1: मगर मेम साहब, ऐसे कैसे लिखा जा सकता है प्रेम पत्र? इसके लिए जुदाई होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए, मन में कसक होनी चाहिए, पर आप तो हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहती हैं। ऐसे में वो सेंटीमेंट्स कहां से लाऊं मैं?
0: तो ठीक है जी, उसका भी इंतजाम किए देती हूँ मैं। रिंकू को लेकर मायके चली जाती हूँ।
1: क्या?
0: और क्या, फिर जब आप प्रेम पत्र लिखकर गुहार लगाएंगे ना, तभी लौटूंगी मैं। पपीहे की तरह प्यू प्यू करना, तभी झलक दिखलाएगी आपकी ये सावन की घटा।
1: अरे अरे, ऐसा जुल्म ना करिए श्रीमती जी। लीजिए, मैं आपके जाए बिना ही आपको प्रेम पत्र लिख देता हूँ। लिख देता हूँ कि मुझे आपसे बेहद बे इंतहा मोहब्बत है। हाँ, मुझे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। और ये लीजिए मेरी सिग्नेचर, नीरज वशिष्ठ। बिल्कुल पक्की रसीद है ये। अब तो मैटर सॉल्व हो गया ना।
0: वाह रे मेरे कारोबारी सनम, और वाह रे आपका प्रेम पत्र, जैसे किसी कंपनी का वारंटी कार्ड भर रहे हो। अरे दिल की डीलिंग बिजनेस की तरह नहीं की जाती है। जब आप सच्चे दिल से पूरी फीलिंग के साथ लिखेंगे ना, तभी ये कस्टमर आपकी बात पर यकीन करेगा। और ये फीलिंग मैं आपको देकर ही मानूंगी। अरे मैके की जर्नी अब मेरी फाइनल है। कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट इसमें अब दखल नहीं कर सकता है।
1: हे भगवान, आज सुबह सुबह किस गलत गली में घुस गया। त्रिया हट ने तो दशरथ की भी मिट्टी पलीत कर दी थी यार। त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु, इस मुसीबत से बाहर निकालो।
2: तो श्रोताओं, इस तरह से नीरज की धर्म पत्नी रितु त्रिया हट कर बैठती है कि उसका पति उसे प्रेम पत्र लिखे। शादी के 5 साल गुजर चुके हैं। पहाड़ी झरने की तरह गरजता प्यार तूफानी दौर से गुजर चुका है, और अब तो नदी सागर में समा चुकी है, जहां का पानी शांत व ठहरा हुआ है। रितु इस पानी को पहाड़ पर चढ़ाना चाहती है। नीरज की हालत खराब है, रितु उलाहने देती है, नीरज धीरज का परिचय देता है। एक तरफ तलवार थी तो दूसरी तरफ ढाल। अब सुनिए आगे क्या होता है उन दोनों की दास्तान।
0: सुनो जी, मम्मी का फोन आया है।
1: क्या?
0: उनका बीपी है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
1: अरे,
0: बोली है कि जल्दी आ जाओ।
1: क्या यार, अभी हाल तक तो सब ठीक था, और अब यकायक
0: ये। अरे यकायक ही तो सब होता है पति देव। अब देखो, यकायक ही मुझे मायके भी जाना पड़ेगा, पर मेरे पीछे मेरी उस ख्वाहिश का ध्यान जरूर रखना पति देव। नहीं तो अब मायका ही होगा मेरा परमानेंट ठिकाना। फिर ना कहना कि
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा जुल्म ना करो मेरी जान मुझ पर। आपके बिना तो मुझे एक पल भी पहाड़ लगता है यार। आप कहती हैं कि
0: डिसीजन फाइनल है, जाना तो होगा ही, पर वापसी आप पर डिपेंड करती है।
1: कैसे?
0: जितनी जल्दी आपका प्रेम पत्र मुझे मिलेगा उतनी ही जल्दी मेरी रवानगी डलेगी वहाँ से।
1: क्या टेलीफोन से काम नहीं चलेगा?
0: हरगिज नहीं, रिटर्न एविडेंस बर्बल से ज्यादा पावरफुल होता है।
1: SMS?
0: बिल्कुल नहीं, मुझे डिटेल्ड ब्यौरा चाहिए। मेरे बिना कैसा लगा तुम्हें, कैसे तुम्हारे दिन गुजरे, कैसी रातें गुजरी, कैसी नींद आई, और कितना याद किया तुमने मुझे। तुम्हारे पूरे एहसास चाहिए मुझे, मेरी यही वापसी की टिकट होंगे, समझे?
1: इतना कुछ लिखना होगा प्रेम पत्र में? ब्योरे वार दास्तान, वेरी डिफिकल्ट, हॉरिबल।
0: ताजमहल बनवाने से ज्यादा तो मुश्किल नहीं है।
1: अरे ताजमहल कोई शाहजहां ने अपने हाथों से थोड़े ही बनाया था यार, बादशाह सलामत थे, वो हुक्म दे दिया और बन गया ताजमहल। तुम कहो तो मैं भी किसी एक्सपर्ट से लेटर।
0: हे राम, कैसा जमाना आ गया है अब, प्रेम पत्र भी लिखवाने के लिए लोग एक्सपर्ट के पास जाना चाहते हैं। शेरो शायरी तो फीस चुकाकर मिल ही जाती है, और अब ये लव लेटर भी। वाह जी वाह। पर सुनो जी, मैं बता देती हूँ, कोई भी चीटिंग नहीं चलेगी इस मामले में। अगर ब्लैक लिस्टेड हो गए ना आप, तो टेंडर भी भरने को नहीं मिलेगा। काम पूरा करने की बात ही छोड़िए। सुनो जी, अपना ख्याल रखना। और हाँ, सुबह जल्दी उठकर घूमने जरूर जाना, ताजी हवा खाना, पर नजर नीचे रखना। हाँ, और सुनो, नौकरानी को मैंने मना कर दिया है, जवान जहान है, क्या ठिकाना उसका।
1: क्या? अब घर का झाड़ू पोछा भी मैं करूंगा क्या, क्या, क्या, क्या?
0: अपनी इज्जत की हिफाजत करना अच्छे पति का धर्म है।
1: अरे यार, तुम्हारे अलावा मेरी इज्जत को भला और किससे खतरा हो सकता है। एक मिनट, ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हो रहा है।
0: जा तो मैं रही हूँ जी, पर मुझे ना बड़ी रुलाई छूट रही है, मन कर रहा है कि उतर पड़ूं गाड़ी से। सच तुम्हारे बिना रहने का सोचकर ही जी घबराने लगता है।
1: अरे तो उतर पड़ो, इतना प्यार हमारी आंखों में उमड़ रहा है, इसके आगे भी प्रेम पत्र की जरूरत लगती है क्या तुम्हें?
0: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आज दिल से नहीं, दिमाग से काम लेने की जरूरत है। पक्का इरादा, कड़ा अनुशासन। रिंकू को भी मैं इसलिए साथ लेके जा रही हूँ जिससे तुम्हें तन्हाई शिद्दत से महसूस हो।
1: तुम औरतें तो यार इतनी दूर तक कैसे सोच लेती हो। बापरे, मैं तो सोच रहा था कि मेरा भार हल्का करने के लिए तुम रिंकू।
0: हाँ, और क्या, अरे भार हल्का ही तो हो रहा है तुम्हारा भाई, अकेले जन का काम रहेगा, चटपट निपटा लेना तुम। और फिर तन्हा बैठ कर लव लेटर लिखना, और जब वो लव लेटर पूरा हो जाए ना तो मुझे पोस्ट कर देना।
1: सफर में अपना ख्याल रखना, पहुंचते ही फोन करना।
3: पापा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।
0: गाड़ी तो छोड़ो, स्पीड बढ़ रही है, गाड़ी छोड़ो।
1: अरे बेटा, रिंकू मम्मी को तंग ना करना, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करना।
0: बाय
3: बाय
0: बाय।
2: रितु के जाने के बाद नीरज के एक दो दिन तो बड़ी मस्ती में गुजरे। जब चाहो खाओ, जब चाहो सो, जब चाहो उठो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। रितु होती तो कहती, यह ना करो, यह ना खाओ, अब टीवी बंद कर दो, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। कच्ची नींद में उठा देती और कहती, फ्रेश होकर टहलने निकलो। जिंदगी जैसे जेल मैनुअल पर चल रही थी, पर अब आजादी की हवा में सांस लेने का मौका मिला था। लेकिन नहीं, अजी अकेलेपन की आजादी डराने वाली थी। भला शमशान की शांति भी किसी को अच्छी लगती है? नीरज को आटे दाल का भाव याद आ रहा था। अब सुनिए आगे की दास्तान।
1: और चाय की पत्ती कहाँ रखी है? पानी उबला जा रहा है। ये औरतें भी ना जाने चीजें ना जाने कहाँ कहाँ रखती हैं। आया आया भाई आया, तुम्हें भी यार अभी बजना था। हेलो, अच्छा अब जाके फोन करने की फुर्सत मिली मैम साहब को। धन्य भाग मेरे जो आपको मेरी याद आई। क्या शेर? नहीं नहीं सवा शेर कहिए जनाब। क्या क्या कह रही हैं? यही काबिलियत में लव लेटर लिखने में भी? अरे क्या यार, मेरी अग्नि परीक्षा क्यों ले रही हैं पत्नी जी? हैं? नहीं मैं पार ना कर पाऊंगा इसे। क्या कहती हैं? उसके बिना आप नहीं आएंगे, करना ही पड़ेगा। अरे यार, हम पतियों के लिए तो होम मिनिस्ट्री ही सुप्रीम कोर्ट है, कोई मर्सी अपील भी नहीं होती इसके फैसले पर। ओके ठीक है ठीक है, करता हूँ यार करता हूँ। अच्छा अच्छा ओके, बाय बाय बाय।
2: ऋतु को गए हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे। नीरज समझ चुका था कि उसकी मोहम सी ऋतु अब आयरन लेडी बन चुकी है, जिसकी निगाह अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर थी, और वो लक्ष्य था प्रेम पत्र। प्रेम पत्र लिखना ही पड़ेगा, कोशिश करता है नीरज, और वो पूरा ब्योरा लिखने बैठ जाता है। आप भी सुनिए क्या लिखा उसने अपने प्रेम पत्र में।
1: मेरी प्राणेश्वरी, तुम्हें गए अभी 4 दिन ही हुए हैं। इन 4 दिनों में ही मुझे तुम्हारी कीमत पता लग गई। तुम्हारे रखे सामान किचन में मिलते ही नहीं थे, अब जाकर कुछ कुछ उनकी लोकेशन समझ में आने लगी है। कल की बात है, दाल फ्राई करते हुए मेरे चेहरे पर घी का छींटा पड़ गया। रोटियां नक्शों की तरह बनती हैं, फूलती भी नहीं, कच्ची रह जाती हैं। नतीजा ये होता है कि ठीक से पचती भी नहीं, खट्टी डकारें आती रहती हैं। हाँ, तुम्हारे पीछे एक बड़ा नुकसान हो गया। कल नमक ढूंढ रहा था तो अचार की भरनी गिरकर टूट गई। कितनी मेहनत से डाला था तुमने। अदरक तुमने फ्रिज में ऐसे रखे थे जैसे कोई लॉकर में ब्लैक मनी रखता है, और अंत में इनकम टैक्स वालों की तरह रेड करके निकालना पड़ा मुझे। गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, इसलिए कोने वाली होटल से एक खाना मुकर्रर कर दिया है। दुआ करना सेहत सलामत रहे। सब्जी वालों को पता नहीं कैसे टैकल करती थी तू, मुझे तो सब दिन दहाड़े लूट लेते हैं। तुम होती तो ऐसा ना हो। छत पर कपड़े फैलाए थे, क्लिप लगाना भूल गया था, सब उड़ गए। सच तुम्हारे बिना समझ में आता है कि बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। अरे हाँ, तुम्हारी मम्मी का क्या हाल है? अब तो उनका बीपी नॉर्मल होगा। रिंकू शैतानी तो नहीं करती? हाँ, तो ये रहा तुम्हारा रिटर्न टिकट। तुम्हारी शर्त पूरी हो चुकी है, अब लौट आओ। तुम्हारा पत्नी पलायन पति।
2: कुछ ही दिनों के बाद नीरज को अपने प्रेम पत्र का जवाब मिल गया। आंखों में खुशी और दिल में उत्साह था। इकलौती पत्नी का पहला पहला पत्र था। खोलकर पढ़ा उसने।
0: वाह रे मेरे भोले सनम, आपके लव लेटर ने तो बड़ा ही मायूस किया। वादा वफा न रहा। यह आपने लव लेटर लिखा है कि डायरी? मैंने तो दिल का हाल बयान करने के लिए लिखा था, और आपने गृहस्थी का हाल बयान कर दिया। ये लव लेटर नहीं, ये रोज नामचा है। क्या मेरी कीमत बस इतनी ही है कि मैं आपकी गृहस्थी चलाती रहूं? सोचा था कि जुदाई में आप मजनू बन जाएंगे, पर आप तो नहीं। नहीं नहीं, ये रिटर्न टिकट वैलिड नहीं है। इसके सहारे सफर करना बे टिकट सफर करने जैसा होगा। एक बार आप फिर कोशिश कीजिए। मम्मी का बीपी पहले भी ठीक था, हाँ अब जरूर बढ़ गया है। सोचती हैं कि मैं लड़कर आई हूं आपसे। आप सेहत का ख्याल रखिएगा और इज्जत का भी। आपके लव लेटर के इंतजार में, आपके रितु।
2: प्रेम पत्र को पढ़कर के नीरज की हवा खराब हो गई। जिसे ब्रह्मास्त्र समझकर चलाया था वो तो लकड़ी का तीर निकला। अब क्या करे, वह इस कला में माहिर न था। सोचा क्यों ना अपने दोस्त अशोक की मदद ली जाए। आखिर दोस्त वही होता है ना जो मुसीबत में काम आए। तो नीरज पहुंच गया अशोक के घर उससे सलाह लेने।
4: कौन? अरे नीरज तू, भाई सुबह सुबह यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए?
1: अरे यार भीतर तो आने थे पहले कि दरवाजे पर ही पूरा इंट्रोगेशन कर डालेगा।
4: आना आना बैठ, क्या लेगा तू? अरे श्यामा जरा दो कप चाय तो पिलाना गर्मा गर्म।
1: यार चाय वाय तो बनती रहेगी पर इस वक्त मैं बड़ी मुसीबत में हूँ।
4: क्या हो गया तुझे कि सांड को तूने लाल कपड़ा दिखा दिया जो जान बचा कर यहाँ भागा है?
1: अरे यार सांड से पीछा छुड़ाना तो फिर भी आसान है पर ये प्रेम पत्र।
4: प्रेम पत्र यानी कि लव लेटर? वाह यार किसकी मती मारी गई है जो तुझ जैसे शादीशुदा को लव लेटर लिखेगा?
1: भाई मती किसी और की नहीं, मेरी खराब हो रही है। समझ में नहीं आता कि कैसे प्रेम पत्र लिखूं मैं, जिस काम का कोई तजुर्बा ही नहीं है वो आखिर यार मैं।
4: वाह भाई वाह, तो ये बात है। भाभी कहाँ है जो तू?
1: वो मायके गई हुई है बाल गोपाल को लेकर।
4: और तू मौके का खूब फायदा उठा रहा है, प्रेम पत्र लिख रहा है?
1: नहीं नहीं,
4: अब जब प्रेम का पत्र है तो प्रेमिका भी तो होगी ना कहीं ना कहीं। बच्चू आने दे भाभी को, फिर देख मैं किस तरह।
5: लीजिए भाई साहब चाय लीजिए।
4: खैर ये ले, पहले चाय पी ले तू, फिर तुझे पानी पिलाता हूँ जीवा।
1: अरे कोई प्रेमिका प्रेमिका नहीं है यार तो? तेरी भाभी को ही प्रेमिका बनने का जुनून सवार हुआ है।
4: अच्छा?
1: हाँ वो बोलती है मुझे प्रेम पत्र लिखो तब लौटूंगी मैं। अब तू ही बता यार मैं क्या करूँ।
4: तो ये बात है, पहले क्यों नहीं बताया?
1: तूने बताने कब दिया? एकदम से राशन पानी लेकर चढ़ बैठा मेरे ऊपर।
4: खैर खैर बोल दोस्त, क्या मदद मांगता है तू?
1: यार एक चिट्ठी लिखी थी उसे, जवाब में लिखती है फीलिंग के साथ लेटर लिखो तब लौटूंगी। अब तू ही बता के।
4: ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम कर।
1: हाँ
4: एक हिट आइडिया देता हूँ तुझे।
1: बता यार।
4: कुछ फिल्में देख डाल
1: है?
4: कुछ शेर और शायरी की किताबें पढ़ डाल।
1: हाँ
4: किसी खूबसूरत लड़की का चेहरा रख आंखों के सामने।
1: हाँ।
4: क्योंकि जब खूबसूरती सामने होगी तो अल्फाज खुद ब खुद निकलने लगेंगे। बस तैयार हो जाएगा तेरा प्रेम पत्र।
1: थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक्स। अब बाद में मिलता हूँ तुझसे।
4: पहले चाय तो खत्म कर ले भाई।
1: तो वो तू पी लेना। बाय एंड अगेन थैंक यू यार।
4: बाय बाय।
2: नीरज के हाथ फार्मूला लग चुका था, बस उसका इस्तेमाल करने की कला आनी चाहिए थी। अशोक का एक एक शब्द उसने पकड़ा। अशोक ने कहा था कि फिल्में देखो, शेर व शायरी की किताबें पढ़ो, खूबसूरत लड़की का चेहरा अपनी आंखों के सामने रखो। अब उसने कई फिल्में देख डाली। नई फिल्में उसको जमी नहीं तो उसने पुरानी फिल्मों का सहारा लिया। शेर व शायरी की किताबें भी कई पढ़ी, पर बेचारा खूबसूरत लड़की कहां से लाता? अकल काम नहीं कर रही थी। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। मार्केट जाकर के एक खूबसूरत सा पोस्टर उठा लाया और दीवार पर चस्पा कर दिया। साथ ही एक सुगंधित लेटर हेड भी ले आया जिसके एक कोने पर दो दिल बने हुए थे और दिल में एक तीर चुभा हुआ था। सारी सामग्री इकट्ठी करके अब वो लव लेटर लिखता है। आइए आप भी सुने उसका लव लेटर।
1: हा हा हा हा, ये पोस्टर भी लग गया। आप ठीक है। इसकी खूबसूरत आंखों में डूबकर, गुलाब की कली जैसे इसके होठों को देखकर, खिलती धूप सी इसकी मुस्कुराहट में नहाकर, अब लव लेटर लिखने की फीलिंग पैदा की जा सकती है भीतर से। एक काम और करता हूँ, बाजार से रंगीन लेटर पैड और खरीद कर लाता हूँ, वही जिस पर तीर से बिंधे हुए दिल बने रहते हैं, जिससे भीनी भीनी खुशबू आती रहती है, तब प्यार का एहसास और भी घना हो सकेगा। बिल्कुल कंफर्म रिटर्न टिकट बनेगा तब, कोई वेटिंग शेटिंग नहीं। अब हो गया प्रणेश्वरी तुम्हारा लव लेटर तैयार, एक बार पढ़ तो लूं कैसी फीलिंग आती है। प्रिय प्राणेश्वरी, तुम्हें जाने आरजू कहूं या आरजू ये जहां कहूं, तुम ही बता दो मुझे, मैं तुम्हें क्या कहूं। तुम्हारी झील सी गहरी आंखों में डूब जाने को मन करता है, जब तुम हंसती हो तो ऐसा लगता है मानो कोई कानों में मीठी मीठी मिश्री खोल रहा हो, जब तुम कुछ बोलती हो तो दिल में सितार बजता है, जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे गाल में जो डिंपल पड़ता है वो तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। तुम्हारे बिना ना नींद आती है ना चैन आता है, दिल तुमसे मिलने को बेचैन हो उठता है। चांद में तुम नजर आती हो, सितारों में तुम नजर आती हो, रोटी में तुम, खाने की हर बोटी में तुम, जिस शक्ल को भी देखता हूं बस तुम्हारी ही शक्ल दिखती है, जुदाई के पल अब बर्दाश्त नहीं होते। अब तुम ही बताओ कब मिलेंगे हम, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा प्राणों से भी प्यारा। आ रही है, आ रही है फीलिंग, आ रही है, अब एक बार अशोक को और दिखला देता हूं। चलो
4: ये क्या लिखा है रे बुद्धू तूने, ऐसे भी कहीं प्रेम पत्र लिखते हैं है? अरे मैंने तुझे फिल्में देखने के लिए कहा था, फिल्मों के गाने और डायलॉग चुराने के लिए नहीं। औरतें फौरन ताड़ लेती हैं कि बनाया जा रहा है उन्हें, अरे नेचुरल एक्सप्रेशन होना चाहिए इसमें।
1: यार नेचुरल एक्सप्रेशन ही बनता मुझसे तो तेरी मदद क्यों लेता। मानता हूं कि सब कुछ अननेचुरल है, पर करना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरी भाभी का कोप भवन टूटने वाला नहीं है।
4: अच्छा यार एक काम कर तू,
1: बोल।
4: अभी तो रहने ही दे तू उसे, मैं जरा फुर्सत निकाल कर आता हूँ तेरे पास, फिर मैं खुद बैठ कर लिखवा दूंगा तुझे। उसे भाभी को भेजना तू, पर ये जो एंटेंट लिखा है ना तूने,
1: हाँ।
4: इसे तो रहने ही दे भगवान के लिए। लव लेटर लिखे, अरे भाभी वापस तो नहीं आएगी, उल्टे तुझे नौटंकी की बात समझेगी।
1: आता हूँ भाई, आता हूँ। कौन टपक पड़ा यार?
6: अरे तुम, तुम व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। अरे तुमने तो ठानी थी कि
0: ठानी तो बहुत जमकर थी, पर क्या करूं पतिदेव, आप पर तरस आ गया, और सच कहूं तो आपके बिना रह ही नहीं सकती हूं मैं, सोचना चाहिए था मुझे। आप जैसे भोले भाले आदमी भला क्या जाने प्रेम पत्र लिखना। सतयुग के पुरुष ठहरे आप, आज के छोरों जैसी लंपटता आप में कहाँ है भला।
1: क्या बात है। आपने अपना प्रण तोड़ दिया इस नाचीज के लिए।
0: मैं तो प्राण दे दूं पति देव, प्रण तो कुछ भी नहीं आपके लिए।
1: थैंक गॉड।
2: नीरज मन ही मन खुश था, नीरज की मुसीबत टल चुकी थी, पत्नी बिना प्रेम पत्र के ही मान गई थी, खुशी खुशी दफ्तर गया, पर जब वापस लौटा तो घर में मातम फैला हुआ था। प्राण देने का वादा करने वाली पत्नी प्राण लेने पर उतारू थी, आंखों से प्रेम की धारा नहीं आंसुओं का सैलाब बह रहा था, मुख से शहद के भीगे शब्द नहीं बल्कि तोप के गोले चल रहे थे। आखिर ऐसा क्या हो गया था दिन भर में, आप भी सुनिए।
0: वाह रे मेरे भोले सनम, अच्छी वफा निभाई तुमने। तुम भी आखिर बाकियों की तरह ही निकले ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मुंह में राम बगल में छुरी, रंगोसी और।
1: अरे काहे मुहावरेदार गालियां दे रही हो भाई, साफ साफ बताओ कि क्या हो गया। सुबह सुबह की स्वच्छ ऋतु अचानक इतनी गर्जन तर्जन क्यों कर रही है?
0: अरे अपनी किस्मत को रो रही हूँ और क्या।
1: क्या?
0: अरे क्या समझा था तुम्हें, और तुम क्या निकले? कहते थे प्रेम पत्र लिखना ही नहीं आता, और यहाँ तो पूरा प्रेम सागर ही उमड़ा जा रहा है।
1: क्या कह रही हो?
0: ये देखो अपना कच्चा चिट्ठा, हाथ कंगन को आरसी क्या? अरे मेरे पीछे इश्क फरमा रहे थे तुम।
1: क्या कह रही हो?
0: सींग कटा कर बछड़े बन रहे थे तुम, तुम्हारा पाप तुम्हारे सामने है।
1: पाप? ओहो, तो ये बात है। अरे यार ये पाप नहीं, मेरा बेवकूफी नामा है बेगम। ये आपके लिए ही लिखा था मैंने, किसी और के लिए नहीं। आपके सर की कसम।
0: मेरे सर की कसम ना खाओ जी, खाना है तो उसी की कसम खाओ जो तुम्हारे सपनों की रानी है।
1: अरे तुम
0: उसकी इबारत पढ़ो ना तुम, खाने में तुम, खाने की हर बोटी में तुम। मुझे पागल समझा है क्या? 15 दिन बाद लौट कर आ रही हूँ मैं, और मैं मान लूं कि ये लाइन तुमने मेरे लिए लिखी है?
1: अरे हाँ जी, 100% ही तुम्हारे लिए लिखी थी यार। इमोशन पैदा करने के चक्कर में ये बेवकूफी हुई थी मेरे से। हाँ, दरअसल एक दिन पहले ही सपने में आई थी तो।
0: बहुत अच्छे। हाँ, और ये तुम्हारी झील सी आंखों में डूब जाने को मन करता है, और थोड़ी सी भी गैरत बची हो ना तुम्हें तो तुम तालाब में जाकर डूब मरो, या मुझे डुबो दो और फिर मजे से रहना उसके साथ में।
1: अरे यार धर्म पत्नी जी, ये लाइन तो फिल्मों के चक्कर में आ गई यार। सच मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद नहीं बनाई है इसे।
0: और ये आगे भी तो देखो।
1: अरे
0: रहन दो, बस बस। अब एक झूठ छुपाने के चक्कर में 1000 झूठ मत बोलो जी, फंसते ही चले जाओगे तुम।
1: अरे यार कैसे तुम्हें समझाऊं प्राणेश्वरी, प्रेम पत्र लिखते समय ये सब झूठ सच लिखना पड़ता है यार, नहीं तो प्रेम पत्र का वजूद ही खत्म हो जाएगा दुनिया से। सब सच लिख दिया तो प्रेमिका पत्थर फेंक कर मारेगी अपने प्रेमी को।
0: अच्छा तुमने कहा और मैंने मान लिया है।
1: हाँ हाँ, मान भी जाओ मेरी बात यार, ये लेटर मैंने तुम्हारे लिए ही लिखा था, तुम्हारे लिए ही लिखा था।
0: तुम मुझे बरगलाओ नहीं। और ये देखो, ये तुम्हारा, ये क्या लिखा तुमने? जब तुम हंसती हो ना तो तुम्हारे गाल पर जो डिंपल पड़ता है ना, तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। तुम ही बताओ मेरी कचोरी जैसे गालों में कब डिंपल पड़ता है।
1: अरे यार,
0: और आगे ये देखो क्या लिखा है। चांद में तुम, सितारों में तुम, रोटी में तुम, आईने में तुम, हर शक्ल में तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है।
1: अरे क्या
0: बड़ी आंखें सेकी जा रही थी मेरे पीछे।
1: अरे यार
0: इश्क का भूत तो ये पोस्टर भी बयान कर रहा है, जिसे आंखें सेकने के लिए
1: तुमने। अरे यार इस पोस्टर में भी तो तुम ही हो जाने मन, जमीन पर आसमां में तुम ही हो जाने मन।
0: ओहो बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं मेरे सरकार, कहां तो प्रेम पत्र लिखने के नाम पर हाथ पांव ठंडे पड़े जा रहे थे, और कहां पूरे प्रेम कवि ही बन चुके हैं। किसका कमाल है ये बताओ मुझे? पर मुझे क्या, मैं तो वापस जा रही हूँ। नादान थी मैं जो तुम्हें भोला समझ बैठी। अरे तुम तो भेड़ की खाल में भेड़िया हो।
1: अरे जाने मन क्या।
0: अच्छा हुआ जो तुम्हारा असली रूप दिख गया, नहीं तो जिंदगी भर में इसी मुगालते में रहती कि मैं।
1: ऐसा जुल्म ना करो जी। तुम सुनो तो यार, एक काम करो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता?
0: बिल्कुल नहीं।
1: तो तुम अशोक को बुला लो, तुम खुद तस्दीक कर लो अपने हिसाब से, जैसा तुम चाहो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा बीच में, चुपचाप बैठा रहूंगा यार, प्लीज।
4: क्या हुआ भाभी, इतनी इमरजेंसी में आपने क्यों बुला लिया मुझे?
0: क्या कहूं भैया, कुछ दिनों के लिए मैं मायके क्या चली गई, इन्हें तो सिंह ही निकल आए। अरे आशिकी करना शुरू कर दिया, एक बेटी के बाप हैं पर हरकत, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। तुम खुद ही देखो कैसा बेहुदा लव लेटर लिखा है इन्होंने अपनी उसको। अरे वो तो यकायक में आ गई और ये दे नहीं पाए उस कलमुही को, नहीं तो
4: ओहो तो ये बात है। अरे ये बुद्धू है भाभी, आपको वापस बुलाने के लिए न जाने क्या क्या बेवकूफियां करता रहा है ये। मुझे मालूम है इस लव लेटर के बारे में, मैंने ही तो कहा था इससे कि इसे पोस्ट ना करे। फंस गया बेचारा। अरे पोस्ट कर दिया होता आपको तो कम से कम आज आप इस बेचारे पर शक तो ना कर रही होती।
0: सच कह रहे हैं भैया आप, ये भी यही कह रहे थे पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ।
4: 100% सच कह रहा हूँ भाभी, आप चाहें तो श्यामा से कंफर्म कर लीजिए पूरा मैटर, उसे बताया है मैंने।
0: नहीं नहीं अब इसकी जरूरत नहीं है, सचमुच ये भोले सनम ही है। बेचारे इतना जुल्म सहते रहे मेरा, और मुझे माफ कर दो मेरे भोले सनम, माफ कर दो।
2: तो श्रोताओं ये था हमारा हास्य नाटक लव लेटर, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
7: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
8: MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: कुछ यादें उन्हें भी कर लो।
2: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जो लौट के घर न आए।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे पराग चौधरी का गायन, और उसके बाद प्रस्तुत किया जाएगा बांसुरी वादन अजय प्रसन्ना का। तो सबसे पहले लीजिए पेश है गायन पराग चौधरी का।

श्रोताओं, कार्यक्रम भारत भारती में अभी आपने सुना गायन पराग चौधरी का, और उसके बाद लीजिए अब प्रस्तुत है अजय प्रसन्ना का बांसुरी वादन।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत भारती, जिसमें आज हमने आपको सुनवाया पराग चौधरी का गायन। उसके बाद आपने आनंद लिया बांसुरी वादन का, जिसे पेश किया अजय प्रसन्ना ने। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: मैं हूं पवन सिन्हा और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आज़ाद हिंद पर। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत को प्रणाम कीजिए, यह है तो हम हैं। हम जिन्हें पूजते हैं वो भी इसी भारत माता की संतान है। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नाइनटी पॉइंट एट मेगाहर्ट्स पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 191 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुणी। देवता हैं अपतृण, सूर्या। छंद है अनुष्टुप, महापंक्ति और महाब्रहती।
4: उदपप्त दसौ सूर्यः पुरु विश्वानि जूर्वन् आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टः। अनेक अदृश्य जंतुओं को विनष्ट करते हुए ये सर्वद्रष्टा सूर्यदेव ऊपर उठते हैं। इनके उदित होते ही सभी अनिष्टकारी विषधारी जीव छिप जाते हैं। सूर्ये विषमा सजामि धृति सुरावतो गृहे सो चिन्नु न मराति नो वयम् मरा मारे अस्य योजनम हरिष्ठा मधुत्वा मधुला चकार। आसव को जिस प्रकार पात्र में रखते हैं उसी प्रकार हम सूर्य किरणों में विष को रखते हैं। इस विष से सूर्यदेव प्रभावित नहीं होते तथा हमारे लिए विष निवारक सिद्ध होते हैं। विश्वारूढ़ सूर्यदेव इस विष का निवारण करते हैं तथा मधुला विद्या इस विष को मृत्यु निवारक अमृत बनाती है। इयत्तिका शकुंतिका सका जघास ते विषम सो चिन्नु न मराति नो वयम् मरा मारे अस्य योजनम हरिष्ठा मधुत्वा मधुला चकार। कपिंजली नामक चिड़िया तेरे विष को खाए जिससे वह न मरे तथा हमारे विष का भी निवारण हो और मधुला शक्ति इस विष के लिए मृत्यु निवारक अमृत सिद्ध हो। त्रिह सप्त विषपुलिंगिका विषस्य पुष्यमक्षन ताश्चिन्नु न मरन्ति नो वयम् मरा मारे अस्य योजनम् हरिष्ठा मधुत्वा मधुला चकार। 21 प्रकार की ऐसी छोटी छोटी चिड़ियाएं हैं जो विष के फलों को खा जाती हैं पर फिर भी प्रभावित नहीं होती। इसी प्रकार हम भी विष से मृत्यु रहित हों। अश्वारूढ़ सूर्य ने इस विष का निवारण कर दिया है। मधुला विधा विष को अमृत रूप में बदल देती है। नवानाम नवतीनाम विषस्य रोपुषीणाम सर्वासामग्रभम नामारे अस्य योजनम हरिष्ठा मधुत्वा मधुला चकार। 99 प्रकार की औषधियां हैं जो विषों की निवारक हैं, उन सभी को हम जानते हैं। उनके उपयोग से हर प्रकार के विष का निवारण होता है। अश्वारूढ़ सूर्य इसका निवारण करे तथा मधुला शक्ति इसे अमृत बनाए। त्रिसप्त मयूर यह सप्त स्वसारो अग्रुवह तास्ते विषम वि जभ्रिर उदकम कुंभिनीरिव। हे विष पीड़ित प्राणी, जिस प्रकार घड़ों में स्त्रियां जल ले जाती हैं, उसी प्रकार 21 मोरनियां और भगिनी रूपा 7 नदियां आपके विष का निवारण करें। इयत्तकः कुशुंभ कस्तकम् भिनद्म यश्मना ततो विषम प्रवावृते पराचीरनु संवतः। इतना छोटा सा यह विषयुक्त कीट है, ऐसे हमारी ओर आने वाले छोटे कीट को हम पत्थर से मार डालते हैं, उसका विष अन्य दिशाओं में चला जाए। कुशुंभ कस्तद्ब्रवीद गिरेह प्रवर्तमानकः वृश्चिकस्यारसं विषमरसं वृश्चिक ते विषम। पहाड़ से आने वाले नेवले ने यह कहा कि बिच्छू का विष प्रभावहीन है। हे बिच्छू, तुम्हारे विष में प्रभाव नहीं है।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 191 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

मूर्खों का संग न करना, विद्वानों का संग करना और पूजनीय पुरुषों का सत्कार करना उत्तम और शुभकारक कर्म है।

ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं, उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहां भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है।

हम ईश्वर की भक्ति ईश्वर को पाने के लिए करते हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से मिलने के लिए चलना, और यदि हम ईश्वर को पा लिए तो इसी को मोक्ष कहते हैं।

निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का कार्यक्रम सांदगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारत माँ की संताने हम शीश झुकाना क्या जाने, धरा उठा लें गगन झुका दें, उठें चलें सीना ताने। हम ही कृष्ण का चक्र सुदर्शन, हम अर्जुन के तीर हैं, ध्रुव प्रहलाद भरत के भाई, हम अभिमन्यु वीर हैं। हम हंसते हैं तूफानों में, रोना धोना क्या जाने, भारत माँ की संताने हम शीश झुकाना क्या जाने, शीश झुकाना क्या जाने। रणक्षेत्र में हमारे वीर सैनिकों का ये साहस हमारे विजय की आश्वस्ति है। वो सैनिक देश ही जिनका धर्म है, देश ही जिनका कर्म, देश ही जिनका विचार, देश ही जिनका व्यवहार है। दुश्मन के सामने जो एक प्रबल हुंकार है, एक गरजती हुई ललकार है। अपनी सेना के शौर्य को नमन करते हुए वतन का राग कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल ए बी तारापोर की। सन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध का एक ऐसा नाम जिसने अपने शौर्य, पराक्रम और कुशल नेतृत्व से इतिहास लिख दिया। पाकिस्तान के सियालकोट सेक्टर के फिल्लौरा में पाकिस्तानी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनकी टुकड़ी ने जिस तरह से पाकिस्तानी सेना के 60 टैंकों को तबाह किया था, वो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। इस युद्ध में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय देते हुए उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 18 अगस्त सन 1923 को मुंबई में जन्मे एवी तारापोर का पूरा नाम आर्देशिर बुरजोर जी तारापोर था। उनके पूर्वज छत्रपति शिवाजी की सेना का हिस्सा थे। शिवाजी की सेना का नेतृत्व करने के कारण उन्हें 100 गांवों से सम्मानित किया गया था। इन्हीं में तारापोर मुख्य गांव था, जहां से उनके परिवार का नाम आता है। आने वाले समय में उनके दादाजी हैदराबाद चले गए और हैदराबाद के निजाम के उत्पाद शुल्क विभाग में काम करने लगे। आर्देशिर बुरजोर जी बचपन से ही अत्यंत वीर थे, जिसका परिचय उन्होंने बचपन में ही अपनी बहन को गाय के हमले से बचाकर दे दिया था। स्कूल में शिक्षा के दौरान वो अपने शिक्षकों के अत्यंत स्नेहपात्र थे। पढ़ाई, मुक्केबाजी, तैराकी, टेनिस और क्रिकेट, हर क्षेत्र में वो अव्वल रहा करते। माता पिता चाहते थे कि उनका होनहार बेटा परिवार का नाम रोशन करे। इसके लिए उन्होंने बालक आर्देशिर को पुणे के एक बोर्डिंग स्कूल में शिक्षा के लिए भेज दिया। यहीं से उनके भीतर सेना में भर्ती होकर देश के लिए कुछ विशेष करने का सपना जागा।

आर्देशिर बुरजोरजी तारापोर ने सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी शुरू कर दी। कुछ ही समय में उनकी मेहनत रंग लाई। सन 1942 में वो हैदराबाद सेना में शामिल हुए। इस तरह हैदराबाद सेना की 7वीं इन्फेंट्री से उनका सैन्य जीवन आरंभ हुआ। लेकिन पैदल सेना में शामिल होने के कारण वो असंतुष्ट थे। दरअसल वो एक बख्तरबंद रेजिमेंट में शामिल होकर रणभूमि में अपने शौर्य का प्रदर्शन करना चाहते थे। उनकी बटालियन के निरीक्षण के दौरान हुई एक घटना में उनकी वीरता से हैदराबाद राज्य बलों के कमांडर इन चीफ उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्हें अपने कार्यालय बुलाकर बधाई दी। तभी आर्देशिर बुरजोरजी ने उनसे बख्तरबंद रेजिमेंट में अपने स्थानांतरण का अनुरोध किया। अब उन्हें हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर में स्थानांतरित कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिम एशिया में उन्होंने वीरता और युद्ध कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनकी गिनती हैदराबाद के चुनिंदा सैन्य अधिकारियों में होने लगी। आजादी के बाद हैदराबाद का निजाम भारत में शामिल नहीं होना चाहता था। वो भारत के बीच अपना स्वतंत्र देश चाहता था। जब तमाम कोशिशों के बाद भी बात नहीं बनी, तब सितंबर 1948 में भारतीय सेना द्वारा एक गुप्त ऑपरेशन ऑपरेशन पोलो को अंजाम दिया गया। निजाम को अपदस्थ कर हैदराबाद को भारत संघ में मिला दिया गया। भारत संघ में हैदराबाद के विलय के बाद अंततः हैदराबाद की सेना भी भारतीय सेना में मिल गई। कुछ समय बाद आर्देशिर बुरजोरजी तारापोर को पूना हॉर्स में स्थानांतरित कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर एक दीर्घकालिक संघर्ष रहा है, जिसकी जड़ें भारत विभाजन की ऐतिहासिक घटना से जुड़ी हुई हैं, और तब से लेकर आज तक अनेक बार युद्धों सहित और भी संघर्ष छिड़े हैं। 1947-48 के बाद 1965 में भी इसी मुद्दे पर भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ा था, जिसे दूसरे कश्मीर युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। पाकिस्तान की निगाहें हमेशा ही कश्मीर पर रही हैं। सन 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध को उसने बारीकी से देखा था। पाकिस्तान ने सोचा कि अभी अभी एक युद्ध से निवृत्त हुए देश की स्थिति इस समय कमजोर होगी। अगर ऐसे समय में वो भारत पर हमला करता है तो शायद वो अपने मंसूबे में सफल हो सके। इसी उद्देश्य से पाकिस्तान ने सन 1965 में भारत पर एक बार फिर हमले की योजना बनाई, लेकिन ये योजना पाकिस्तान को उल्टी ही पड़ गई। 1965 में हुआ ये वही युद्ध है जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अगुवाई में भारतीय सेना ने लाहौर के बाहरी इलाके तक पहुंचकर शहर को घेर लिया था। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम की घोषणा की गई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। इस युद्ध से पहले ही एबी तारापोर की पदोन्नति हो चुकी थी और वो लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर इस युद्ध में शामिल हुए।

अगस्त 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध आरंभ हो चुका था। दुश्मन सेना 2,60,000 इन्फेंट्री, 280 विमान और 756 टैंकों के साथ थी। वहीं भारत 7,00,000 जवानों की इन्फेंट्री, 700 विमान और 720 टैंक के साथ था। लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापोर को इस युद्ध में कमांडिंग ऑफिसर बनाकर भारतीय फौज की अगुवाई करने के लिए भेजा गया था। 11 सितंबर 1965 वो तारीख थी जब एबी तारापोर के नेतृत्व में पूना हॉर्स रेजिमेंट को चविंडा की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान के सियालकोट सेक्टर में फिल्लौरा को जीतने का आदेश मिला। सियालकोट सेक्टर में भीषण युद्ध जारी था। लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापोर इस मिशन को जीतने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लगातार मिल रही हार से पाकिस्तानी सेना बौखलाई हुई थी। आवेश में आकर उसने ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी पैटर्न टैंक युद्ध के मैदान में उतार दिए। इधर एबी तारापोर ने जवाबी कार्रवाई की पूरी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से गोलाबारी शुरू की गई, भारतीय सैनिक उन पर टूट पड़े। एक एक करके उन्होंने पाकिस्तानी सेना के टैंकों को नष्ट करना शुरू किया। एबी तारापोर का नेतृत्व ऐसा था कि सैनिक अपनी जान की बाजी लगाने को तत्पर थे। पाकिस्तानी सेना अपने अमेरिकी पैटर्न टैंकों के जरिए लगातार भीषण हमला कर रही थी। भारतीय सेना के 43 टैंकों की टुकड़ी मदद के लिए पहुंचती, इसके पहले ही भारतीय सैनिकों ने दुश्मन के 60 टैंकों को ध्वस्त कर दिया। इस समय तक लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापोर दुश्मन के हमले में गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते रहे। घायल हो जाने के कारण उन्हें इलाज के लिए वापस आने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने युद्ध छोड़कर जाने से इनकार कर दिया था। अपने साहस और पराक्रम के दम पर वजीराली पर कब्जा करके वो आगे बढ़ चुके थे और दुश्मन के 60 टैंकों को ध्वस्त कर दिया था। सियालकोट सेक्टर में लड़ी गई फिल्लौरा और चविंडा की लड़ाई को सैन्य इतिहास में टैंकों का सबसे भीषण युद्ध माना गया। अपने जज्बे के बलबूते एबी तारापोर अब तक पाकिस्तान के 60 टैंक बर्बाद कर चुके थे, जबकि भारत के सिर्फ 9 ही टैंक बर्बाद हुए। एबी तारापोर के पास विकल्प था कि वो पीछे लौटते और अपनी जान बचा लेते, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ना स्वीकारा। युद्ध के दौरान ही उनके टैंक को टक्कर लगी और उसमें आग लग गई। लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापोर 16 सितंबर 1965 को युद्ध के मैदान में ही वीर गति को प्राप्त हुए। अपने लीडर की मौत के बाद भी भारतीय जवानों ने दुश्मन से जमकर लोहा लिया और फिल्लौरा पर भारतीय तिरंगा लहरा उठा। एबी तारापोर ने अपने साथी मेजर चीमा से कहा था कि अगर युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो जाए तो उनका अंतिम संस्कार युद्ध के मैदान पर ही किया जाए। फिल्लौरा की लड़ाई में अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसे परमवीर महाबलिदानी को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।

आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बांसुरी वादन। बांसुरी वादन होगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और उनके शिष्यों का। यह प्रस्तुत हुई भारत भवन के 44वें वर्षगांठ समारोह के मौके पर। कार्यक्रम की शुरुआत हुई राग यमन से।

0: आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के संपादित अंश।
1: बहुत ही सम्मान के साथ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से निवेदन है, 84 सालगिरह के इस अवसर पर हम सबको धन्य करें। बांसुरी का नाद हम सबकी रूह में, हम सबकी आत्मा में, हम सबकी चेतना में प्रार्थना बनकर गूंजता रहे। जोरदार तालियों के बीच पंडित हरिप्रसाद चौरसिया।

आज के इस खास कार्यक्रम में आप आनंद ले रहे थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी और उनके शिष्यों के बांसुरी वादन का। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित नारायण ब्रज।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में।
1: अहल्या अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी की तरह सहनशील और नाक में रहकर भी तपस्या से चमकने वाली द्रौपदी अर्थात अग्नि, यज्ञ वेदी से जन्मी और अग्नि की तरह बड़ी और तेजस्वी। कुंती अर्थात वायु, जीवन भर बिना किसी ठहराव के संघर्षों के तपेलों को सहने वाले। तारा अर्थात आकाश, आकाश के तारों की तरह विशाल बुद्धि और सूर्य रुझ की स्वामिनी। मंगोदरी अर्थात जल, रावण के पाप रूपी मरुस्थल में भी जल की तरह शांत और शुद्ध रहने वाली। जैसे पानी में कीचड़ मिलने पर भी पानी का मूल स्वभाव शुद्ध रहता है, पानी का मूल स्वभाव शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है, वैसे ही इन पांचों महानारियों का चरित्र सांसारिक कष्टों के बीच भी सदा निर्मल और पवित्र रहा है। पुरुषों द्वारा छल त्याग जैसी कठिन परिस्थितियां आई, लेकिन उनका मन और उनकी आत्मा कभी दूषित नहीं हुई। इसीलिए समाज में इन नारियों को सम्मानित करने के लिए कहा गया कन्या। तो आइए आज सुनते हैं और देखते हैं इन्हीं पंच कन्याओं में से एक वायु के समान जीवन भर बिना किसी ठहराव के संघर्षों के थपेड़ों को सहने वाली महारानी कुंती की कथा, जो अनेक विपरीत परिस्थितियों को झेलने के बाद भी भीतर से वैसी ही शुद्ध और अडिग रही जैसी होती है एक जन्मजात कन्या।

0: सभा सदन, ईश्वर की कृपा और आप सबके सहयोग से राज्य का कार्य सुचारू रूप से चल रहा, परंतु अचानक आए एक संदेश से मैं तनिक चिंतित हो गया।
1: कैसा संदेश महाराज? किसका संदेश?
0: हमारे राज्य में एक महर्षि आने वाले हैं, जो यहां एक वर्ष तक निवास करेंगे। वे अत्यंत कठोर व्रत धारण करने वाले, अपने निश्चय को सदा गुप्त रखने वाले और अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। उनके सेवा सत्कार में तनिक भी कभी हुई तो अनर्थ हो सकता।
1: महाराज, क्या वह महर्षि दुर्वासा से अधिक क्रोधी हैं?
0: वे महर्षि दुर्वासा ही हैं। समझ में नहीं आता कि उनके सत्कार का दायित्व किसको दिया जाए, आप ही समझाइए।
2: महाराज, राजकुमारी कुंती के अतिरिक्त यह दायित्व किसी और को देना अधिक संकटपूर्ण होगा।
0: मैं भी यही सोच रहा हूँ।
3: राजकुमारी इस कार्य के लिए बहुत ही योग्य और अनुभवी है महाराज,
0: परंतु वो मेरी एकमात्र पुत्री है मंत्री वर। कहीं किसी कारण यदि महर्षि रुष्ट हो गए तो उनके क्रोध से मेरी पुत्री का भविष्य संकट में पड़ जाए।
3: आपकी आशंका निर्मूल है महाराज।
4: जी महाराज।
0: राजकुमारी को बुलाओ, कहो कि उन्हें महाराज ने स्मरण किया है।
4: जो आज्ञा महाराज।
0: आप सबको विदित है कि राजकुमारी कुंती को मैंने गोद लिया है। वो मथुरा वृष्टि के महाराज शूरसेन की पुत्री है, जिन्होंने पूर्व में दिए गए वचन के अनुसार अपनी पहली संतान मुझे दे दी। इसलिए मैं उसके लिए कुछ अधिक ही चिंताग्रस्त रहता हूँ।
4: आपने मुझे बुलाया पिताश्री?
0: हाँ मेरी प्यारी पुत्री, इधर आओ। देखो पुत्री, कुछ ही दिनों में महर्षि दुर्वासा पधार रहे हैं। वो हमारे यहाँ एक वर्ष तक रहेंगे। इस बीच उनके सेवा सत्कार में कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसलिए ये कार्य हम तुम्हें सौंपना चाहते हैं। पुत्री, क्या ये कार्य तुम कर सकोगी?
4: अवश्य पिताश्री, मुझे उनका आतिथ्य करने में प्रसन्नता होगी।
0: परंतु पुत्री, वे अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव के हैं। यदि वे किसी कारण क्रोध में आ गए तो बहुत ही अमंगलकारी शाप भी दे सकते हैं।
4: आप चिंता ना करें, मैं उन्हें ऐसा अवसर ही नहीं दूंगी।
0: तो फिर जाओ पुत्री, महल परिसर में उनकी उपयुक्त एक कुटिया का निर्माण करा और उनकी सेवा में किस किस को रहना है इसकी पूरी व्यवस्था करो।
4: जो आज्ञा पिताश्री।

पुत्री, यहां पर रहते हुए एक वर्ष कब व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। तुमने मुझे एक भी अवसर नहीं दिया कि मैं तुम पर अप्रसन्न हूं। पुत्री, मैंने गंभीरता पूर्वक तुम्हारा भविष्य देखा है और उसी को ध्यान में रखकर मैं तुम्हें स्वधर्म की रक्षा के लिए एक मंत्र देता हूं।

पिताया और पुत्री, सुनो पुत्री, तुम इस मंत्र से पूर्ण विश्वास के साथ जिस देव का आह्वान करोगी उसके अनुग्रह से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। पुत्री कल्याण हो, पुत्री तुम्हारा कल्याण।

ये थी रेडियो रिपोर्ट, नृत्य गायन एवं वादन पर केंद्रित श्रृंखला संभावना की। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार ख्वाजा अल्ताफ हुसैन,

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का

0: जैसे हमारे संविधान के तीन प्रमुख भाग हैं। भाग एक में संघ तथा उसके राज्य क्षेत्रों के विषय में टिप्पणी की गई है तथा ये बताया गया है कि राज्य क्या हैं और उनके अधिकार क्या हैं।
1: दूसरे भाग में नागरिकता के विषय में बताया गया है कि भारतीय नागरिक कहलाने का अधिकार किन लोगों के पास है और किन लोगों के पास नहीं। तीसरे भाग में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार से बताया गया है और चौथा भाग नीति निर्देशन पर केंद्रित है।
0: भाग तीन तथा चार मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं, क्योंकि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देश देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सर्वप्रथम ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
1: ये तो हुई संविधान से संबंधित बातें। अब जरा आज के उस व्यक्तित्व की बात की जाए जिसने भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में वो अध्याय जोड़ा जिसका पहला अक्षर शुरू करने का साहस भी उस वक्त के किसी नेता में नहीं था।
0: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे स्वर्णिम अध्यायों में से एक आजाद हिंद फौज, जिसके जनक थे वो महान नेता जिन्हें पूरा विश्व नेताजी के नाम से जानता है, जिन्हें हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं।
1: तो तारीख इस महान क्रांतिकारी का प्रथम बीज तुम ही इस शव्य धरा पर रोपित करो।
0: बिल्कुल इतिहास। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब भी दिया था।
1: प्रभावती देवी के पिता का नाम गंगा नारायण दत्त था। दत्त परिवार को कोलकाता का एक कुलीन परिवार माना जाता था। प्रभावती और जानकीदास बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे।
0: नौजवान सुभाष कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्रंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर उनके साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर काम करने की इच्छा प्रकट की। रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। मुंबई में गांधी जी मणिभवन में निवास करते थे। वहाँ 20 जुलाई 1921 को महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच पहली बार मुलाकात हुई। गांधी जी ने भी उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी।
1: इसके बाद सुभाष बाबू कोलकाता आ गए और दास बाबू से मिले। दास बाबू उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उन दिनों गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया था। दास बाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष बाबू इस आंदोलन में सहभागी हो गए। 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की।
0: दास बाबू ने विधानसभा के अंदर से अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी से लड़कर जीता। स्वयं दास बाबू कोलकाता के महापौर बन गए। उन्होंने सुभाष बाबू को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया। सुभाष बाबू ने अपने कार्यकाल में कोलकाता महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल डाला। कोलकाता के रस्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर उन्हें भारतीय नाम दिए गए।
1: 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। कोलकाता में सुभाष बाबू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके पश्चात एक समय ऐसा भी आया जब गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे, लेकिन सुभाष बाबू और पंडित जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था।

0: अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष बाबू को कुल 11 बार कारावास हुआ। सबसे पहले उन्हें 1921 में 6 महीनों का कारावास हुआ। 1925 में गोपीनाथ साहा नामक एक क्रांतिकारी कोलकाता के पुलिस अधीक्षक चार्ल्स टेगार्ट को मारना चाहता था। उसने गलती से अर्नेस्ट डे नामक एक व्यापारी को मार डाला। इसके लिए उसे फांसी की सजा दी गई। गोपीनाथ को फांसी होने के बाद सुभाष बाबू जोर से रोए। उन्होंने गोपीनाथ का शव मंगवाकर उसका अंतिम संस्कार किया। इससे अंग्रेज सरकार ने ये निष्कर्ष किया कि सुभाष बाबू ज्वलंत क्रांतिकारियों से न ही संबंध रखते हैं, बल्कि वे ही उन क्रांतिकारियों का स्फूर्ति स्थान हैं। इसी बहाने अंग्रेज सरकार ने सुभाष बाबू को गिरफ्तार किया और बिना कोई मुकदमा चलाए उन्हें अनिश्चित कालखंड के लिए म्यांमार के मंडाले कारागृह में बंदी बनाया।
1: जब 5 नवंबर 1925 के दिन देश बंधु चितरंजन दास कोलकाता में चल बसे, सुभाष बाबू ने उनकी मृत्यु की खबर मंडाले कारागृह में रेडियो पर सुनी। मंडाले कारागृह में रहते समय सुभाष बाबू की तबीयत बहुत खराब हो गई, उन्हें तपेदिक हो गया, परंतु अंग्रेज सरकार ने फिर भी उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया। सरकार ने उन्हें रिहा करने के लिए ये शर्त रखी कि वे इलाज के लिए यूरोप चले जाएं, लेकिन सरकार ने ये तो स्पष्ट नहीं किया था कि इलाज के बाद वे भारत कब लौट सकते हैं, इसलिए सुभाष बाबू ने ये शर्त स्वीकार नहीं की। आखिर में परिस्थिति इतनी कठिन हो गई कि शायद वे कारावास में ही मर जाएंगे। अंग्रेज सरकार ये खतरा भी नहीं उठाना चाहती थी कि सुभाष बाबू की कारागृह में मृत्यु हो जाए, इसलिए सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। फिर सुभाष बाबू इलाज के लिए डलहौजी चले गए।
0: 1932 में सुभाष बाबू को फिर से कारावास हुआ। इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल में उनकी तबीयत फिर से नादुरुस्त हो गई। वैद्यकीय सलाह पर सुभाष बाबू इस बार इलाज के लिए यूरोप जाने को राजी हो गए। यूरोप में सुभाष बाबू ने अपनी सेहत का ख्याल रखते समय अपना कार्य जारी रखा। वहां से इटली के नेता मुसोलिनी से मिले, जिन्होंने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दिया। आयरलैंड के नेता डी वलेरा सुभाष बाबू के अच्छे दोस्त बन गए।
1: 1934 में सुभाष बाबू को उनके पिता के मृत्युशैया पर होने की खबर मिली, इसलिए वे हवाई जहाज से कराची होकर कोलकाता लौटे। कराची में उन्हें पता चला कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। कोलकाता पहुंचते ही अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिन जेल में रखकर वापस यूरोप भेज दिया। सुभाष बाबू 1933 से 1936 तक यूरोप में रहे।
0: 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होने का तय हुआ था। इस अधिवेशन से पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष बाबू को चुना। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। इस अधिवेशन में सुभाष बाबू का अध्यक्षीय भाषण बहुत ही प्रभावी हुआ। अपने अध्यक्ष पद के कार्यकाल में सुभाष बाबू ने योजना आयोग की स्थापना की। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। सुभाष बाबू ने बेंगलोर में मशहूर वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विज्ञान परिषद भी ली। 1937 में जब जापान ने चीन पर आक्रमण किया तो सुभाष बाबू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने चीनी जनता की सहायता के लिए डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस के नेतृत्व में वैद्यकीय पथक भेजने का निर्णय लिया।
1: 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष बाबू को चुना तो था, मगर गांधी जी को सुभाष बाबू की कार्य पद्धति पसंद नहीं आई। इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए थे। सुभाष बाबू चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई का लाभ उठाकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र किया जाए। उन्होंने अध्यक्ष रहते हुए इस तरफ कदम उठाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन गांधी जी अब उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में सुभाष बाबू के खिलाफ पट्टा भी सीतारमैया को चुना। सब समझते थे कि जब महात्मा गांधी ने पट्टा भी सीतारमैया का साथ दिया है तब वे चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वास्तव में सुभाष बाबू को चुनाव में 1580 मत मिल गए और पट्टा भी सीतारमैया को 1377 मत मिले। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष बाबू 203 मतों से ये चुनाव जीत गए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि सुभाष बाबू कुछ काम ही न कर पाए। आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष बाबू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।
0: 3 मई 1939 के दिन सुभाष बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की। इसलिए अंग्रेज सरकार ने सुभाष बाबू सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष बाबू जेल में निष्क्रिय नहीं रहना चाहते थे। सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष बाबू ने जेल में आमरण उपोषण शुरू कर दिया। तब सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, मगर अंग्रेज सरकार ये नहीं चाहती थी कि सुभाष बाबू युद्ध के दौरान मुक्त रहें, इसीलिए सरकार ने उन्हें उनके ही घर में नजर कैद करके रखा।

0: नजर कैद से निकलने के लिए सुभाष बाबू ने एक योजना बनाई। 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देने के लिए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष धरकर अपने घर से भाग निकले। शरद बाबू के बड़े बेटे शिशिर ने उन्हें अपनी गाड़ी से कोलकाता से दूर गोमोह तक पहुंचाया। गोमोह रेलवे स्टेशन से फ्रंटियर मेल पकड़कर वे पेशावर पहुंचे। पेशावर में उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सहकारी मियां अकबर शाह मिले। मियां अकबर शाह ने उनकी मुलाकात कीर्ति किसान पार्टी के भगत राम तलवार से करा दी। भगत राम तलवार के साथ में सुभाष बाबू पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े। इस सफर में भगत राम तलवार रहमत खान नाम के पठान बने थे और सुभाष बाबू उनके गूंगे बहरे चाचा बने थे। पहाड़ियों में पैदल चलते हुए उन्होंने ये सफर पूरा किया।
1: काबुल में सुभाष बाबू 2 महीनों तक उत्तम चंद मल्होत्रा नामक एक भारतीय व्यापारी के घर में रहे। वहाँ उन्होंने पहले रूसी दूतावास में प्रवेश पाना चाहा। इसमें नाकामयाब रहने पर उन्होंने जर्मन और इटालियन दूतावासों में प्रवेश पाने की कोशिश की। इटालियन दूतावास में उनकी कोशिश सफल रही। जर्मन और इटालियन दूतावासों ने उनकी सहायता की। आखिर में ओरलांडो मात्सुता नामक इटालियन व्यक्ति बनकर सुभाष बाबू काबुल से रेलवे से निकलकर रूस की राजधानी मॉस्को होकर जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे।
0: बर्लिन में सुभाष बाबू सर्वप्रथम रिबेंट्रॉप जैसे जर्मनी के अन्य नेताओं से मिले। उन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इसी दौरान सुभाष बाबू नेताजी नाम से जाने जाने लगे। जर्मन सरकार के एक मंत्री एडम फॉन ट्रॉट सुभाष बाबू के अच्छे दोस्त बन गए।
1: आखिर 29 मई 1942 के दिन सुभाष बाबू जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडोल्फ हिटलर से मिले। लेकिन हिटलर को भारत के विषय में विशेष रुचि नहीं थी। उन्होंने सुभाष बाबू को सहायता का कोई स्पष्ट वचन नहीं दिया। अंत में सुभाष बाबू को पता चला कि हिटलर और जर्मनी से उन्हें कुछ और नहीं मिलने वाला है।
0: इसलिए 8 मार्च 1943 के दिन जर्मनी के कील बंदर में वे अपने साथी आबिद हसन सफरानी के साथ एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर पूर्वी एशिया की तरफ निकल गए। ये जर्मन पनडुब्बी उन्हें हिंद महासागर में मेडागास्कर के किनारे तक लेकर आई। वहां वे दोनों समुद्र में से तैरकर जापानी पनडुब्बी तक पहुंच गए। द्वितीय विश्व युद्ध के काल में किन्हीं भी दो देशों की नौसेनाओं की पनडुब्बियों के दौरान नागरिकों की ये एकमात्र अदला बदली हुई थी। ये जापानी पनडुब्बी उन्हें इंडोनेशिया के पादांग बंदर तक लेकर आई।
1: पूर्व एशिया पहुंचकर सुभाष बाबू ने जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो से संपर्क किया। उन्होंने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहकार्य करने का आश्वासन दिया। 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत आजाद हिंद की स्थापना की। वे खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी। नेताजी आजाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति भी बन गए।
0: पूर्व एशिया में नेताजी ने अनेक भाषण करके वहाँ स्थायी भारतीय लोगों से आजाद हिंद फौज में भर्ती होने का और उसे आर्थिक मदद करने का आह्वान किया। उन्होंने अपने आह्वान में संदेश दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने चलो दिल्ली का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों का पलड़ा भारी पड़ा और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा।
1: जब आजाद हिंद फौज पीछे हट रही थी, तब जापानी सेना ने नेताजी के भाग जाने की व्यवस्था की। परंतु नेताजी ने झांसी की रानी रेजिमेंट की लड़कियों के साथ सैकड़ों मील चल के जाना पसंद किया। इस प्रकार नेताजी ने सच्चे नेतृत्व का एक आदर्श बनाकर रखा।
0: 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी से बात करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और अर्जी हुकूमत आजाद हिंद तथा आजाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता बुलाकर अपनी जंग के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। इस प्रकार नेताजी ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता बुलाया।

0: द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से माचुरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को जापान की दोमेई खबर संस्था ने दुनिया को खबर दी कि 18 अगस्त के दिन नेताजी का हवाई जहाज ताइवान की भूमि पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस दुर्घटना में बुरी तरह से घायल होकर नेताजी ने अस्पताल में अंतिम सांस ली थी।
1: दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज में नेताजी के साथ उनके सहकारी कर्नल हबीबुर रहमान थे। उन्होंने नेताजी को बचाने का निश्चय किया, लेकिन वे कामयाब नहीं रहे। फिर नेताजी की अस्थियां जापान की राजधानी टोक्यो में रेनकोजी नामक बौद्ध मंदिर में रखी गई।
0: अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही उन्होंने एक भाषण के दौरान कहा था, कोई भी व्यक्ति कष्ट और बलिदान के जरिए असफल नहीं हो सकता। अगर वह पृथ्वी पर कोई चीज गंवाता भी है तो अमरत्व का वारिस बनकर काफी कुछ हासिल कर लेता है।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। तो अब दीजिए हमें इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे,
3: तब तक के लिए नमस्कार।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण और कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा। श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य इस प्रकृति की ही उपज है और सभ्यता के विकास के साथ ही हमने अपने हर प्रश्नों हर समाधान भी इसी प्रकृति से ही तो प्राप्त किया है। विशेष रूप से यदि भारतीय ज्ञान और परंपराओं की बात की जाए तो सदियों से हमारी यही विचारधारा रही है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव, उनके निर्माण में प्रकृति के 5 तत्वों जिन्हें की पंच महाभूत जाता है, इन्हीं का हाथ है। तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यानी इन्हीं तत्वों से संसार की, ब्रह्मांड की हर चीज बनी है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी। और इन्हीं 5 तत्वों पर टिका है हमारा स्वास्थ्य भी। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विषय विशेषज्ञ आयुर्वेदाचार्य श्री शैलेश मानकर जी। मानकर जी विगत 25 वर्षों से प्रैक्टिसरत हैं, लगभग 15 वर्षों से सुवर्ण प्राशन संस्कार एवं गर्भ संस्कार के नियमित परामर्शदाता और अनुसंधानकर्ता भी रहे हैं। ये अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं, जो आयुर्वेद के अध्ययन, परामर्श और चिकित्सा में समर्पित हैं। सन 2018 में मानकर जी को प्रतिष्ठित पंडित उद्धव दास मेहता राज्य स्तरीय चिकित्सा सेवा सम्मान से विभूषित किया गया है। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: आज हम इस कार्यक्रम में आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो हमारी प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की परंपरा रही है, उसमें हमारे स्वास्थ्य के संबंध में क्या प्रावधान है और इसमें प्रकृति की क्या भूमिका है।
2: आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है
1: जी।
2: हम जितने भी भारतीय लोग हैं, हमारी भारतीय परंपरा है, यह सारा का सारा ज्ञान प्रकृति से ही अर्जित किया हुआ है। हमारी सारी परंपराओं में यह बहुत स्पष्ट रूप से मिलता है। हमारे यहाँ एक सेंटेंस कहा जाता है, जैसा जैसा इस ब्रह्मांड में है वैसा वैसा इस पिंड में है। तो जहाँ इस पूरे ब्रह्मांड में जो चीज हो रही है, वही चीजें रिफ्लेक्ट हमारे शरीर में, हमारे किसी भी पिंड में भी वही चीज हो रही है। मतलब हमने उनको एकाग्र किया है कि प्रकृति के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ हमारा कैसा एकाकार है। आपने मूल तत्व इसमें बता ही दिए हैं, जो हमारे पंच महाभूत होते हैं
1: जी।
2: जो पंच महाभूत में आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है
1: जी।
2: यही हमारे तत्वों के, हमारे शरीर के, हमारे सृष्टि का मूल आधार है
1: जी।
2: इन्हीं से हमारा शरीर बना हुआ है। हम लोक भाषा में भी बोलते हैं ना, सामान्य रूप से ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा
1: जी।
2: ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे जब हम दिनचर्या में, लोक भाषा में आराम से बोलते हैं। और यही इसका सार है कि जो पंच महाभूत है, उसी से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। पंच महाभूत में ही हमारी सब्जियां भी उग रही है
1: जी।
2: हमारे पेड़ पौधे भी है, इसी जल का उपयोग भी हमारे शरीर में हो रहा है। हमारे शरीर का जो रिक्त स्थान है वह आकाश को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारी श्वास प्रश्वास को हम प्राण बोलते हैं
1: जी, प्राणवायु,
2: प्राणवायु
1: जी।
2: यह प्राण को ही हम वायु के रूप में हम देख रहे हैं। आकाश महाभूत से जो हमारा अंदर अंग है, जो खाली स्थान है
1: जी,
2: जो आमाशय है, पक्वाशय है, ऐसे जो स्टमक वगैरह है, इनमें जो होलो स्पेस है वह आकाश को रिप्रेजेंट कर रहा है।
1: अच्छा।
2: जो वायु हम सांस ले रहे हैं, यह हमारे प्राण को, वायु को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे शरीर में जितना रक्त है, लसीका है, जो भी चीजें जो द्रव रूप में, तरल रूप में बह रहा है, वो हमारे सारे जल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
1: अच्छा।
2: और हमारी मांस है, हड्डियां हैं, यह हमारे सर्वे जो है वो सब का सब पृथ्वी महाभूत को ये कर रहा है। और साथ में रह गई बात अग्नि की। तो अग्नि जो हमारी पाचन अग्नि है, हम बोलते ही है कि हमारे शरीर में जठर अग्नि होती है, हमारा खाना जो पचता है वह अग्नि के माध्यम से ही पचता है
1: जी।
2: हमारी जितनी मेटाबॉलिज्म होती है वो 13 प्रकार की अग्नियां हमारे शरीर में बता के रखी हैं।
1: 13 प्रकार की अग्नियां,
2: 13 प्रकार की अग्नियां। तो जठर अग्नि के साथ में हमारे सारे धातुओं का पोषण करने वाली, हम आज के समान में जो मेटाबॉलिज्म वगैरह बोलते हैं, यह सारा का सारा अग्नि के स्वरूप में हमारे ज्ञान परंपरा में उसको वर्णित किया है।
1: अच्छा।
2: और उत्तर उत्तर एक के बाद एक धातु पूरी तरह से जब सम्यक रूप से समान अवस्था में बनी रहेगी तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। मतलब हमारे शास्त्र में बहुत अच्छे से बताया कि ये जो पंच महाभूत है
1: जी।
2: या हम आयुर्वेद के हिसाब से जो दोष सप्तधातु वगैरह सभी लगते हैं, इनकी सबकी साम्य अवस्था, ये सब एक बैलेंस कॉम्बिनेशन में रहेंगे तो ही हम स्वस्थ कहलाएंगे।
1: अच्छा
2: ऐसा
1: जी
2: नहीं है कि
1: जी
2: कोई एक चीज बढ़ी है कम हो, वो चीज जो होती है इसके सम्यक रूप से, हमारे इसमें कहा भी गया है कि जब हमारी इंद्रियां प्रसन्न हो, जब हमारे अंग सुचारू रूप से काम कर रहे हो,
1: जी
2: है ना, हमारी मानसिक स्थिति सम्यक हो और हमारी आध्यात्मिक भी, हम भारतीय
1: अच्छा
2: परंपरा में आध्यात्म को
1: जी
2: भी
1: जी
2: मानते हैं,
1: जी
2: तो इनका जब सम्यक रूप से समान अवस्था जब रहेगी तभी हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ की परिभाषा ही ऐसी दे के रखी है ना,
1: अच्छा
2: स्वस्थ रहने के लिए सबका बैलेंस कॉम्बिनेशन होना
1: बेहद जरूरी
2: जरूरी
1: है
2: बेहतर है।
1: जी।
2: और एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि जब हमारा जन्म होता है तो हमारे जन्म के समय हम पे छह चीज की काम करती हैं, छह तत्व काम करते हैं,
1: जी
2: जिसमें हमारे माता के भाव होते हैं, पिता के भाव होते हैं, उसी के साथ में जो हम अन्न ग्रहण करते हैं उसका प्रभाव होता है,
1: जी
2: जो मन का जो हमारा प्रभाव, जब ऐसी हमारी मानसिक स्थिति होती है
1: जी जी
2: उसका भी प्रभाव पड़ता है, और इसके साथ में जो जीवात्मा है वह अपने कुछ गुणधर्म लेके आती है, तब जाके एक जीव का
1: निर्माण होता है
2: निर्माण होता है और
1: जी।
2: उसमें एक बैलेंस कॉम्बिनेशन बनता है और इसके कारण वह अस्तित्व में रहता है।
1: जी
2: यह सारा का सारा कॉम्बिनेशन, ये सारा कार्य जो है वो पंच महाभूत से बने हुए शरीर पर ही हो रहा है।
1: अच्छा तो सर यहाँ पर एक प्रश्न मन में ये उठता है कि ये जो पांच तत्व हैं वो क्या हर मनुष्य में समान अनुपात में होते हैं या इनके अनुपात भी मनुष्य मनुष्य में अलग-अलग होते हैं?
2: बिल्कुल सहज रूप से इसमें हर मनुष्य में इसके अनुपात में थोड़ा सा अंतर आता है, इसलिए
1: जी
2: हमको मनुष्यों में विभिन्नता मिलती है।
1: हाँ अच्छा मतलब रंग रूप जो है या
2: रंग
1: हमारा स्वभाव है
2: स्वभाव है, रंग
1: जी।
2: रूप है, उनकी आदतें हैं, उनका आकार प्रकार है ना,
1: जी
2: उनके बाल, उनके अंगों का सब स्वरूप जो है, यह सारा का सारा उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे ही रहता है, और
1: अच्छा
2: वो एक बैलेंस कॉम्बिनेशन रहेगा तब वो अस्तित्व में आएगा।
1: जी तो ये तो बात हो गई पंच महाभूतों की जिनकी हमारे शरीर के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है,
2: बहुत बड़ी
1: हम
2: भूमिका
1: बने ही इन्हीं पंच तत्वों से हैं। एक और टर्म आती है आयुर्वेद में त्रिदोष की, वात पित्त और कफ। तो ये जो त्रिदोष हैं पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि इन्हें त्रिदोष क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोष से हम आम इंसान तो दोष यानी कुछ एक कमी समझते हैं। और फिर उसके बाद एक बात ये आती है कि क्या इन त्रिदोषों का भी इन पंच तत्वों से कुछ संबंध है?
2: निश्चित रूप से
1: जी
2: जो मूल तत्व है वो तो पंच महाभूत ही है।
1: जी जी
2: इसको जब हम शरीर रचना के रूप में देखते हैं तो हमारे त्रिदोष होते हैं, सप्त धातु होते हैं और तीन मल,
1: जी
2: ऐसे करके हमारे शरीर में मुख्य घटक आते हैं, समझ में आते हैं। ये जो तीन दोषों की बातें की गई है
1: जी
2: ये बहुत स्पष्ट रूप से ये शरीर को धारण करते हैं, इसलिए इसको धातु भी कहते हैं, है
1: अच्छा
2: ना।
1: जी
2: लेकिन जब इनका प्रमाण कुछ कम ज्यादा होता है या बढ़ जाए या घट जाए तो ये उन स्रोतों को, शरीर के सिस्टम को, धातुओं को जब वो उसमें दोष उत्पन्न करते हैं इसके कारण इनको दोष कहा गया है।
1: अच्छा
2: इन दोषों के लिए जो हम गलती करते हैं सामान्य रूप से एक डायरेक्शन की, यार कफ बढ़ रहा है तो कफ को सुखा दो, है ना,
1: जी
2: पर गले के लिए कफ जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर कफ का ही स्थान है,
1: जी
2: तो जहां कफ की आवश्यकता है उसकी है, तो उसको हमको सुखाना नहीं है, इसलिए मैंने पहले भी शब्द इस्तेमाल
1: जी
2: किया कि आपको सम्यक अवस्था
1: सम्यक
2: रखना है, उसको एक बैलेंस कॉम्बिनेशन में ही रखना
1: जी
2: है, तो कफ के प्रमाण को सम्यक करना, उसको बैलेंस करना,
1: यानी हमें जितना जरूरी है उतना होना
2: उसके
1: चाहिए
2: होना चाहिए,
1: जी ना
2: व्यक्ति
1: कम
2: की वजह से
1: ना
2: ना
1: ज्यादा।
2: कम ना ज्यादा, और उस व्यक्ति के अनुसार होना चाहिए,
1: अच्छा
2: है ना,
1: यानी हमारा
2: क्योंकि
1: स्वभाव और हमारे शरीर की जो गुणधर्म है उस पर
2: उसके
1: भी ये
2: हिसाब से
1: चीज निर्भर करती है।
2: निर्भर करेगी।
1: जी
2: ये स्वाभाविक है, हमारे प्रकृति में पहाड़ी क्षेत्र में रहने वालों की शरीर कदकाठी अलग होती
1: जी
2: है,
1: जी बिल्कुल
2: हमारे जो साधारण देश होता है वहाँ की कदकाठी अलग होती है,
1: जी
2: और जो गर्म देश रहते हैं वहाँ के लोग, तो उनके खान पान में भी उसके कारण अंतर आ रहा है,
1: जी
2: उस जगह के हिसाब से तुलना, उसको बैलेंस कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो
1: जी
2: ये जो विभिन्नताएं आपको दिख रही है
1: जी
2: ये विभिन्नताओं का प्रैक्टिकली हमको अप्रोच रखना चाहिए, इसलिए हमको हमारी बुद्धि लचीली रखनी
1: अच्छा
2: चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात
2: हम
1: है
2: जब रिजिड होते हैं
1: जी
2: तो हम फिर गलती करते हैं कि यहाँ ऐसा है ही है, तो
1: जी
2: हमको वो सारी गणनाओं के साथ में अपने आप को
1: जी
2: अपनी गणना करनी चाहिए।
1: तो सर अब प्रश्न यही आता है कि यदि ये त्रिदोष हैं और हमारे शरीर में इन तीनों की उपस्थिति है, अब इन तीनों का बैलेंस कैसे बना रहे?
2: एक विषय को बता देता हूँ कि हमारा जो वात दोष है,
1: जी
2: वात पित्त और कफ, ये तीन तत्व है। वात मतलब वायु, पर ये जो वायु बोल रहे हैं इसमें वायु तत्व और आकाश तत्व इनका सम्मिलित रूप है।
1: अच्छा, यानी पंच महाभूतों में से,
2: पंच महाभूत में से
1: आकाश और जो वायु है वो वात को बनाते हैं।
2: वात को बनाते हैं
1: जी, ठीक है।
2: इसमें जो पित्त होता है वह अग्नि और जल इसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। और जहाँ पे पृथ्वी महाभूत है वहाँ पे जल और पृथ्वी,
1: अच्छा,
2: जो हमारा कफ है
1: जी,
2: कफ दोष है। तो कफ कैसा होता है, थिक होता है, चिकट होता है
1: जी।
2: हमारा शरीर ही सबसे पहले मिट्टी से बना है ना, तो मिट्टी पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत मिलने के बाद जो कफ होगा
1: जी,
2: उससे ये पिंड बनेगा। एक सरल सा उदाहरण देता हूँ, मिट्टी का घड़ा बनता है तो सबसे पहले मिट्टी और जल को मिला के
1: पेस्ट सा बनेगा।
2: हाँ, उसको एक गुथेंगे तो एक ठोस आधार बनेगा
1: जी।
2: फिर हम उसके ऊपर उसको चके के ऊपर रखेंगे, फिर उसका गतिमान करेंगे, तो वायु से उसके आकार का निर्माण होगा। उसको हम धीरे धीरे गति देने के बाद उसको आकार देंगे। आकार देने के बाद उसकी खाली जगह, भरी जगह, जो आकार होगा
1: जी,
2: उसके बाद में हम उसका पचन करेंगे। उसको अग्नि में, उसको
1: पकाएंगे,
2: इस अस्तित्व में रहने के लिए जो उसका पाचन होगा, उसकी क्रियाएं रहेंगी, तब जाके एक मटका अस्तित्व। ऐसी प्रकार से हमारे शरीर में भी वात पित्त कफ का, कि वात के कारण हमारे जो सारे प्राण श्वास मैंने बोला था अंगों का निर्माण होगा, और पिंड जब तक रहेगा पिंड को आकार देने का कार्य वात करेगा, और उसके मेटाबॉलिज्म, उसके पोषण का, उसमें हर समय जो चलने वाली जो क्रियाएं हैं उसको पाचन करके निर्माण करने के लिए हम पित्त का कार्य करेंगे।
1: तो यानी वात पित्त और कफ ये पंच तत्वों की
2: देन है,
1: और इन्हीं का बैलेंस जो है वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बना के
2: रखता है। बना के रखता है। इसमें हमारे अंगों में भी जो विभाजन किया हुआ है
1: जी,
2: जो गले के ऊपर आपका जो छाती वाला कफ जैसा है, और कंठ और सिर, ये हमारे कफ को रिप्रेजेंट करता है।
1: अच्छा,
2: ये कफ का है
1: जी।
2: जो आपके नाभि के आसपास का एरिया मध्य शरीर है हमारा, यह पित्त को रिप्रेजेंट करता है, और कमर से नीचे का हिस्सा वात को रिप्रेजेंट करता है।
1: जी।
2: ऐसे ही हमारा दिन की साइकिल है, ब्रह्म मुहूर्त हमारा जो दिन निकलने के पहले का जो समय है वो वात को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिन निकलते समय हमारा कफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोपहर का समय हमारा फिर पित्त को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर हमारा शाम होने वाला समय फिर वात को रिप्रेजेंट कर रहा है।
1: अच्छा।
2: फिर शाम के बाद रात का समय जो है वो कफ को, और मध्य रात्रि जो है वो पित्त को। ऐसा हमारा डिवाइडेशन वात पित्त कफ के हिसाब से किया हुआ है।
1: अच्छा अच्छा।
2: हमने जो पैरामीटर बनाया, पंच महाभूत मूल आधार है, लेकिन वात पित्त कफ के हिसाब से हमने उसका व्यक्ति के शरीर में भी डिवाइडेशन किया हुआ है, दिनचर्या दिन में भी उसका डिवाइडेशन किया है, और वर्ष में भी डिवाइडेशन किया हुआ है।
1: अच्छा, वर्ष में किस तरह से सर?
2: वर्ष में हमारे 12 पूरे महीने होते हैं, उसमें 6-6 महीने का साइकिल, उसको दो हिस्सों में बांटा है, आदान काल विसर्ग काल।
1: अच्छा।
2: सरल भाषा में हम समझे तो हम पतंग उड़ाते हैं, मकर संक्रांति आती है
1: जी।
2: मकर संक्रांति से भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण होते हैं
1: जी।
2: यहाँ से हमारा शरीर घटना शुरू होता है।
1: अच्छा।
2: और जुलाई के माह में कर्क संक्रांति आती है
1: जी।
2: जब भगवान दक्षिणायन होते हैं तब हमारा शरीर वहाँ से बनना शुरू होता है।
1: अच्छा।
2: तो ये 6 महीने हमारा शरीर घटता है, 6 महीने हमारा शरीर।
1: तो सर जो आप ये बोल रहे हैं शरीर का घटना या शरीर का बढ़ना, इससे क्या अभिप्राय है?
2: शरीर का घटना या बढ़ना से अभिप्राय यह है कि हमारी जितनी भी वाइटल एनर्जीज हैं, हमारी अग्नि है वही पचन का कार्य कर रही है ना
1: जी।
2: तो वो धीरे धीरे कम होते जाती हैं। जैसे हम मकर संक्रांति के बाद जब हमारा शरीर पूरी तरह से बलवान होता है तो जो फाल्गुन महीना आता है, जो होली का समय है
1: जी,
2: उस वसंत ऋतु में हमारे शरीर में कफ का सबसे ज्यादा आधिक्य होता है। तो हमारा कफ प्रकोप का समय बता के रखा है।
1: अच्छा।
2: उसके बाद में हमारा कफ, जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो कफ धीरे धीरे शमन होने लगता है
1: जी।
2: उसके बाद में हम जो वात का समय है वो वर्षा ऋतु है।
1: अच्छा।
2: उस समय हमारे शरीर में वात का प्रकोप होता है और हमारा शरीर कम हो रहा है, हमारी अग्नि सबसे कम है, हम अपने शरीर में सबसे कम इम्यूनिटी वाले टाइम में जो है वो
1: वर्षा ऋतु में,
2: इसलिए आपने देखा होगा हमारी अग्नि भी कमजोर है उस समय, इसलिए हमारे मैक्सिमम उपास वो उस कालखंड में आते हैं।
1: संक्रमण का काल भी वही है,
2: संक्रमण का काल भी वही है। तो मूवमेंट भी कम होना चाहिए और इम्यूनिटी वाइज हमने ऐसे पैरामीटर्स बनाए कि आप उससे सुरक्षित रह सके। तो हम कम खाना खाते हैं, सुपाच्य खाना खाते हैं और हल्का खाना खाते हैं। वैसे ही जैसे शरद ऋतु आती है, तो नवंबर दिसंबर के महीने में जब शरद ऋतु, तो शरद पूर्णिमा हमारा एक ऐसा माइलस्टोन है जब हम दूध को औटा औटा के गाढ़ा करके पीते हैं।
1: हाँ,
2: मतलब कर्क संक्रांति के बाद धीरे धीरे जब अग्नि बढ़ना शुरू होती है तो पहला माइलस्टोन हमको मिलता है शरद पूर्णिमा का।
1: अच्छा
2: जी। कि हमारी अग्नि अब बढ़ गई
1: है,
2: अब आप गरिष्ठ भोजन भी आप कर सकते हैं।
1: अच्छा।
2: इस तरीके से फिर हम वहां से भारी अन्न लेते हैं और हमारा शरीर, हम हेल्दी सीजन बोलते हैं ना, इस समय
1: जी,
2: जो भी खाइए वो पच जाएगा।
1: हाँ,
2: आपके शरीर को लगेगा।
1: जी, ठंड के ऋतु में जैसे बहुत फल खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, घी खाइए,
2: घी खाइए, आपका खाना पूरा सारे षड्रसात्मक होके उसको पूरा बलिष्ठ होके उसमें सारे न्यूट्रिशन हो, उसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी।
1: अच्छा, जी,
2: सामान्य ऋतु के हिसाब से, और इस समय हमारे शरीर का निर्माण होगा। तो शरद ऋतु में पित्त प्रकोप का काल है, ऐसा हमारा डिवाइजेशन हो गया। वसंत ऋतु में कफ प्रकोप है, वर्षा ऋतु में आपका वात का प्रकोप है, और जो शरद ऋतु है उसमें पित्त का प्रकोप।
1: जी, यानी सर यदि हम दिन देखें तो उसके अलग अलग कालखंड में वात पित्त और कफ का प्रभाव अलग अलग है। महीने देखेंगे या वर्ष देखेंगे या ऋतुएं देखेंगे तो उसमें भी हमको वात पित्त और कफ का अलग अलग प्रभाव है। और शायद यही हमारे खान पान में भी हमको ध्यान में रखना होगा कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे तो हम किस मौसम में किस तरह की चीजें लें, या फिर दिन में और रात में हमें किस तरह का आहार लेना चाहिए।
2: निश्चित रूप से अभी वर्तमान में आपके पास में ऐसे लोगों की बढ़ोतरी होगी कि सर देखिए, मैं इतना संभल के रहता हूँ, मैं कुछ नहीं खाता हूँ तो भी बीमार हूँ।
1: जी,
2: तो मैं उनसे वही आग्रह करता हूँ कि जब मौसम बदला तो अपने अपने कपड़े बदले, तो मौसम बदला तो अपने अपना आहार क्यों नहीं बदला।
1: जैसे मतलब सर्दी में हम स्वेटर यूज कर रहे हैं या गर्मियों में पतले कपड़े यूज कर रहे हैं, सेम ऐसे ही हमें हमारा आहार भी मौसम के अनुसार
2: करना चाहिए,
1: बदलना चाहिए।
2: हाँ, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमको ये परिवर्तन करना ही चाहिए। हमारी दिनचर्या में, हमारी ऋतुचर्या में, हमारे शास्त्र में बता के रखा है
1: जी,
2: कि कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना। प्रकृति हमारे हाथ में नहीं है, उसको वो अपने गति से चल रही है।
1: जी।
2: उसमें ऋतुएं बदल रही है, उसके स्वरूप है, उसके मापदंड सामने आ रहे हैं। हमको हमारे शरीर को उसके अनुसार बदलना है। देश काल में हमको कुछ कुछ अंतर मिलते हैं, इसलिए कई बार हमको पता चलता है कि इस सीजन में ये लोगों का एडॉप्ट काम करने के तरीके में और वहाँ के काम करने के तरीके में अंतर है, क्योंकि वो देश का प्रभाव है। तो इसीलिए मैंने बोला कि लचीली बुद्धि के साथ अगर आप एकदम से रिजिड हो जाएंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा, लेकिन ऋतु और उसके हिसाब से तालमेल बिठाना।
1: अब सर ये तो बिल्कुल ऊपरी बातें हो गई आयुर्वेद से संबंधित, तो आप जो दिनचर्या के बारे में बात कर रहे थे, हम उसी पर आते हैं कि हमारी दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए।
2: दिनचर्या भी जो हमारी दोषों के हिसाब से ही होनी चाहिए।
1: अच्छा, वात पित्त और कफ के
2: हिसाब से। हमने डिवाइडेशन करके रखा हुआ है। अब एक सहज प्रश्न आता है कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए।
1: हाँ जी,
2: इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है यह वात दोष का समय है।
1: अच्छा।
2: हमारे शास्त्र में स्पष्ट बताया हुआ है कि हमारे शरीर में जो पित्त है, जो कफ है, हमारी जो 37 धातुएं हैं, वो सब के सब पंगु है। इसको जो मूवमेंट देना है वो वात करेगा।
1: अच्छा।
2: तो जब आपके शरीर के मूवमेंट को उसको गति देने का कार्य करना है तो वात के कालखंड में वह गति देने का कार्य सबसे उत्तम रीति से हो सकता है।
1: जी बिल्कुल।
2: अर्थात जब हम जो धातु या जो व्यक्ति जिस समय बलवान है उससे उसी का कार्य कराना चाहिए।
1: सही बात है।
2: बिल्कुल सरल सहज भाषा में तो जब हमारा वात बलवान है तो हमको वात का कार्य कराना चाहिए।
1: अच्छा।
2: तो जब हमको गति देने का कार्य है इसलिए हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हमारे यहाँ वात भी 5 प्रकार के है, पित्त भी 5 प्रकार के है और कफ भी 5 प्रकार के, ये उनके कर्मों के हिसाब से डिवाइडेशन है।
1: अच्छा अच्छा जी।
2: तो वात में हम बोलते हैं ना, हम पूजा करते हैं तो उसमें प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा।
1: जी।
2: तो इसमें जो अपान वायु है वो अपने शरीर से मल भाग को बाहर निकालने का कार्य करती है। तो अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमको एक वेग आएगा और हमारा जो मल है उसको निष्कर्षण करने में हमको सहायक होगी। इसीलिए हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसी तरीके से सोने का भी समय, रात्रि के समय हम जल्दी खाना और जल्दी सो जाना। जब हमारा पित्त का समय चल रहा है
1: जी।
2: और वात का समय, तब हमको शरीर को रेस्ट दे रहे हैं
1: जी।
2: रात के खाने के बाद 100 कदम चलना क्योंकि उसके बाद हमारा सारा शरीर शिथिल होने वाला है
1: जी।
2: और फिर हमको सोना। ऐसा एक संतुलन बनाने के कार्य दोषों में बता के रखा हुआ है।
1: तो सर, दिनचर्या में जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, अब उसके बाद हमारी एक आगे की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए?
2: हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उसके बाद हमारे इसमें जो नियम बताया हुआ है
1: जी।
2: कि हमको शौच के लिए जाना है। सबसे पहला कर्म मैंने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद हमको जो इच्छा है, तो उठने का क्या नियम बताया है, बहुत सरलता से बताया हुआ है कि रात्रि का भोजन पचा है या नहीं पचा है, इसका चिंतन करना, और उसके बाद में बिस्तर से पैर नीचे करना।
1: अच्छा,
2: कि अगर हमने लेट खाया है,
1: है ना,
2: तो हमको थोड़ा सा, एक बहुत अच्छा सा उसमें सम्यक रूप से बताया कि आप थोड़ा सा 5 मिनट के लिए और सो जाइए।
1: अच्छा जी,
2: है ना। तो ये जो हम थोड़ा सा सोते हैं कि अलार्म बजने के बाद में हमको जो छोटी सी नींद आती है उसकी क्वालिटी अच्छी होती
1: जी,
2: है
1: जी, ये तो होता
2: उसी
1: है।
2: तरीके से रात में जब हम इसका चिंतन करके हमको देखते हैं कि पेट थोड़ा भारी लग रहा है या ऐसा है, और हम थोड़ा सा सो जाते हैं, तो वो प्रक्रिया थोड़ी सी तेज होके फिर आपको हल्कापन शरीर में आता है। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल इसको देख पाएंगे। और उसके साथ ही सवेरे उठते समय हमारे यहाँ कुछ नियम बताए कि कराग्र वस्ते करना है
1: जी, जी,
2: मतलब आपको हाथ जोड़ना है, हाथ में भगवान का आराधना, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और उनको देखना। उसके बाद हमको हाथ को रब करना है,
1: रगड़ना।
2: हाथ को गर्म करने के बाद उसको आंखों पे सेक देना है
1: जी।
2: मतलब हमारा शरीर एक सामान्य तापमान पे कार्य करता है, उसको प्रकृति के साथ जब तालमेल आप बिठा लो तब आप धरती पे पैर रखो। तो उसके पहले हम धरती के विषय भी क्षमा मांगते हैं, विनम्रता का भाव लाते हैं, साथ में हम उस टेम्परेचर के साथ एकाकार होने के बाद में बिस्तर से उठ के बाहर जाते हैं, क्योंकि हम रात भर अपने शरीर को ढके हुए रहते हैं
1: जी।
2: और हमारा शरीर का एक तापमान थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है
1: जी। तो यहाँ पर आप एक चीज क्लियर कीजिए सर, कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है?
2: ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो बहुत स्पष्ट बता के रखा है कि सूर्य उदय के 48 मुहूर्त पहले।
1: अच्छा जी,
2: मतलब घोर अंधकार वाला जो समय होता है 3:30 से 4 बजे का, 4-4:30 बजे का जो समय रहता है वो ब्रह्म मुहूर्त वाला है, और उस समय हमको उठना चाहिए। इसमें
1: तो हम अब उठ गए और हम फ्रेश भी हो गए, उसके बाद फिर हमारी क्या दिनचर्या है?
2: इसके बाद में हमको अपना दंत धावन, अपने दांतों को जो मुंह में है, क्योंकि रात भर का जो भी कफ है
1: जी,
2: जो सिक्रेशंस हैं, जो हमने रात को भोजन किया वो हमारे मुख में है, और उस कफ का आवरण है। मैंने फिर बताया कि जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं वो कफ का कालखंड होता है।
1: अच्छा,
2: तो अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है तो सूर्योदय के बाद उठने के बाद आपके मुंह में एक कफ का आवरण मिलेगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो वो कफ के आवरण का प्रमाण बहुत कम हो जाएगा।
1: अच्छा,
2: और आपके जितने मुख के रोग है उसमें कफ का आवरण रहेगा तो ही मुख के रोग बढ़ने वाले हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: जिसके कारण हम बोलते हैं कि मंजन करना है। अब मंजन कैसे करना है, तो मंजन के लिए अपने शास्त्र में बताया कषाय चीज, जैसी चीज जो थोड़ी सी रूखीपन लेके आए, जो कफ का शमन करे।
1: अच्छा,
2: तो इसलिए हमने दतून बताई, है ना। हम राख की बात की, तो राख मतलब बहुत स्पष्ट है कि जो कंडे की राख होती है उसको ऊपर के हटा के जो बीज का सफेद राख होती है उसका इस्तेमाल करना, और एकदम महीन
1: महीन जी,
2: है ना। उसको आप जब घुमाएंगे तो वो सारा कफ निकल जाएगा, और उससे मुंह में एक सूखापन आपको समझ में आएगा, कफ का आवरण खत्म हो जाए। तो हमको मंजन उससे करके फिर अच्छे से कुल्ला कर लेना चाहिए।
1: तो सर, जैसे आपने बताया कंडे की राख, और वो भी कंडा जो है वो मतलब बिल्कुल बारीक राख, तो हर एक व्यक्ति को तो आज तो उपलब्ध नहीं है या वो अरेंज नहीं कर सकता, तो उसका कोई वैकल्पिक उपाय है?
2: वो एक प्रकार है, हमने उसका एक उदाहरण दिया था, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे जैसे बबूल,
1: हाँ,
2: हम बोलते हैं
1: नीम
2: बबूल
1: है,
2: नीम है, बबूल है, इनके जो दांत होती है, आपका वज्रदंती है,
1: अच्छा
2: है ना,
1: जी जी,
2: इनका उपयोग होता है ना। तो ऐसे जो औषधि द्रव्यों के जो चूर्ण होते हैं उनके माध्यम से हम अपना मंजन कर सकते हैं। और एक सरल सा है कि हमारे यहाँ पहले मुख स्वच्छता में खाना खाने के बाद, पंगत में बैठने के बाद नमक से भी,
1: हाँ, जी, जी, मुख,
2: क्योंकि
1: जी,
2: नमक जो रहता है वो कफ के आवरण को हटा देता है,
1: हटा देता है जी।
2: हम पहले इसका लोगों ने मना किया, फिर टूथपेस्ट में नमक की मार्केटिंग करने लगे, तो वो आपको उस कफ के आवरण को हटाने वाली जो चीजें हैं उनको अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आप अपने मुख को स्वस्थ रख पाएंगे। और ऐसा करना है कि वो इतने कड़े ना हो कि आपके मसूड़ों को और दांतों को नुकसान पहुंचाए, इसलिए जितना सॉफ्ट और जितना महीन होगा उतना उसका ध्यान रखना है।
1: सर एक चीज़ और आती है कि ज़्यादातर ऐसा आता है कि सुबह उठकर आप से जितना भी पानी पीते बने कम से कम एक ग्लास आप पानी पिए, तो ये क्या दिनचर्या में होना चाहिए हमारे?
2: निश्चित रूप से हमारे यहाँ उषापान ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है।
1: अच्छा जी,
2: उषापान मतलब शरीर के तापमान का गुनगुना पानी हमको पीना है, ना ठंडा पीना है ना गर्म पीना है। प्रकृति के हिसाब से जिसकी जैसी प्रकृति है उसके हिसाब से हमारे पानी का प्रमाण कम ज्यादा हो सकता है, पर एक लीटर एक गिलास से दो तीन गिलास तक पर्याप्त है, इससे अच्छा। ज्यादा पानी की
1: आवश्यकता
2: एक वयस्क व्यक्ति को
1: जी। तो ये आदत तो हमें अपने बच्चों को बचपन से ही डालानी चाहिए कि
2: उसके आजकल बोलचाल में हम बहुत आसानी से बोलते हैं ना कि हमारा शरीर जो है 70% पानी से बना है।
1: जी जी,
2: तो पानी की रिक्वायरमेंट तो होनी ही चाहिए। तो उसके कारण भी हमको, क्योंकि सवेरे लेंगे तो वो थोड़ा सा आपको फायदा ही करेगा, पर शरीर तापमान का पानी लीजिए।
1: अच्छा, नहीं ना तो बहुत गर्म ना ठंडा। अब हमने मंजन कर लिया, उसके बाद अब दिनचर्या में आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या है?
2: इसके बाद जो है हमको जो है आंखों का कान नाक इनकी स्वच्छता भी रखनी चाहिए, स्नान करना चाहिए।
1: हाँ जी,
2: है ना। स्नान करने से उसका बहुत महत्व है कि उससे आपकी अग्नि प्रज्वलित होती है।
1: अच्छा।
2: आपके शरीर में लाघवता आती है, प्रसन्नता आती है, और आपका जो फ्रेश तो स्वाभाविक है हमारा जितना आलस्य उससे खत्म होता है, पेट की अग्नि भी दीप्त हो रही है, मतलब हमको उसके बाद भूख भी लगने वाली है, और हमारी दिनचर्या को एक अच्छा मिलना चाहिए। तो शरीर की स्वच्छता, लोकल हाइजीन जो हम मेंटेन करते हैं, जैसा ओरल हाइजीन हमने मेंटेन किया
1: जी,
2: वैसे हमको जितनी अपनी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको भी स्वच्छ रखना चाहिए, और उसको स्वच्छ रखने के बाद स्नान। तो हमारे पूरे शरीर को स्वच्छ रखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे।
1: अच्छा।
2: उसके बाद में हमको निश्चित रूप से जो अल्पाहार, तो उसके पहले हम भारतीय परंपरा में क्या करते हैं कि अपना जितना कार्य रहता है समर्पण से करते हैं, तो पूजा करते हैं या भगवान के सामने अपना शांत मन से जो सवेरे का अल्पाहार हमको करना चाहिए।
1: तो सर अभी तो हम जो चीज देखते हैं कि नाश्ता जो होना चाहिए वो बहुत हैवी हो जाना चाहिए, और फिर उसके बाद लंच जो हो आपका वो, क्योंकि हमारा समय जो है बहुत आगे खसक गया है, लंच का लंच टाइम जो है वो 1:30 बजे 2 बजे वाला हो गया है, तो वो लाइट हो जाए, बट जो सुबह का ब्रेकफास्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसको आप अल्पाहार बोल रहे हैं, वो बहुत हैवी होना चाहिए। ये सही है ये कंसेप्ट या हमारे हिसाब से गलत है आयुर्वेद के हिसाब से?
2: सही गलत का विषय नहीं है, एरिया एरिया वाइज आपको चेंजेस मिलेंगे। आप उत्तर भारत में जाएंगे तो वहाँ पे परंपरागत रूप से उनका जो सवेरे का नाश्ता रहता है वो बहुत हैवी रहता है।
1: जी जी, पराठे, आलू के पराठे,
2: सब चीजें। हमारे यहाँ पे उतना हैवी नाश्ता हम नहीं करते,
1: नहीं।
2: लेकिन इसमें सवेरे आपको कुछ ना कुछ अल्प मात्रा में ही अन्न ग्रहण करना चाहिए।
1: अच्छा।
2: हमारा कंसेप्ट बहुत सीधा है, हमको दोपहर का जो भोजन है वह 9:10 से लेकर 12 बजे के बीच में, मैंने समय का कालखंड थोड़ा सा ज्यादा रखा है, लेकिन हमको इस बीच में हमको कर ही लेना चाहिए।
1: अच्छा।
2: तो 12 बजे तक अगर आपका भोजन हो जाता है तो वो भोजन की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। सादा सा नियम है कि दोपहर का भोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होनी चाहिए,
1: जी।
2: रात का भोजन दोपहर के भोजन से कम होना चाहिए।
1: अच्छा।
2: ऐसा एक हमारे यहाँ पे नियम है। दोपहर के भोजन के बाद हमको बाई करवट लेटना है।
1: अच्छा।
2: और रात के खाने के बाद हमको कम से कम 100 कदम चलना है, स्वस्थ रहने का ये नियम है, क्योंकि हम दिन भर काम करते हैं, हमारे शरीर की गति बनी रहती है, रात को हमको शिथिलता के ऊपर, तो खाना खाने के तुरंत इमीडिएट बाद नहीं सोना है, उसके 2 घंटे बाद सोना है
1: जी।
2: तो इस तरीके से हमारा भोजन का नियम है, सवेरे जो है वो कम मात्रा में, दोपहर का जो भोजन है वह थोड़ा सा अधिक मात्रा में, जो हमारी शरीर क्षमता के हिसाब से, और उसका भी नियम ये बताया हुआ है कि आपको जब भी भोजन करना है तो आपको आधा पेट भोजन से, 1/4 भाग पानी से, और 1/4 भाग खाली रखना है।
1: अच्छा।
2: ऐसा एक कैलकुलेशन करना चाहिए कि हमको जितनी भूख है उसको हम जब खा रहे हैं तो पेट में इस तरीके की मात्रा हमको अन्न की रखना चाहिए।
1: जिस तरह से आपने दिनचर्या को बताया उसी तरह से आप हमें रात्रिचर्या के बारे में भी बताइए।
2: रात्रिचर्या का भी बहुत महत्व है, क्योंकि हमको स्वस्थ रहने के लिए आहार, निंद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 मुख्य सूत्र दिए हुए हैं। तो निंद्रा का महत्व इसी से सिद्ध हो जाता है। तो जब हम रात को सो रहे हैं तो नियम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रात्रि भोजन के बाद में आपको कम से कम 100 कदम चलना है, और 1.5 से 2 घंटे बाद ही बिस्तर पे जाना है
1: भोजन के
2: जी। है ना, तो इससे हमारा जो भारीपन होता है पेट का वो भी कम होगा और रात में जो डाइजेशन की समस्या आने वाली है वो नहीं आएंगी।
1: अच्छा,
2: इसके साथ में हमारे यहाँ दिनचर्या में कुछ चीजें जुड़ी हुई थी। जब आप बिस्तर पे जाते हैं तो आपको पैर के तलवों पे घी और पानी की मालिश करनी चाहिए।
1: अच्छा,
2: इसको तेल पे जितनी तेजी से उसको रगड़ेंगे उसके कारण हमारे दिन भर के जो पैरों की थकान होती है वो भी कम होती है और हमारा मस्तिष्क भी शांत होता है। हमारा जो सोने का बिस्तर होना चाहिए वो बिल्कुल सम्यक होना चाहिए, सरल हो, बहुत ऊंची गर्दन, तकिया भी नहीं लेनी है
1: जी।
2: मुख्य रूप से हमको गर्दन पे सहारा देके सोना चाहिए
1: जी।
2: और जब हम सो रहे हैं तो शांत चित्त हो। इसीलिए फिर से बहुत सारे लोग उस समय हमारे इष्ट का ध्यान करते हैं
1: जी,
2: कि
1: जी।
2: आज हमने दिन भर में जो भी गलतियां की है उसकी क्षमा याचना करके हमको फ्रेश होने के लिए। तो जब आपका मन स्थिर होगा तभी आपकी नींद की गुणवत्ता अच्छी होगी
1: जी।
2: तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको सोना चाहिए। तो और हमारे पैरों के मैंने मसाज के बारे में आपको बता ही दिया। आंखों के में भी है कि हमको उसमें आई ड्रॉप वगैरह कुछ डाल लेना चाहिए तो दिन भर का जो हमारे आंखों पे स्ट्रेन है वो ठीक होता है। साथ में रात में सोते समय 1 से 2 बूंद नाक में गाय का घी अवश्य डालें।
1: अच्छा,
2: क्योंकि हमारा जो नाक है वो हमारे मस्तिष्क का सिर का द्वार ऐसा कहा गया है।
1: अच्छा,
2: और घी जो होता है वो धी धृति स्मृति आपके मस्तिष्क को ताकत देता है, तो आपके नींद को भी इम्प्रूव करता है और आपके पूरे जितने सेंस ऑर्गन्स हैं उसको हेल्दी रखने में मदद करता है।
1: अच्छा,
2: तो इस तरीके से हम दिन भर के जितने प्रभाव को कितना न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ऐसे सभी चीजों को सम्मिलित करके रात को आराम से बिस्तर पे, नरम बिस्तर पे हमको सो जाना चाहिए।
1: तो सर उसमें भी एक चीज आती है कि बाएं करवट और दाएं करवट का क्या रोल रहता है इसमें?
2: ऐसा नहीं है, वो हर व्यक्ति का अपना अपना पैटर्न होता है।
1: अच्छा अच्छा,
2: सीधा सो सकते हैं, दाएं सो सकते हैं, बाएं सो सकते हैं, और रात में व्यक्ति अपने करवट ले, पर वो सुखासन में होना चाहिए, उसके लिए सुख पूर्वक हो ताकि उसका मस्तिष्क हमारी नींद जिसमें आए।
1: अच्छा,
2: क्योंकि वो नींद की क्वालिटी अच्छी होगी
1: जी,
2: तो हम सम्यक रूप से रहेंगे। साथ ही हमारा जो रात में हम 6 घंटे की नींद हम बोलते हैं
1: जी,
2: तो ये 6 घंटे की नींद में हमारा शरीर को शांत होना चाहिए, मसल्स रिलैक्स हो जाए, अंदर के अंग रिलैक्स हो जाए, और इन नींद के बीच में एक गहरी नींद आती है
1: जी,
2: वो जो नींद होती है वो हमारे मस्तिष्क को शांत करती है, उसमें हमारे विचारों का उहापोह नहीं रहता है
1: जी,
2: है ना। तो ऐसा जब शांत मन होता है तभी हमारी नींद की क्वालिटी को हम उत्तम मिलते हैं। जब सवेरे उठते हैं तब हमको हल्कापन लगना चाहिए, आसानी से आंखें खुलनी चाहिए, फ्रेश लगना चाहिए,
1: हम खुश होके उठें,
2: खुश होके उठें, तो हम सम्यक नींद, एक अच्छी नींद जिसको हम बोलते हैं वो इसमें सामने हमको मिलती है, इसका चिंतन करना चाहिए।
1: चलिए सर, आपने आज इतनी आयुर्वेद का जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है उसे समझाया, हमारी क्या दिनचर्या होना चाहिए, ये जो 5 पंच महाभूत है जिन्हें 5 तत्व जो कहा गया है, उनसे हमारा जो शरीर बना है, उनके साथ जो वात पित्त कफ इनका जो बैलेंस है वो हमारे शरीर में किस तरह से हो सकता है, इसके बारे में आपने इतनी महत्वपूर्ण और सार गर्भित जानकारी दी। सर आप यहाँ आए, अमूल्य समय आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने ज्ञान में से मैं जितना आपके समक्ष बोला हूँ उससे आपके श्रोताओं को स्वास्थ्य का लाभ होगा, यही इच्छा के साथ में आप सभी को प्रणाम।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी और समन्वय सहयोग सतीश बाथम का। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: परिव्राजक विवेकानंद का मन एक जगह ज्यादा दिन नहीं लगता था। फिर उन्हें अपना असली काम राष्ट्र निर्माण की चिंता भी रहती थी। इस काम को कहां से शुरू किया जाए, उसके लिए पैसा और सहायता तथा लोक बल कहां से जुटाएंगे आदि चिंता उन्हें सदा सताती रहती थी। ऊपर से गुरु भाइयों का माया बंधन, वे सब कुछ त्याग कर एकांत में चिंतन करना चाहते थे। अंत में सभी के मतों के विरुद्ध वे अकेले मेरठ से दिल्ली आ गए।
1: परंतु 10 दिन बाद ही गुरु भाइयों ने दिल्ली आकर उन्हें ढूंढ निकाला। उन्हें देख स्वामी जी खुश तो हुए, पर अपनी एकांत वास की इच्छा पूरी न होते देख नाराज हो गए और कहा,
2: देखो भाई, मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मैंने तुम लोगों से कह रखा है कि मेरा पीछा मत करो। वही बात फिर कहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ रहे। मैं अभी दिल्ली छोड़कर जा रहा हूँ। कोई मेरे पीछे चलने की चेष्टा ना करे, कोई मुझे ढूंढ निकालने के लिए प्रयास ना करे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बातों का पालन करो। मैं सारे पुराने संबंधों को तोड़ना चाहता हूँ। मैं अपनी इच्छा से भ्रमण करूंगा, पहाड़, जंगल, मरुभूमि अथवा नगर में। चाहे जो हो, जो मुसीबत आए, मैं चला। मेरी इच्छा है कि हर कोई अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार साधना करने में लग जाए।
3: अरे, हम लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि तुम यहाँ ठहरे हो। हम लोग तो केवल दिल्ली नगर देखने आए थे। जब यहाँ आकर स्वामी विदिशानंद नामक एक अंग्रेजी भाषी साधु के विषय में खबर मिली, तब हम उन्हें देखने आ गए। अतएव तुमसे मुलाकात हो गई। ये एक आकस्मिक घटना मात्र है।
0: जैसे भी हो, स्वामी जी उस समय शांत हो गए और तुरंत दिल्ली त्याग कर नहीं आए। गुरु भाइयों ने निश्चय ही दूसरी जगह आश्रय लिया, किंतु सबका भोजन स्वामी जी के साथ सेठ जी के घर पर ही होने लगा। धीरे धीरे गुरु भ्रातागण एक एक कर विभिन्न स्थानों को जाने लगे। रह गए अखंडानंद जी और अद्वैतानंद जी। कुछ ही दिनों में स्वामी जी दिल्ली छोड़कर चले गए। बाकी दोनों सन्यासी वृंदावन गए। दिल्ली के बाद स्वामी जी का राजस्थान भ्रमण शुरू हुआ। सन 1891 के फरवरी में वे ट्रेन से अलवर स्टेशन पर उतरे।

0: स्वामी जी अलवर के सुशोभित पथ पर अकेले चले जा रहे थे। अंत में वे एक दातव्य चिकित्सालय के सामने रुक गए। एक सज्जन चिकित्सालय के फाटक से निकले, स्वामी जी को न जाने क्या सूझा, उन्होंने उस व्यक्ति को रोककर बंगाली भाषा में पूछा।
1: एक खाने की साधु देर थाकार मोतोन कोनो जाएगा छे?
0: यहाँ क्या साधुओं के ठहरने लायक कोई जगह है? उक्त सज्जन का नाम श्री गुरुचरण लश्कर और वे ही उस औषधालय के चिकित्सक थे। डॉक्टर साहब लंबे अरसे से बंगाल से बाहर थे, अतः कमनीय वदन वरुण सन्यासी के मुख से अपनी मातृभाषा सुनकर विशेष आनंदित हुए और ससम्मान अभिवादन करते हुए उन्होंने साग्रह कहा,
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए मेरे साथ।
0: वे उन्हें पास ही स्थित एक दो मंजिला मकान में ले गए। ये उनके खुद का घर था। उन्होंने कहा,
2: ये घर साधुओं के लिए है, यहाँ ठहरने पर आपको कोई कष्ट तो नहीं होगा?
1: ना ना कोनो कष्ट होगे ना।
3: डॉक्टर साहब ने उसी समय उनके लिए आवश्यक वस्तुएं मंगवा दी, क्योंकि स्वामी जी के पास उस समय केवल एक गेरुआ वस्त्र, दंड, कमंडलू और कंबल में लिपटी दो चार पुस्तकों के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। प्रारंभिक व्यवस्था हो जाने पर गुरुचरण बाबू ने अपने एक मुसलमान मित्र के पास आकर कहा,
2: मौलवी साहब, एक बंगाली दरवेश आए हैं, चलिए उनसे मिलिए। मैंने ऐसा महात्मा पहले कभी नहीं देखा, आप उनसे बातचीत कीजिए, मैं अस्पताल का काम निपटाकर जल्दी आ जाऊंगा।
3: मौलवी साहब स्थानीय अंग्रेजी विद्यालय के उर्दू और फारसी के शिक्षक थे। वे अपने मित्र की बातें सुनकर तुरंत उनके साथ स्वामी जी के पास आए और नंगे पैरों घर में प्रवेश कर सलाम किया। स्वामी जी ने उन्हें स्नेह पूर्वक अपनी बगल में बैठा कर बातचीत करते हुए कहा,
1: कुरान के संबंध में ये एक विशेष आश्चर्य की बात है कि 1100 वर्ष पहले उसका जो स्वरूप था आज भी वैसा ही है। उसकी प्राचीनतम शुद्धता सुरक्षित है और किसी को भी उस पर कलम चलाने की हिम्मत नहीं हुई।
0: इधर गुरुचरण बाबू औषधालय लौटकर वहां आए लोगों को स्वामी जी के आगमन के विषय में बताने लगे और उनकी प्रबल प्रशंसा भी करने लगे। डॉक्टर साहब की उत्साह जगाने वाली वाणी ने श्रोताओं के मन में भी गहन जिज्ञासा उत्पन्न कर दी और वे सब स्वामी जी का दर्शन करने चल पड़े। स्वामी जी के मधुर संभाषण से मुग्ध हो मौलवी साहब ने भी अपने मुसलमान मित्रों को ये शुभ सूचना दी। इसके फलस्वरूप स्वामी जी के कमरे में धीरे धीरे इतने लोगों का समागम होने लगा कि कमरा भर जाता और लोगों को बरामदे पर भी जगह नहीं मिल पाती। स्वामी जी उन लोगों से धर्म चर्चाएं करते और बीच बीच में उर्दू और हिंदी गीत, यहाँ तक कि बंगला कीर्तन भी गाते। विद्यापति, चंडीदास, रामप्रसाद, सूरदास इत्यादि अनेक भक्त कवियों के पद और भजन उनके श्रीमुख से सुनकर श्रोतागण मंत्र मुग्ध हो बैठे रहते। कभी कभी वे वेद, उपनिषद, बाइबल और पुराणों की उक्तियों को उद्धृत कर अपने कथनों को प्रमाणित करते, अथवा बुद्ध, शंकराचार्य, रामानुज, गुरु नानक, कबीर, चैतन्य, तुलसीदास और श्री रामकृष्ण इत्यादि के जीवन के घटनाओं का वर्णन कर श्रोताओं के मन में धर्म प्रेरणा उत्पन्न किया करते थे। इसी तरह अलवर के उनके दिन व्यतीत होने लगे।
3: कुछ ही दिनों में स्वामी जी के अनुयायियों की संख्या अत्यंत बढ़ जाने के कारण अलवर वासी कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने तय किया कि उन्हें इसके उपरांत अलवर राज्य के अवकाश प्राप्त इंजीनियर पंडित शंभुनाथ जी के घर में रखना होगा। वहां स्वामी जी ने नियमित जीवन यापन और साधना के लिए अधिक सुयोग पाया। यहां आने के बाद वे प्रातः 9 बजे तक ध्यान धारणा में काल व्यतीत कर बैठक खाने में समागत व्यक्तियों से वार्तालाप करने के लिए निकलते। उसी समय जाति वर्ण निरपेक्ष 20-30 भक्तजन वहां आ जाते। उनमें कोई कोई संभवतः शिया या सुन्नी संप्रदाय के मुसलमान और अन्य शैव, वैष्णव आदि संप्रदायों के हिंदू होते। धनी और दरिद्र वहां मिलकर एक हो जाते। स्वामी जी दोपहर तक उन लोगों के बीच बैठकर सबके साथ समान भाव से वार्तालाप करते और धर्म संबंधी विभिन्न समस्याओं का समाधान कर देते। कभी निसंकोच भाव से बातें करते। इसके फलस्वरूप स्वामी जी की इच्छा नहीं रहने पर भी अवांतर विषय बीच बीच में आ जाते। फिर भी क्षुब्ध हुए बिना स्वामी जी समुचित उत्तर देकर प्रश्नकर्ताओं की उत्सुकता मिटा दिया करते। कभी कभी ऐसा होता कि कोई आध्यात्मिक प्रसंग चल रहा है, इसी बीच कोई अविवेकी व्यक्ति अप्रासंगिक प्रश्न कर बैठता।
4: महाराज, आप गेरुआ वस्त्र क्यों पहनते हैं?
5: क्योंकि ये भिखारियों की पोशाक है। उजला कपड़ा पहने रहने पर गरीब लोग मुझसे भिक्षा चाहेंगे, किंतु मैं स्वयं ही भिखारी हूँ। अक्सर एक कौड़ी भी मेरे पास नहीं रहता, अतः चाहने पर भी यदि नहीं दे पाता हूँ तो मुझे अत्यंत कष्ट होता है। गेरुआ वस्त्र देखने पर वे समझते हैं कि मैं उन लोगों की तरह ही गरीब हूँ, इसलिए भिखारी से भीख मांगने की बात ही उनके मन में नहीं उठती।
0: शाम को स्वामी जी के घूमने के लिए निकलने पर कई लोग उनके संग संग चला करते। दिन बीतने पर कर्म समाप्ति के बाद और भी भगवत प्रसंग सुनने के लिए उनके निवास स्थान पर लोग एकत्र होते। तब फिर वही प्रार्थना, ध्यान और भाव भक्ति का स्रोत बहने लगता। फिर सभी भगवत रस का आस्वादन करते, अथवा कभी स्वामी जी मधुर कंठ से भगवत गुणगान करते और कोई कोई उनके साथ स्वर मिलाकर कीर्तन में उन्मत्त हो जाता। कितने ही दिन इस भाव से ढेर सारा समय व्यतीत हो जाता, किसी को इसका होश नहीं रहता। किसी दिन गहरी रात गए तक इसी प्रकार चलता, लगभग रात के 4 बज जाते। बीच बीच में नृत्य भी होता, स्वामी जी के साथ सुर मिलाकर सारे बंगला गीत भी गाते। भूल जाने के डर से कोई गीतों को लिख कर भी रखते। राजस्थान वैष्णव प्रधान स्थान है, अतः स्वामी जी प्राय श्री कृष्ण विषयक संगीत गाया करते। एक दिन उन्होंने ये गीत गाया।

0: इस प्रकार भगवत प्रसंग और संगीत आदि में कितने ही दिन बीत गए। बहुत देर रात तक स्वामी जी को छोड़कर जाने का किसी का मन नहीं होता। रात में अपने घर लौटकर भी स्वामी जी की ही चर्चा होती। सभी सोचते कि फिर कब लौटेंगे। कोई कोई कहते, बाबा जी का हृदय आनंद से भरा है, मुख पर हंसी फूटती ही रहती है। दूसरे लोग कहते, महाशय इतना सुंदर श्लोक पाठ हमने कभी नहीं सुना, उनके कंठ से मानो चांदी के तार की झनकार गूंजती है। फिर कोई कहता, हाँ उनके कंठ में नाद है। तभी कोई दूसरा व्यक्ति संशोधन कर देता, केवल यही नहीं, उनके कंठ में एक ऐसी विद्युत शक्ति है कि सुनते ही मुग्ध हो जाना पड़ता है। इसी तरह कोई दूसरा व्यक्ति इसमें योग देते हुए कहता, और देखते हैं स्वभाव कितना मधुर है, इतने लोग इतनी तरह से तंग करते हैं, मूर्ख की भांति जो सो प्रश्न करते हैं तब भी क्रोध नहीं करते, सारी बातों के उत्तर देते हैं। अन्य व्यक्ति अपनी सम्मति देते हुए कहता, कोई गुस्सा उस्सा नहीं, सिद्ध महापुरुष है, देखिए ना, मन में केवल यही होता रहता है कि कब उनके पास जाऊंगा, इच्छा होती है कि दिन रात उनके निकट बैठा रहूं।
1: स्वामी जी के अनुरक्त भक्तों में पूर्वोक्त मौलवी साहब के मन में प्रबल अभिलाषा थी कि स्वामी जी को अपने घर ले जाकर भिक्षा ग्रहण करावे। वे सोचते, स्वामी जी तो दरवेश हैं, सन्यासी हैं, वे जाति भेद से मुक्त हैं, किंतु जिस पंडित जी के घर में वे रह रहे हैं उन्हें तो आपत्ति हो सकती है। फिर भी एक दिन उन्होंने विश्वास के साथ सबके सम्मुख हाथ जोड़कर पंडित जी से कहा, कृपा कर ये अनुमति दीजिए कि बाबा जी कल मेरे घर पर भिक्षा ग्रहण करें। आप लोगों के संतोष के लिए हम ब्राह्मण बाजार से ही बर्तन ले आएंगे और उसी में पकाएंगे, और ये यवन यदि केवल दूर से देखने का सौभाग्य पाए कि स्वामी जी उसकी भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो इतने से ही वो कृतार्थ होगा।
0: मौलवी साहब ने ऐसी विनय और सरलता पूर्वक ये बातें कही कि सभी उपस्थित लोग इससे मुग्ध हो गए, और पंडित जी ने मित्र भाव से उनके दोनों हाथों को पकड़कर कहा,
2: भाई स्वामी जी तो दरवेश हैं, उनके समक्ष जाति भेद का क्या मोल है, इतना कष्ट नहीं करना होगा, मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है, आप जैसी व्यवस्था करेंगे हम लोग उससे ही संतुष्ट होंगे, और जैसी व्यवस्था की बात आप कह रहे हैं वैसी होने पर तो आपके घर में खाने में हम लोगों का धर्म बोध भी बाधक नहीं होगा। स्वामी जी की तो बात ही क्या है, वे तो मुक्त पुरुष हैं।
1: स्वभावतः मौलवी साहब ने स्वामी जी को अपने घर पर भोजन करवा कर विशेष तृप्ति पाई। मौलवी साहब का अनुकरण कर और भी कई सज्जनों ने स्वामी जी को आग्रह पूर्वक अपने घर आमंत्रित कर भोजन कराया था।
0: धीरे धीरे अलवर के महाराजा के दीवान मेजर राजचंद्र जी के कानों में ये समाचार पहुंचा कि शहर में एक विशेष महात्मा का आगमन हुआ है। सुनते ही उन्होंने स्वामी जी को आदर पूर्वक अपने घर ले जाकर उनसे बातचीत की, और वे तुरंत समझ गए कि इन सुविद्वान मेधावी और अनुभूति संपन्न महायोगी की कृपा दृष्टि पड़ने पर अलवर के अंग्रेजी भावापत्र महाराज की मति गति में परिवर्तन हो सकता है। ये सोचकर उन्होंने महाराजा मंगल सिंह को संवाद भेजा, एक साधु आए हैं, वे अंग्रेजी के महापंडित हैं। महाराजा उन दिनों 2-3 मील दूर एक निर्जन महल में रह रहे थे। दीवान जी का पत्र पाकर वे दूसरे दिन ही अलवर लौट आए तथा सीधे दीवान जी के घर जाकर स्वामी जी का श्रद्धा पूर्वक उन्होंने दर्शन किया और प्रणाम करने उपरांत उनके सम्मुख आसन ग्रहण किया। उनके साथ समागत सभासद वृंद ने भी वहां उपयुक्त स्थान पर आसन ग्रहण किया। महाराज ने पहले ही प्रश्न किया,
3: अच्छा स्वामी जी महाराज, सुनता हूँ कि आप अद्वितीय पंडित हैं, तब तो आप सहज ही काफी धन उपार्जन कर सकते हैं, ऐसा ना करके आप भीख मांगने क्यों निकले हैं?
4: महाराज क्या आप बता सकते हैं अपने राज कार्य की अवहेलना कर आप दिन रात साहबों के साथ क्यों दावत खाते हैं, शिकार करने निकलते हैं?
1: सभासदगण स्वामी जी के कथन की भंगिमा से विचलित हो उठे। ये कैसा दुस्साहस है, पता नहीं आज इनके भाग्य में क्या बदा है, किंतु स्वामी जी की बात को महाराजा ने धीरता पूर्वक सुना, सुनकर थोड़ा विचार किया और बाद में कहा,
3: मैं वैसा क्यों करता हूं कह नहीं सकता, फिर भी वहां वो मुझे अच्छा लगता है।
4: तो ठीक है, मुझे भी उसी प्रकार भिखारी की तरह घूमना अच्छा लगता है।
3: अच्छा बाबा जी महाराज, ये जो सारे लोग मूर्ति पूजा करते हैं उसमें मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं, तब मेरी क्या दशा होगी इस अविश्वास के कारण?
1: ये बात कुछ व्यंगपूर्ण लहजे में कही गई और कहने के बाद महाराज ने थोड़ा मृदु हास्य भी किया, तथापि स्वामी जी पहले ही इस बात को इतने हल्के ढंग से नहीं ले सके। भारतीय होकर क्या कोई इस प्रकार की बात कह सकता है? इसी से उन्होंने अविश्वास भरे लहजे में कहा,
3: नहीं नहीं नहीं स्वामी जी, बिल्कुल, देखिए वस्तुतः मैं अन्य लोगों की भांति लकड़ी, मिट्टी, पत्थर और धातु इन सब की पूजा नहीं कर पाता हूं, तो क्या इससे मेरे दूसरे जन्म में मेरी अधोगति होगी?
4: जिसका जैसा विश्वास।
1: कहते कहते स्वामी जी की नजर दीवार पर टंगी महाराजा की तस्वीर पर पड़ी। उन्होंने उसे उतरवाकर पूछा, ये किसकी तस्वीर है? लोगों ने कहा, वो तस्वीर महाराजा मंगल सिंह की है। स्वामी जी ने तस्वीर हाथ में ली और दीवान जी से कहा,
4: दीवान जी इस तस्वीर पर थूक दीजिए।
1: दीवान जी और उपस्थित सभी लोग भय से त्रस्त हो गए। दीवान जी ने महाराजा की ओर देखा और कहने लगे,
5: जी जी क्या कह रहे हैं आप स्वामी जी, ये हमारे महाराज हैं।
4: ठीक है आप थूक नहीं सकते, पर आप चुप क्यों हैं? आप लोग, आप में से कोई भी इस तस्वीर पर थूक सकता है? कागज के अलावा ये और क्या है? फिर इस कागज पर थूकने से लोगों को आपत्ति क्यों? दीवान जी आप डर गए हैं, बार बार महाराज की ओर क्यों देख रहे हैं? आइए आप में से कोई तो आगे आइए, फेंकिए इस पर थूक फेंकिए।
5: ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी, ये हमारे महाराजा की प्रतिमूर्ति जो है, ऐसा काम हम लोग कैसे कर सकते हैं भला?
4: ऐसा भले ही हो, किंतु महाराजा तो इस तस्वीर के अंदर बैठे नहीं है, इसमें उनका हाड़ मांस या रक्त भी मौजूद नहीं है। महाराजा की भांति ये तस्वीर न हिलती डुलती है न बातें करती है, फिर भी आप लोगों में से कोई इस पर थूकने को राजी नहीं, क्योंकि आप लोग इसमें महाराजा की काया की छाया देखते हैं। इस पर थूकने से आप लोगों को लगता है कि आप अपने स्वामी का, स्वयं महाराज का अपमान कर रहे हैं।
1: फिर उन्होंने महाराजा मंगल सिंह की ओर मुड़कर कहा,
4: देखिए महाराज, एक दृष्टि से यद्यपि आप ये चित्र नहीं है, तथापि दूसरी दृष्टि से ये आप ही हैं। इसी से मैंने जब इन लोगों से थूक फेंकने कहा था, तब आपके एकांत अनुरागी कर्मचारी गण हतप्रभ हो गए थे। इसमें आपका प्रतिबिंब है, ये उनके मन में आपको ला बिठाता है। इसकी ओर देखते ही वे लोग स्वयं आपको देखने लगते हैं। इसी से आपको व्यक्तिगत रूप से वे लोग जितना सम्मान करते हैं, इस चित्र का भी उतना ही सम्मान करते हैं। जो भक्तगण पत्थर या धातु से बनी प्रतिमा के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन लोगों के संबंध में ठीक यही बात घटित होती है। भक्तगण इसलिए भगवान की प्रतिमा की पूजा करते हैं कि ये प्रतिमा उन लोगों को उनके अपने इष्ट के ऐश्वर्य की महिमा का स्मरण करा देती है, तथा उन लोगों की ध्यान धारणा में सहायक होती है। वे लोग इस धातु या पत्थर की पूजा ही नहीं करते हैं, मैं कई जगहों पर गया हूं, परंतु कहीं भी तो किसी को ये कहकर प्रतिमा की पूजा करते नहीं देखा कि हे पत्थर मैं तुम्हारी पूजा करता हूं, हे धातु तुम मुझ पर कृपा करो। सभी केवल उसी अद्वितीय चैतन्य स्वरूप परमात्मा की ही पूजा करते हैं, और भगवान जो जिस रूप में समझता है या उनका जिस रूप में चिंतन मनन करता है, उसी रूप में वे भी उसे दर्शन देते हैं। महाराज मैं अपना निजी भाव व्यक्त कर रहा हूं, आपका क्या भाव है मैं नहीं जानता।
1: महाराजा मंगल सिंह अभी तक बड़े ध्यान से सब देख सुन रहे थे, अब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा,
3: स्वामी जी अभी जिस भाव से आपने मूर्ति पूजा की व्याख्या की है, उस अर्थ में मैंने अब तक किसी को पत्थर, काष्ठ या धातु की पूजा करते नहीं देखा। मैं ये तत्व नहीं जानता था। आपने मेरी आंखें खोल दी, किंतु मेरा क्या होगा? आप मुझ पर कृपा करें महाराज।
4: महाराज, कृपा एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं। और वे तो सदा ही कृपामय हैं। उनसे प्रार्थना कीजिए, वे निश्चय ही आप पर कृपा करेंगे।
0: स्वामी जी के चले जाने के बाद भी महाराजा काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे। फिर दीवान जी से कहा,
3: ऐसा महात्मा मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा। दीवान जी, आप उन्हें कुछ दिनों तक अपने यहाँ रोक रखिए ना।
0: दीवान जी ने सहमति दी और कहा,
5: मैं यथासाध्य कोशिश करूंगा महाराज, फिर भी उन्हें रोक पाऊंगा कि नहीं कह नहीं सकता। ये बड़े तेजस्वी और स्वाधीन चेता व्यक्ति हैं महाराज।
1: बहुत अनुनय विनय के उपरांत स्वामी जी दीवान जी के घर इस शर्त पर रहने को सहमत हुए कि जो भी गरीब और साधारण लोग उनका दर्शन करने आएंगे, उन लोगों के लिए भी धनी मानी व्यक्तियों की भांति ही इस घर का द्वार सदा खुला रहेगा। दीवान जी सहज ही राजी हो गए और तब से स्वामी जी उनके घर पर ही रहने लगे।
0: अलवर की एक और घटना शायद सबको नहीं पता। स्वामी जी ने अलवर वासियों का हृदय जीत लिया था। एक ब्राह्मण बालक उनके पास आया करता था और एक शिष्य जिस प्रकार अपने गुरु को प्रेम करता है उसी प्रकार उन्हें प्रेम करता था। उसके उपनयन का समय हो जाने पर भी अर्थाभाव से उसका उपनयन नहीं हो पा रहा था। यह जानने पर स्वामी जी अर्थाभाव दूर करने के लिए विकल हो उठे। उन्होंने अपने धनवान भक्तों से कहा,
4: तुम लोगों से एक भिक्षा चाहता हूँ। इस ब्राह्मण के उपनयन संस्कार के लिए उपयुक्त धन नहीं है। गृहस्थ के रूप में इसकी सहायता करना तुम लोगों का कर्तव्य है, अतः इसके लिए चंदा इकट्ठा करो। इस उम्र का ब्राह्मण बालक अपनी जाति के अनुरूप नित्य नैमित्तिक क्रियाकर्म नहीं जाने, ये तो बड़ा अशोभन है। इसके अतिरिक्त यदि तुम लोग इसके लिए लिखने पढ़ने की व्यवस्था कर सको तो बड़ा उत्तम होगा।
1: भक्तजन तुरंत इस कार्य के लिए आगे बढ़े और स्वामी जी इस विषय में निश्चित हुए। अलवर से चले जाने के बाद भी उस बालक की बात स्वामी जी नहीं भूले। संस्कृत शिक्षा की आवश्यकता को भी वे नहीं भूले। इसी से उन्होंने अपने भक्त गोविंद सहायक को आबू पर्वत से 30 अप्रैल को एक पत्र में लिखा था, उस ब्राह्मण का उपनयन संस्कार क्या तुम करा चुके? क्या संस्कृत पढ़ रहे हो? कितनी प्रगति हुई है?

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।